0: वंदे मातरम।
1: सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 9वीं तिथि। तदनुसार 31 अगस्त 2026 इस समय प्रातः की 5:57 हुए हैं।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 6:05 पर चिंतन व 6:10 पर वंदना आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालिफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादूर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।

0: इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एससीओ सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और उससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 की शानदार पारी खेली। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्टुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का यह चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए चिंतन। विषय है मदद की भावना।

स्नेह प्रशंसा से नहीं सेवा से दर्शाया जाता है। जीवन प्रेम है और जब मनुष्य दूसरों के प्रति भलाई करना बंद कर देता है तो उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना और उसमें जरा भी अहंकार न करना, यही सच्ची शिक्षा है। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की भी जरूरत होती है। ये सभी पंक्तियाँ जीवन में हमने बहुत बार सबने सुनी है, लेकिन जीवन में इन्हें अपनाया कितनी बार है ये बहुत आवश्यक है। अच्छी बातें फूलों की खुशबू की तरह होती है, बहुत समय तक हमारे साथ साथ रहती हैं और यही चीज उनका जीवन में अनुसरण करने का कारण भी बनती है। हमारे विचार ही हमें महान बनाते हैं। मनुष्य समाज में रहता है और हर दूसरे पल उसे किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे में जब मनुष्य के मन में दूसरों की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने वही मदद करने की भावना पैदा हो जाती है तो वो मनुष्य मानवता के सबसे बड़े स्तंभ पर खड़ा होता है। दूसरों की मदद का भाव हर धर्म में है। सभी के साथ दया भाव दिखाना और उनसे प्रेम करना धर्मों ने सिखाया है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो केवल वही व्यक्ति कृतज्ञता से भर नहीं जाता बल्कि ईश्वर भी मदद का हाथ बढ़ाकर पहल करने वाले से प्रसन्न होता है। और ये एक कर्मी का फल है कि जब कभी

आप मदद को पुकारते हैं तो कोई ना कोई हाथ आपकी ओर भी अवश्य बढ़ता है। दूसरों की मदद हमेशा निस्वार्थ भाव से कीजिए और देखिए आपके मन को कितनी संतुष्टि देगा।

0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे सीमा मुंद्रा साबू की गाई हुई भक्ति रचना। आइए अब सुनते हैं गौरव जैन का गाया हुआ ये भजन।

वंदना सुन रहे हैं आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली रचना, जिसे गाया है उमा विजय ने।

0: एफएम बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।
1: फोर 174

आपका स्वरूप वाणी तथा बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद नेत नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। इस दृश्य जगत के आप दृष्टा हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके इंगित पर गतिशील होते हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तो अन्य कोई कैसे जान सकता है? आपको वही जान सकता है जिसे आप जानने देते हैं, और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। ऐसे आप भला मुझसे पूछ रहे हैं कि कहां रहे, किंतु मुझे आपसे ये पूछने में संकोच हो रहा है कि आप वो स्थान बता दें

वाल्मीकि आश्रम में पहुंच दंडवत प्रणाम कुशलक्षेम की औपचारिकताओं के पश्चात श्री राम ने ऋषिवर से कोई ऐसा स्थान बताने की विनती की जहां पत्तों घास आदि की कुटी बनाकर वो कुछ काल निवास कर सके। ऋषि बोले, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और जनक नंदिनी माया स्वरूप हैं। हे प्रभु।

प्रादेशिक समाचार 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। 7 बजे समय रहेगा चौपाल का। 7:30 पर आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या और 11 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10 बजे समय रहेगा फिल्म संगीत का।

0: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विवरण, अब आप सुनेंगे खेतनी बात कार्यक्रम।
1: खेती ने बात हमारा और सब किसान भाइयों ने, किसान बहनों ने सारा डे की नानो बहनो राम राम राम राम। देखो किसान भाई, हर हर तीन है ना बड़ा खेती बाड़ी में काम का हमारे ऊपर ही मौसम बड़ा साल ही रहता कहने हमारा समय में खास कर खरीफ फसल खास कर मक्का सोयाबीन है, धान में फसल है, फसल भी उड़द है, तुअर है, ये भी करी जा सका है। खोर खरपतवार है, इन्हें नियंत्रण अपने समय पर करव जरूरी है, क्योंकि जी अपनी फसल मुख्य फसल है। इन्हें अलावा जी अन्य सम जो खोर है इन्हें अपने समय पर नियंत्रण में कर अपनी फसल सही तरीके से कि बड़ी बड़ी नहीं सके, इन्हें उत्पादन सही नहीं था, मतलब अपने समय पर इन्हें तो तुम्हार किसान भाई हूँ है कि आप छोटो होने से अपने नियंत्रण कर दूंगा तो अच्छू रहे। बता रहे बढ़वा था कि अपने मेहनत ने खर्चों का दर पड़ी जाए नहीं समय ऊपर खरपतवार काली दे नहीं ताकि अपना फसल अब भी बड़ी बड़ी सके। मक्का सोयाबीन में भाई के पास अकड़पो दे मक्का वगैरह हल थकी वही महीना की इन्हें भी थकी भी खरपतवार नियंत्रित खोर है ऊपर आ जाएगा इन्हें थकी हो गया कड़पा वगैरह भी अपने देखो जरूरी है। इन्हें दवाई सरती में रासायनिक में भी उपयोग करे बसा किसान भाई रासायनिक दवाई में भी जाते वक्त भी अपने इन्हें सावधानी रखनी जरूरी है। छोटी मोटी सावधानी नहीं रखूंगा किसान भाई तो अपने शरीर पर कई प्रकार नुकसान थी सके, क्योंकि दवाई है जहरीली एट अपने छोटी मोटी बातों में ध्यान रखी ना भैया दवाई में छिड़काव कर भैया मदद बांधो है असली कोई भी कपड़ा थकी नाक ऊपर सुरक्षा।

0: Ronzo, Ram Ram, Ram Ram.
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना खेती बात कार्यक्रम। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। अपेक्षित लोक संगीत देवकीनंदन जोशी व साथियों के स्वर में

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना देवकीनंदन जोशी और साथियों के स्वर में लोक संगीत। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन, और वातायन के अंतर्गत आप सुनेंगे राजस्थानी कहानी, और कहानीकार हैं श्याम दास वैष्णव।
1: स्टेशन पे उतरने राड़ी खान चालना पड़े, अब के गेलो कद खुट गयो ठाई नहीं पुगी, काटर नानो तो नहीं करना क्यों इन गेला ने, के फिर यूं हो सके कि इन गेबलारी दुकान ही उपाड़ ने अरमे रात दी होवे, पण आरा मशीन हनुमान मंदिर रामाबाड़ो घर और अरंगा बुआरी पोल सब वटेरा वटी तो है, मतलब मारे गांव रो मियारो हाल ताई बदलो को नहीं। सोचता बनाई पूरी कर रमे गांव आयो, सात आठ एक बरसा सु देखू मारे गांव री घड़ी ने, हे जू री जू किनी विरणी री नाई आछा विचार सिंगारा सपना देखती, हाँ आवाज गली है जिनमें जिनरे खोला माए भगवान किशन रे जड़ी नारी भी बाल लीलावा रमिया करे है, डावा हाथ कानी गली रा पहला नंबर पे गोपी दर्जन रो घर, पटियाल में बेटी बनी री पोती गाबा सीवे चने का आगे चेती कुमारी और फूली धोबन दोनी बेलात बनावे झुरे थी, आज कोई छोरी पोर में बेटी कांकरा रमती दिखे, ठीक ही वे दूजी कानी जिमने हाथ आड़ी बेरो बार कूड़ो तीन चार लुगाया पानी भरती दिखे, वीरे आगे मुड़ा पे धीमा बा तेली री गाणी और मेड़ी आटारी चक्की, थोड़ी नागा पचे एक दुकान गाय द्यारा घर एक नीमड़ा रो गोड सात पांच एक मिलाती फिर एक टेटो टेटा सु आगे बढ़ता ही हबका पिपड़ी जिन पे दो बम्बरा माड़ा लटकता नजर आवे, और इन सु आगे मोती बढ़लो जिन पे मादन रात डाल काम भी रुमिया पता, फिर थोड़ी अगाड़ी जोगू तो कहीं देखू कमाता पे साग रो टोपलो लिया कमर लचकाती लांबी सी सोलह बरस रही एक डावड़ी, मूला ले लो गाजर ले लो गोभी ले लो कांदा ले लो करती अठीने आवे, अरे आ तो मुल्की है हाल में भूले कोनी पण आजा हेला हूं कसान पड़े, पहला तो दर दर करती रेल आई वे जो हाको कर गली गजाई देती, मालणी आई बीकानेर सु मैं मालन हल बेली और मैं हूँ छोरी मालन की जेड़ा के गीत गाती, फिर पोल बाने टोपलो उतार बाबूजी ओ ले वो बाबूजी ओ ले वो कत्यालो कर राखती, पर आज वो कहीं वह तो आई और गाबड़ी हटी कर चालेगी बोली तकाद नहीं, कहीं मुल्की पहला वाली नहीं रही, मैं तो लखना उन्मान केवनो चाहतो को मुल्की तू हाल तई मुल्के है, मतलब वो रो वही शरीर काना में गाड़ा नाक में नानो क्लूंग मिलाड में कंकुरी टीली कमर ताई लटकती लांबी सी एक चोटी, फिर वेलवेट रो जामुनो फोलको और गुलाबी साड़ी थेना सात बरसा में कते मिल आए, जब सात बरसा पहली बार मारी गली में साग ले आई साग भी काई मूला लाई खाली, बापू पूछो के साग ले आई है मूला, फिर वणी दन तो चौतरी पे टोपलो उतराए थोड़ा दाना दे ले काड़िया, फिर दूजे दन वेज मूला ई मूला सु बेम होवे कि कटे इंसायु जोनी जो नाम मूलकी पड़े हुए, हाँ तो मूलकी मारे अटे सगा पहले आती और माया

0: रे हाथ री बोणी कर आगे जाती, बूंद बूंद सु घोड़ो भरे और घोड़ो घास यारी करे तो खावे काई, मारी केवता ने बात बात पे मुंडे लाती। वनु को मानना हो कि प्रेम रे बिचाले कदे पैसा ने नहीं लाना, प्रेम प्रेम री ज्यादा और पैसा पैसा री ज्यादा, नहीं तो फिर दोनों में सु एक ने छोड़ देवने होशियारी है। वनी री आ बात री परख करवा सारू, एक दिन मैं कहो मुर्गी कांदा देजे किता एक किलो, केवता मैं बोलियो पर दोस्ती करनी पड़सी। वह गिग्याती बोली कहीं सु, अरे घास पैसा आज को निकाले ले लीजिए। ठीक है मैं घास दोस्ती कर भूखी भी रह जाऊंगी, केवने नहीं चाहू। वनी दंसु हिवड़े काची डोरी मेड़ाती लागी, नहीं जाने क्यों वह कदे मारा हाथ कदे उनियारो और कदे पाछे मोरा देखा करती। मैंने ईश्वर लखायो एक बात याद आवे, वह फैमिली बोर देसी बोर चमेली बोर और चंद बोर नहीं जाने किसा किसा बोल आई। मैं देखते कहो आज बोरा तो खाना पड़सी। मुलकती बोली खाओ नहीं, मैं कदे मना करो पर पैसा को नहीं, मायर होता क्यों भूख बोला वाले से पर मायर का नहीं जोर तो कम मुलक पड़ी काय ते गमाई गया। मैं हूँ किसा राशि पूरे फिर हाथरी देखावा देखी या फिर अजीब बनी लंबी है देखा पूरी है पानी मोकली, पर बाबूजी कंजूसी सुनेर गणो रखो पैसा तो मोकला भंडार बिल भी जाने क्या क्या बोलन जा रही थी। ए मुल्की सांची सांची बता मजाक छोड़, केवता में बात काटी। वहां बोली सांची बताऊं बाबूजी, एक खासियत तो सुनो, एक आंखें सामी कोई देख लो तो बस भड़की पर जावे भड़की। एक बात और मुल्की री बातारी गिराक वह बोलती गणी ही और ये बोली सुन देखता देखता भरे टोपलो बेच पाची घरे, वह भी गीत गाती थकी। मैं हूँ चोरी मालन की सब्जी सगली बिकी छे, फिर मैं घास से जान वालो हो मुल्की आएगी और ठटो करती कहो टाई वाई सूट बूट नंबर एक। फिर जब उन्हें खबर लगी कि मैं गांव छोड़ शहर जाऊं तो एकर मैं ओ केहूं कवा मुल्की सु पाची इतिश्री बनगी तो कि बेसी नहीं बड़ी की कंकुरी टीली पसीना सुगलर नाक पे आएगी। फिर मून होटल सबड़ाई बोल निकलिया पाचा कदा बोला बाबूजी थारे बिना गुवाड़ी सुनियार वे जावेली, ओलू तो नहीं आवेली फिर भी आजो बेगज छुट्टी देकर। वणी की भावुकता ने समझता में बात फेरता कहो थारे सब्जी फिकर मत न कर मान लिया करेगी। फिर आज जब मैं पाछो आई हो तो नाचन बोले क्यों नहीं, मेणा सु आंसूडारी जड़ी फूटगी सातेड़ा जीप ताड़वे चैटगी जमी खिसकगी। जब बाकर अड़ाता लागिया जब माँ बतायो करे वेंडा आ मुल्की नी वणी री जोड़ की बहन है, मुल्की तो लायन चार बस्ता पहली सगरा ने छोड़ भगवान ने वाली रहेगी। गटी पिंदे ताक तो पीवने कालो खाइयो भी मुल्की ने महचन कसो हाको करती। एक मारे हिवड़े बोल फूटे ओलू तो नहीं आवेली पर आ गुवाड़ी थारे बिना सुन्याड हो जावेली मुल्की बेगी राजे छुट्टी देकर। मैं तो वनी रे केवन सु आइयो पर वा कई मार केवन सु आवेली पाछी।
1: श्रोताओं अभी आपने सुना कार्यक्रम वातायन और वातायन के अंतर्गत आपने सुनी राजस्थानी कहानी और कहानीकार थे श्यामदास वैष्णव। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, प्रातः के 7:30 हुए हैं। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।
2: श्री वर्मा का नमस्कार, लीजिए सुनिए आज का ये गीत।

0: अभी आपने सुना फिल्म प्रिंस का गाना और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत के बोल फारूक कैसर और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है हम है राही प्यार की।

अभी आपने सुना विश्वास फिल्म का गाना मनहर और सुमन कल्याणपुर के युगल स्वरों में। रचना थी गुलशन बावरा की।

0: संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने सुना महल फिल्म का ये गीत, जिसे स्वर दिया किशोर कुमार और आशा भोसले ने, रचना थी आनंद बख्शी की, धुन कल्याण जी आनंद जी का।

0: अभी आपने सुना महुआ फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में, रचना कंवर जलालाबादी की, धुन सोनी ओमी।
1: सुर्खियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

अभी आपने सुना प्रेम पुजारी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, रचना नीरज की और धुन सचिन देव बर्मन का। इसी के साथ ही हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मंजरी वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी

0: शामिल हैं। श्री मोदी आज छठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
4: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
5: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
6: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनगोल, केवंझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख

0: पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लद्दाख द्वीप पर दो ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत डीएसवी निपुण को शामिल करने जा रही है।
1: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अचरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नम्बर है 0112-3104-8101-2-3-4-4-4-4। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है,

0: नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत। चार विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची। सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फोरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स। नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बीजीएल विस्फोटक का डंप जब्त। राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
1: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई। 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम बैंड 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः की 8:15 हुए हैं। अब पेश है कुछ दिल से कार्यक्रम।

माँ की ममता, पापा का प्यार, बहन का साथ, भाई का दुलार। मिल जाए अगर ये सब एक बार, तो समझो जन्नत है परिवार। सभी कुछ दिल से कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को खुशबू जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारा विषय है परिवार। श्रोताओं, परिवार शब्द सुनते ही मन में एक तस्वीर बनती है, एक आंगन, उसमें दादी दादा, माता पिता, भाई बहन और सबके चेहरों पर मुस्कान। परिवार ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। ये दुनिया की पहली पाठशाला है और आखिरी सहारा भी। कहा जाता है कि मकान ईंट और सीमेंट से बनता है, लेकिन परिवार प्यार, त्याग और एहसास से बनता है।

0: ये वाला रिप्लाई
1: बहू जी मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
2: अच्छा
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी वो दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: हम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
1: हर लेन देन अब है आसान।
4: श्रोताओं, परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं है, परिवार वो है जहां बिना कहे बात समझ ली जाती है, जहां माँ आपके चेहरे से भूख पहचान लेती है, जहां पिता बिना बोले आपकी फीस का इंतजाम कर देता है, जहां बहन आपकी जेब में चुपके से 100 रुपए रख देती है।

परिवार में दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई और सभी बच्चे एक साथ रहते हैं। एक ही रसोई, एक ही आंगन। पहले भारत में यही परंपरा थी। इसमें प्यार बढ़ता नहीं बल्कि बढ़ता है। एक बच्चा गिरता है तो उठाने वाले 10 हाथ होते हैं। श्रोताओं, एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे, शहरों में नौकरी और जगह की कमी के कारण आज यही रूप ज्यादा देखा जाता है। ये छोटा जरूर है पर इसमें भी प्यार और संस्कार कम नहीं होते हैं।

श्रोताओं, बच्चा ABCD स्कूल में सीखता है, लेकिन बड़ों का आदर करना, सच बोलना, मिलकर रहना, ये सब परिवार में सीखता है। दादी नानी की कहानियां यही असली शिक्षा है। श्रोताओं, दुनिया में जब सब साथ छोड़ देते हैं तब परिवार ही खड़ा रहता है। नौकरी चली जाए, बिजनेस में लॉस हो जाए, तब भी मां कहेगी, कोई बात नहीं बेटा, तू फिर से कोशिश कर, हो जाएगा।

श्रोताओं, पैसा, गाड़ी, बंगला, शोहरत सब आनी जानी है। बुढ़ापे में साथ कोई नहीं देता, सिर्फ परिवार देता है। इसलिए परिवार को समय दो, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा धन परिवार ही है, और परिवार है तो हम हैं।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत सीमा मिश्रा के स्वर में।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो,
3: हाँ हाँ,
2: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

एफएम बाणिक 3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत सीमा मिश्रा के स्वर में, प्रातः के 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों में देर रात तक मंथन जारी रहा। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। कजली तीज का पर्व आज परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। भाद्र माह की चतुर्थी भी आज। और प्रदेश में 3 सितंबर से उत्तर पूर्वी और पूर्वी भागों में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री 2 दिन की किर्गिस्तान यात्रा पर बिश्केक पहुंच चुके हैं। हवाई अड्डे पर किर्गिस्तान के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष आदिल बेक कासिमलिएव ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पारंपरिक किर्गिज नृत्य की प्रस्तुति भी हुई। श्री मोदी सम्मेलन से इतर एससीओ देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उन्होंने कहा है कि भारत सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एससीओ देशों के साथ मिलकर काम करेगा। सम्मेलन का विषय एससीओ के 25 वर्ष सतत शांति, विकास और समृद्धि की ओर एक साथ है। सम्मेलन में क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद विरोधी अभियान और सीमा पार खतरों से निपटने पर चर्चा होगी। प्रदेश में 309 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन होने के चलते नामांकन स्थलों पर काफी गहमा गहमी रहने की संभावना है। नामांकन दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। अब तक प्रदेश भर के 10,245 वार्डों के लिए 13,000 से ज्यादा नाम पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। नामांकन पत्रों की जांच 1 सितंबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 3 सितंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद चुनाव मैदान की स्थिति स्पष्ट होगी। 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इससे पहले कल प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन देर रात तक जारी रहा। गौरतलब है कि इन नगरीय निकायों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 14 सितंबर को होगी, जबकि नगर निकायों के अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को कराया जाएगा। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देश पर आदर्श आचार संहिता के तहत शराब बनाने, इसके भंडारण, परिवहन और इसकी बिक्री पर जिलों में दबिश दी जा रही है। सरहदी क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आबकारी निरोधक टीमों द्वारा श्रीगंगानगर जिले में 600 लीटर वॉश सहित शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। में 30 लीटर अवैध हथकड़ शराब भी बरामद की गई। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 112 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक बी

0: आदित्य के निर्देशन में चलाए गए अभियान के दौरान 48 पुलिस टीमों में शामिल 219 पुलिसकर्मियों ने 302 स्थानों पर एक साथ दबिश दी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 16 ग्राम चिट्टा, करीब 17 किलो डोडा पोस्त, 334 पव्वे अवैध शराब और 2 धारदार कापी बरामद किए। अभियान में जघन्य मामलों में वांछित 5 आरोपी, 1 हिस्ट्री शीटर और 8 स्थायी वारंटी भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने बताया कि अपराधियों और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। राज्य में इन्फ्लुएंजा H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। पिछले 27 दिनों में प्रदेश में 55 मामले सामने आए हैं। विभाग ने आमजन से फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने पर सावधानी बरतने और संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक एहतियात अपनाने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण होने पर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है। सवाई मानसिंह अस्पताल में मौसमी बीमारियों के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील महावर ने बताया कि प्रदेश में स्थिति सामान्य है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एहतियात के तौर पर मास्क का उपयोग करने और फ्लू जैसे लक्षण होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह दी है।
1: जो नॉर्मल फ्लू होता है उसमें बुखार 100-101 तक होता है, लेकिन इसमें बुखार 103 और 4 तक रहता है। तो एक तो हाई ग्रेड फ्लू है, बाइलजिया पूरी बॉडी में मसल में होता है, मास्क में दर्द रहेगा उसके, खांसी रहेगी उसके, और कभी कभी कुछ केसों में उल्टी दस्त भी होते हैं। ये सब चीजें एक स्वाइन फ्लू में होती है। बचाव और सावधानियों की अगर मैं बात करता हूँ, जब भी घर में कोई सदस्य बीमार हो जाए तो एक लेव जैसे बीमार होता है, बीमार होने के बाद उसको मास्क जरूर लगाए, क्योंकि वहीं से वो स्प्रेड होता है घर में। बुजुर्ग महिलाएं हैं घर की, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, छोटे बच्चे हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है लंबे समय से, इनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मास्क जरूर लगवाना। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो तुरंत प्रभाव से घरेलू इलाज ना लेके, सबसे इम्पोर्टेंट है घरेलू इलाज ना लेके डॉक्टर को दिखाएं।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में कजली तीज पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। आज ही भाद्र माह की चतुर्थी भी मनाई जा रही है। महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाने और 16 श्रृंगार के साथ निर्जला व्रत रख रही हैं। इस अवसर पर पाली जिले में महिलाएं पारंपरिक तीज गीत गाते हुए झूले झूलकर पर्व की खुशियां मना रही हैं। शाम को महिलाएं सखियों के साथ मिट्टी और गोबर से तलाई बनाकर निबड़ी की पूजा करेंगी। इसके बाद चांद के दर्शन और पूजन कर पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। महिलाएं आग के पत्तों की पत्तल पर सत्तू और फल रखकर व्रत खोलेंगी। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि नवविवाहिताओं में पहली तीज को लेकर विशेष उत्साह है।
2: आज भाद्र मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के अवसर पर प्रदेश भर में सातोड़ी तीज मनाई जा रही है। इसे कजली तीज या बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। आज सुहागी महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अखंड सुहाग और घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करेंगी। कल सिंजारे के मौके पर महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाई। सुहागी महिलाएं सायकाल 16 श्रृंगार कर तीज माता की पूजा अर्चना करेंगी। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर सत्तू खाकर अपना व्रत खोलेंगी। तीज के मौके पर घरों में कई तरह के पकवान बनाए जाएंगे। मुख्य रूप से सातू का भोग तीज माता को लगाया जाएगा। वहीं आज चौथ का व्रत साथ होने से चौथ माता और भगवान गणेश की पूजा भी साथ ही की जाएगी। नर्मदा धादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: प्रदेश में 3 सितंबर से उत्तर पूर्वी और पूर्वी भागों में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 7 सितंबर के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कल श्रीगंगानगर 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहा। फिलहाल बारिश का दौर थमने से प्रदेश में उमस और गर्मी का असर बना हुआ है। हालांकि अधिकांश शहरों के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। जोधपुर से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को कल से नई उड़ान की सुविधा मिलेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस मुंबई जोधपुर दिल्ली के बीच ये नई उड़ान शुरू करेगी। उड़ान सुबह 11:05 पर मुंबई से रवाना होकर दोपहर

0: 11:55 पर जोधपुर पहुंचेगी और वहां से दोपहर 1:30 दिल्ली के लिए रवाना होगी। वापसी में उड़ान दिल्ली से 2:45 पर रवाना होकर जोधपुर होते हुए 7:20 पर मुंबई पहुंचेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों में देर रात तक मंथन जारी रहा। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। कजली तीज का पर्व आज परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। भाद्र माह की चतुर्थी भी आज। और प्रदेश में 3 सितंबर से उत्तर पूर्वी और पूर्वी भागों में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1:00 प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 96.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाज में कुछ गजलें।

0: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में कुछ गजलें।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज में कुछ गजलें। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक सुंदर विचार। इसे भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और दीपक पटेल जी।
1: लिखते हैं हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी कोशिशें ही बड़ी सफलता की राह बनाती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर और प्रेरणादायी संदेश के लिए। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: मुंगी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया और पोता मास्टर अल कबीर।
0: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी लिखते हैं।
1: खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि कोई आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। लेकिन एक बार फिर से हमारा निवेदन है कि सुविचार जरूर भेजें, पर उससे कहीं अधिक कार्यक्रमों पर लिखें, प्रतिक्रिया भेजें और प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
1: एक बार ऐसा करके देखिए, सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा।
0: जी हाँ, सच में बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए। तो श्रोताओं ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई मजेदार और प्रेरक अनूठी जानकारी। तो विमलेश जी, क्या है वो मजेदार अनूठी बात जो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं?
1: अजी जी, बात तो सचमुच बड़ी प्रेरक है। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बेशक सुनने में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन ये हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देने की क्षमता रखती है। तो श्रोता मित्रों, जरा कल्पना कीजिए कि किसी फैक्ट्री में एक मशीन ने 20 या 30 वर्षों तक लगातार काम किया।
0: उस मशीन ने लाखों वस्तुएं बनाई, वस्तुएं बाजारों में गई, उनके कारण व्यवसाय हुआ, यानी उस मशीन ने हजारों परिवारों की रोजी रोटी में योगदान दिया। मगर अब वो पुरानी हो चुकी है और उसकी जगह नई मशीन आने वाली है
1: जी।
0: आप कहेंगे ये ठीक भी है, क्योंकि बदलती तकनीक के साथ मशीनें तो बदलती हैं।
1: श्रोताओं, ऐसा अक्सर होता है ना कि कई जगहों पर पुरानी मशीन को कबाड़ समझकर हटा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे जापान में प्रचलित एक अनूठी संस्कृति के बारे में। जापान में कुछ कंपनियां और कर्मचारी उस पुरानी मशीन को हटाने या रिटायर करने से पहले खास काम करते हैं।
0: श्रोताओं, हटाए जाने से

0: पहले उस दिन वहां के कर्मचारी मशीन के पास जमा होते हैं। वे याद करते हैं कि किस प्रकार इस मशीन ने उनका परिवार चलाया, रोजी रोटी चलाई और बच्चों को पाला। वे याद करते हैं कि किस प्रकार उस मशीन ने देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की प्रगति में योगदान दिया।
1: थोड़ी देर में इस बात पर भी कृतज्ञता से चर्चा करते हैं, फिर वे मशीन के सामने खड़े होकर सर झुकाते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वे कुछ क्षण रुकते हैं और कहते हैं,
0: धन्यवाद, तुमने वर्षों तक हमारा साथ दिया, तुमने पेट पालने में हमारी सहायता की। श्रोताओं, आपको विशेष रूप से बता दें कि ऐसा करना कोई सरकारी नियम नहीं है, लेकिन यह जापान में मशीनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की संस्कृति का हिस्सा है।
1: साथियों, ये बात बहुत गहरा चिंतन और दृष्टिकोण लेकर हमारे सामने आती है। आइए जरा हम सब सोचें, अगर एक निर्जीव मशीन के प्रति इतना सम्मान हो सकता है, तो उन जीवित लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में कभी न कभी योगदान दिया है।
0: जी हाँ श्रोताओ, क्या हमने कभी अपने स्कूल के उस शिक्षक को धन्यवाद के साथ याद किया जिसने कभी हमें पढ़ाया था?
1: जी,
0: माता पिता भी इस सूची में शामिल होते हैं। श्रोताओ, कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बनाते रहते हैं और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम उनके प्रति कई बार कृतज्ञ नहीं रह पाते।
1: जी हाँ श्रोताओ, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कह देना ही नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। ये स्वीकार करना है कि मेरी सफलता समृद्धि में अनेक लोगों का योगदान है।
0: जी श्रोताओ, एक बात और, आइए जरा अपने घर के चारों ओर नजर दौड़ाकर देखें। वो पुरानी कुर्सी, वो पुरानी टेबल, शायद वो हमारा पुराना कंप्यूटर,
1: जी
0: शायद वो पुरानी किताब जिसने हमें अपने जीवन का रास्ता दिखाया, क्या वे सभी हमारे आभार के पात्र नहीं है? वे सभी हमारे आभार के पात्र हैं। इस्तेमाल की हुई वस्तुएं भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, मशीनों को रिटायर करने की जापान की एक छोटी सी प्यारी सी परंपरा हमें याद दिलाती है कि जिन निर्जीव वस्तुओं से हमारा जीवन चलता है उन्हें हमेशा सम्मान मिलना ही चाहिए।
0: तो श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में कोई पुरानी वस्तु जो अब उपयोग में नहीं आने वाली है, तो उसे भी सम्मान पूर्वक विदा कीजिए, क्योंकि उसने भी कभी न कभी आपकी सेवा की है।
1: याद रखिए, महानता इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, महानता इस बात में है कि जो कुछ हमारे पास रहा है उसके प्रति हम कितने आभारी हैं।
0: श्रोताओ, हमारे देश में भी मशीनों का सम्मान विशेष अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
1: जी, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहाँ आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: जी, तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न है,
0: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और बताया गया है कि कूड़ा इधर उधर न फेंकना और उसका उचित स्थान पर निपटान करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: CIET NCERT presents the program द स्मार्ट मंकी।

0: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए सुनते हैं एक और कार्यक्रम, शीर्षक है कालीबाई बंगा।
3: ये कार्यक्रम राजस्थान की वीर बालिका कालीबाई बंगा के बारे में जानकारी देते हुए उल्लेख करता है कि किस प्रकार उसने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपना जीवन भारत माता के लिए उत्सर्ग कर दिया।
4: नमस्कार साथियों।
5: मेरा भी नमस्कार।
4: साथियों, राजस्थान की भूमि रण बांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
5: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
4: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियाँ ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर, जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
5: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोग गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
4: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
5: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
4: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
5: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
4: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें दे रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
5: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश

0: फिल्म की चर्चा हो।
1: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में

0: रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
1: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
0: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
1: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
0: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सिंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सिंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सिंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
1: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं? यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
0: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
2: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूँ तुमको, सिपाहियों इसे ट्रक से बांधकर घसीटो।
0: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
1: साहब ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
0: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
1: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
0: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
1: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
0: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
1: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
0: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
1: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
0: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काट कर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
1: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ, घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
0: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहाँ ले जा रहे हो?
1: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
0: सिंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
1: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
0: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ काली बाई।

0: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
1: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
0: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान के इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
1: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
0: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
1: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
0: कालीबाई तुम्हें हमारा सलाम।
2: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनिंकन मयंक कुमार, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
3: श्रोताओ अभी आपने सुना कार्यक्रम कालीबाई बंगा।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, क्योंकि उमंग कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, कुसुमलता, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: FM बैंड 6.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 10 बजने को है। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका तीसरा भाग।
1: मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मोमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा। अगर नहीं आता है तो आई विल रिजेक्ट एंटायर माय ट्रेनिंग एंड फाइंड आउट समथिंग एल्स। तो मुझे किसी भी फॉर्म को इमिटेट अनुकरण नहीं करना है, किसी भी फॉर्म से ये लेके वहां से ये लेके वो लेके कुछ गुलदस्ता बनाना है या खिचड़ी बनानी है। सबका आदर करते हुए मैंने ये तय किया कि मुझे मेरी कहानी के लिए नई तरीके की रंग भाषा खोजने की सोचनी पड़ेगी।
2: गजब।
1: कोई ये ना कहे कि मूवमेंट वहां से लिया, कोई यह न कहे कि कॉस्ट्यूम वहां से लिया, कोई ये न कहे कि म्यूजिक यहां से उठाया, लाइटिंग वहां से उठाई, ये कुछ मेरे नाटकों पे आक्षेप नहीं पाना चाहिए। इसलिए पहला मैंने टेस्टिंग ग्राउंड जो तैयार किया वो था झुलवा।
2: जी, जो आप वहां से लौट के आते हैं।
1: जो मैं वापस से लौट के आया और दो तीन साल यहां का व्यावसायिक नाटक सीखा मैंने, वो भी रह गया था मेरा सीखना।
2: जी,
1: कि व्यावसायिक नाटक कैसे होता है, टूर कैसे होते हैं, हर शो ऑडियंस के साथ कैसे बदलता है। उसके लिए मैंने रिप्लेसमेंट एक्टर के हैसियत से काम किया 200-250, जिसमें लक्ष्मीकांत बेरडे से लेके वर्षा उसगांवकर से लेके सारे एक्टर थे।
2: ये एनएसजी से लौटने के बाद
1: मैंने 3 साल के बाद नाटक किया।
2: अच्छा।
1: मुंबई में आने के बाद तो पहला जो झुलवा मैंने किया वो मेरा टेस्टिंग ग्राउंड था, वो बर्निंग इश्यू है।
2: जी बिल्कुल।
1: महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे जो कम्युनिटी है, क्या कहते हैं, जोगते जोगतीनी कम्युनिटी है, वहां पर जो लोग मन्नत मांगते हैं यिल्लम्मा गॉडेस से कि मेरा ये होने दो, पहली जो बेटी होगी मैं तुझे दान कर दूंगी, और उससे जो कम्युनिटी तैयार हो गई है वो है देवदासी। देवदासी का ही एक अलग रूप है, टेम्पल की देवदासी अलग है, ये ग्राम की सर्विस सेंटर है वो। मतलब देवदासी जो जोगतीन है उसके पास कोई भी पुरुष अगर उसके दरवाजे पे दस्तक दे तो वो किसी भी पुरुष की सेवा करना उसका काम है। वो मना नहीं कर सकती। उसकी उम्र क्या है, उसका गुलिया क्या है, उसका पलाना, वो कुछ नहीं, सी हैज टू बी देयर फॉर डिलीवरिंग द सर्विस। तो ये इश्यू को लेके मैंने नाटक करने की ठान ली। ये उपन्यास था उत्तम बंडू तुपे, एक सिपाही के हैसियत से आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में पुणे के ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने ये लिखा था उपन्यास, और इस उपन्यास पे मैंने काम करने की बात ठान ली। और पहला ही नाटक जो संगीत नाटक अकादमी के किसी एक स्कीम के लिए, असिस्टेंस टू यंग थिएटर डायरेक्टर्स के लिए मैंने किया, और उसका ओपनिंग शो भारत भवन भोपाल में हुआ।
2: वाह वाह।
1: 10 अक्टूबर 1987।
2: गजब।
1: इसलिए भारत भवन का मेरा रिश्ता अलग है।
2: जी जी।
1: तो वहां पर ये पहला शो हो गया, और वहां पर कारण जी से लेके अशोक वाजपेयी से लेके ऑल हुज हु ऑफ इंडियन थिएटर वो नाटक देखने के लिए थे, और वो पहला ही शो हमारी पहली रन थ्रू थी।
2: ओहो।
1: पर वो जो गजब का शो हुआ है उसके बाद हमने 400 साढ़े

0: सौ पौने पांच सौ जितने भी शो किए होंगे उससे बेहतर शो नहीं कर पाए।
1: सयाजी शिंदे थे,
0: सयाजी शिंदे, सुकन्या कुलकर्णी, आदिति देशपांडे, गौरी केंद्रे, आशा शेल, अरे सारे लोग थे, भारत तांडेल, तो ये सारा 42 एक्टर स्टेज पे थे, फिर बैक स्टेज में 7-8-10 और थे। तो ये मुझे लगा कि वो पहली बार ऐसा सिद्ध हुआ कि नहीं यार ये कहीं से कुछ नहीं लिया है, उनका कोई ना आपका म्यूजिक है ना डांस है, जो जैसा उसका अंग चलन होगा वैसा वो नाचता है। तो फिर सयाजी को जैसा अंग चलन था सयाजी नाचता था, सुकन्या का जैसा था वो वैसा नाचती, तो कुल मिलाकर एक नया एक्सपेरिमेंट हो गया कि एक बर्निंग ज्वलंत समस्या है आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के सामने। हर साल कितना भी कानून किया जाए तभी 2,500 बेटियां भगवान को चढ़ाई जाती, समर्पित की जाती है और फिर उनका भविष्य किसी को नहीं मालूम। तो वो नाटक का पहले शो से लेकर निरंतर हर शो में पूरा हंगामा जहां वहां हुआ। नामदेव ढसाल जो मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, वो पहली बार जब देखने आए, उन्होंने देखा नारायण सुर्वे, देखा पुल देशपांडे, जितने भी महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जिसने वो नाटक नहीं देखा, या इवन देश में भी हर जगह वो चला गया। तो नामदेव ढसाल ने मुझे फोन किया कि मुझे तेरा नाटक देखना है, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, आइए। तो मुझे लगता है रविंद्र नाट्य मंदिर में आए थे वो। वो जब देखा उन्होंने तो वो खुद रोते हुए अंदर आ गए बैक स्टेज में
1: जी,
0: और उन्होंने गले लगाया और बोला कि तूने तो मेरी ही कहानी यहां मेरे सामने रखी है, एंड ही वाज इन टीयर्स
1: जी।
0: उन्होंने उसके बाद भी 14 शो देखे, हर बार वो उसी माइंड सेट में आते थे। उन्होंने उसमें से कुछ शो इंटरनेशनल कोई साहित्य का करते थे उसमें लगाया, माधव गडकरी और दया पवार, और इन्होंने एक जागतिक मराठी परिषद हुई उसमें वो जानबूझ के शो रुका हुआ था तो करवाया। तो ये था कि उन्होंने एक वाक्य जो कहा तो मुझे बहुत पसंद आया, जो बहुत फेमस भी है, नामदेव जी ने जो कहा कि हम दलित पैंथर लगभग 35-40 साल होने को आए थे जो भी थे, कि जो इतना नहीं कर पाए ये नाटक उससे 2 कदम आगे चला गया।
1: वाह क्या बात है, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: पु ल देशपांडे ने भी कहा था कि जब वो मेरे बॉस थे एनसीपीए में, मैं जब एनसीपीए नौकरी कर रहा था तो तब मैंने वो नाटक किया था, तो उन्होंने देखा और उस समय तो मिलने नहीं आए, यूजली बैक स्टेज में मिलने आते हैं लोग नाटक खत्म होने के बाद, वो आए नहीं। पर दूसरे दिन जैसे मैं ऑफिस गया तो सुबह इतने लोग मुझे बोल रहे थे, साहब आपका इंतजार कर रहे, इंतजार कर रहे। मैं गया, मुझे लगा कि क्या बोलेंगे, और आते ही उठ के खड़े हो गए बॉस पु ल देशपांडे, क्या कहते हैं हमारे सबके आदर्श
1: जी,
0: और गले लगाया और बोले, रात भर नहीं सोया हूं, ना मैं सोया हूं ना उनकी पत्नी मिसेस देशपांडे, वो नहीं सोई, बोले हम रात भर तुम्हारी नाटक के बारे में बातें कर रहे हैं।
1: क्या बात है,
0: सोने ही नहीं दे रहा है तुम्हारा नाटक। तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक वाक्य कहा कि आज नहीं तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या किया है, 5-10 साल के बाद पता चलेगा कि तुमने एक भारतीय रंगमंच पे एक नई रंग भाषा का नया आइकॉनिक एग्जाम्पल पेश किया है। तो ये सारा का सारा कहने का तात्पर्य इतना था कि जो मेरा चिंतन था या मेरी सोच थी कि मुझे कोई भी फॉर्म से कुछ भी उधार नहीं लेना है,
1: अपनी धारा बनानी,
0: मेरी धारा बनानी है। और वो देखने के बाद, समझने के बाद, उस अनुभूति को पचाने के बाद लोगों को ये लगना चाहिए ये भारतीय है
1: जी,
0: जो मेरी खोज थी टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर, वो मेरे हर नाटक में वो भारतीय तो लगता है पर कहीं भी उसके रूट्स नहीं मिलते, और कुल मिला के लगता है ये तो भारतीय है सब। आई थिंक ये चाहे वो गजब तेरी आधा या गजब तीचे आधा देखने के बाद की विमेन अगेंस्ट वॉर वो नाटक था
1: जी जी।
0: अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये औरतों ने युद्धखोर जो पुरुष है उनके विचार के खिलाफ किया हुआ विद्रोह है, एक निषेध है, तो उनके लिए मैं औरत को किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिप्रेजेंट करूं। मैं 2.5 साल खोज रहा था कि फेमिनिटी किस इंस्ट्रूमेंट से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा या ऑडियंस कर पाएगी। सारे इंस्ट्रूमेंट खंगाल के देखे पूरे देश के, एक भी औरत को रिप्रेजेंट नहीं करता। हारमोनियम पुरुष, तबला पुरुष, ढोलकी पुरुष, ढोल पुरुष, जितना भी है।
1: फिर
0: घुंघरू एक है, पर घुंघरू औरत ने खुद नहीं पहने हैं, वो भी पुरुष ने अपने जाने के लिए उसके पैर में बांधे हुए है। तो मैंने कहा ये भी तो नहीं हो रहा है
1: जी,
0: फिर क्या होगा। तो मेरी पत्नी गौरी केंद्रे घर में किचन में ये कोई उनका छोटा सा एक भगवान के 2-3 ये रखे उन्होंने अपना आरती कर रही थी, तो छोटी जो घंटी है हाथ में लेके टिंग टिंग टिंग कुछ सुनाई दिया और वो क्लिक हो गया, यार जिसकी मैं खोज कर रहा था शायद यही है।
1: वाह।
0: और वहां से पता चला कि जो हमारी वाग्या मुरली की परंपरा है उसके हाथ में भी घंटी दे देते हैं।
1: हाँ।
0: तो फिर उस घंटी को मंगाया हमने 10-12 घंटियां, फिर बजाने वाले को बुलाया, सुर वाले को बजाया, और अलग अलग तालों में सिर्फ 12 लड़कियों के हाथ में वो घंटियां देके हमने दिन भर बजवाया, और हमें लगा कि इससे हमारा नाटक हो जाएगा।
1: क्या बात है,
0: वो पूरा का पूरा नाटक उस घंटियों से बंधा हुआ है। वो जो औरतें हैं जो अपनी कहानी बता रही है, उनके प्रोटेस्ट की कहानी बता रही है, युद्ध जो आज की तारीख में तो बहुत रेलेवेंट है वो नाटक, उसकी कहानी बता रही है, और वो कहानी बता रही है वो उसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो बेल है।
1: वाह वाह।
0: वो श्रृंगार का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, वो गुस्से का भी होता है, वो विद्रोह भी करती है वो बेल, और सबके हाथ में बेल है, और उसमें 12 ही औरतें रही, 12 पुरुष 12 औरतें, 25 लोग ऑन स्टेज है। तो फॉर्म इवॉल्व करने की मैं जो बोल रहा था आपको कि रंग भाषा को ढूंढने का जो स्वभाव मेरा बन गया, फिर वो हर नाटक में रिफ्लेक्ट हो गया। रणांगण किया उसमें अलग तरीके से हो गया, 4 दिवस प्रेमाचे किया उसको अलग तरीके से हुआ, झुलवा में अलग, जाने मन जो पूरा इतना फेमस नाटक जो किन्नरों के जीवन पे आधारित था, जो एनएसडी रेपेटी ने, उसने तो पूरा देश में हंगामा कर दिया, उसके लिए उसका फॉर्म अपना अलग है, मेरे एक नाटक का फॉर्म दूसरे नाटक के लिए बेकार है।
1: अच्छा मुझे एक बात बताइए, झुलवा ने जिस तरह का हंगामा किया था, क्या आपके लिए अगला नाटक करने से पहले इतनी बड़ी लकीर नहीं खींच गई थी?

0: सबको रोक
1: और ज्यादा था। मैं कुछ लोगों के नाम बता देता हूँ, जैसे दुबे जी ने कहा था, सत्यदेव दुबे जी, पंडित सत्यदेव दुबे जी ने, मुझे नहीं कहा था, उनके जो शागिर्द है उनसे कहा था कि झुलवा देखने के बाद बोले इस लड़के ने झुलवा तो बहुत अच्छा किया, पर इसको जो डायरेक्शन की जितनी भी व्याकरण आता था, जादू आती थी, डिवाइस ऐसे थे, सब इसने दांव पे लगा दिए। अब आगे क्या करेगा ये, आगे कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो मैंने जैसे सुना, बहुत सीरियसली लेता हूं ऐसे क्रिटिसिज्म को, क्योंकि बहुत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो। तो मैंने ये कसम खाई थी कि फिर ऐसा दोबारा नाटक नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। और फिर एक साल के बाद एक झुंझवारे से नाटक किया मैंने, जो डेड सीरियस और रियलिस्टिक नाटक था, जो पुल देशपांडे जी ने ही उसका रशियन नाटक का एडाप्टेशन करके मुझे दिया। और वो देखने के बाद लोगों को लगा ये और कुछ है यार। फिर दो चार पांच दस नाटक होने के बाद सत्यदेव दुबे ही बोले, नहीं यार उस डायरेक्टर को ताड़ना संभव नहीं है, उसके पोटली में बहुत ज्यादा जादू है।
0: वाह वाह वाह वाह, सुंदर बात है। इतनी जादुई बातें, यहाँ एक गाना सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: रामन केंद्र जी, बहुत ही दिलचस्प बातें आपकी इस पूरी यात्रा की हो रही हैं। मैं केरल प्रवास पर वापस लौटना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बिंदु वहां पर छूट गए। 2 बरस आपने वहां बिताए
1: जी,
0: तो भाषाई समस्या जरूर आई होगी, उससे आप कैसे निपटे?
1: मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या तो भाषा की थी
0: जी,
1: क्योंकि जिन लोगों के साथ हमें काम करना था
0: जी,
1: वो देहाती लोग थे वहां के
0: जी। जी बिल्कुल,
1: खासकर तैयम, मुड़ियेटू और पड़ेनी। मतलब जैसे शहर में जाते थे, त्रिचूर में गए तो वहां अंग्रेजी तो समझने वाले लोग थे, तो हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते थे, लेकिन ये गांव में ठेठ जाके जो काम करना था वो तो सारे मलयालम, स्टैंडर्ड जो मलयालम है, प्रमाण मलयालम है, वो भी नहीं बोल पाते थे।

0: उनकी अपनी एक बोली डायलेक्ट होती थी मलयालम की, तो इनसे कैसे निपटाया जाए। पहले चार महीना तो हर दिन तकलीफ होती थी, मैं और मेरा एक मित्र था, मेरा क्लासमेट हॉरेन भट्टाचार्य, क्योंकि वो इतनी दिन भर मलयालम या साउथ इंडियन भाषा सुनने की आदत नहीं थी
1: जी।
0: मुझे भाषा तो भाषा होती है, उसका अनादर करने की कोई बात नहीं है, पर आपके कानों को वो भाषा सुनने की आदत ना हो और दिन भर केवल मलयालम मलयालम मलयालम और वो भी आपको पकड़ में नहीं आ रही है, तो जी, ऐसा जी। लगता हर दिन शाम को सर में दर्द होने लगता था, वो फोनेटिकल एक्सपीरियंस कानों को ना होने की वजह से। तो वाकई हम उसकी तकलीफ झेल रहे थे कि क्या किया जाए। तो फिर थोड़ा थोड़ा कभी चाय वाले के पास, कभी हमारे जो साथ में काम करती थी जो हमारी दुभाषी जो थी वो महिला से हम एक एक एक एक एक, एक शब्द या हमारे साथ काम करने वाले दूसरे भी दो तीन वहां के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ बैठ के तुम्हारा नाम क्या है फलाना क्या है, जो डे टू डे की लगने वाली भी 10-20 लाइनें रट लिए याद कर लिए। और इसी तरीके से फिर वो जो कलाकारों की और खासकर जिनका मैंने थोड़ी देर पहले वर्णन किया, वो कलाकारों के साथ काम करते समय जो गीता नाम की हमारी एक दुभाषी थी वो हमारे साथ रहती थी, वो दो रोल करती थी, वो रिसर्चर भी थी और हमारे लिए भाषांतर करने वाली भी रिसोर्स थी। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, उसकी भी अंग्रेजी और हम सबकी अंग्रेजी उतनी कमांडेबल अंग्रेजी तो थी नहीं, पर जितना टूटा फूटा होता था वो होता था। तो जैसे तैसे वो कलाकारों से थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो हर बार चार चार पांच पांच दस दस सेंटेंस, तो हमने ये तय किया था कि एवरीडे 10 वर्ड्स नया सीखना है फोनेटिकली, मतलब उच्चारण के तौर पर। और ऐसे करते करते इतना सा एक 100-200 शब्दों का संचय हुआ जिसमें से हम अपना काम निकालते थे उन कलाकारों से। पर ऐसा होता था कि चलो ये बात तो हो रही, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहे, शूट हो रहा है या पिक्चर निकाल रहे हम उनके, पर लिपि समझ में नहीं आती थी। तो हमारी जर्नी जो होती थी उसमें कौन सी गाड़ी किधर जा रही है, कौन से दुकान का क्या नाम है, वो नहीं होता था, समझ में नहीं आता था। तो एक दिन हम कहीं कैननोर में गांव में, कैननोर जिला है उसके गांव में तैयम देखने गए थे, और शाम को हम खाना वाना खा के जो हमारी दुभाषी लड़की थी उन्हीं के घर में, उन्होंने हमको बहुत अच्छा मलयालम व्यंजनों का खाना खिलाया और हम चल पड़े बस पकड़ने के लिए। हमको जाना था कैननोर, हम कैननोर में होटल में रुके थे, तो चलते चलते आप आके वो छोड़ के चली गए सब उनके घर वाले, और एक होटल वहां एक छोटा सा झोपड़ी टाइप होटल था, तो उसको हमने मलयालम में टूटी फूटी मलयालम में कहा कि भाई जो कैननोर में आने वाली बस है जाने वाली यहां से, वो आते ही हमको इन्फॉर्म कीजिए। तो उसने हाँ ऐसे कह दिया और वो अपना काम में लग गया। एक बस आ गई, दूसरी चली गई, कोई इधर से आई कोई उधर से आई, और एक बस आई और वो चली गई। तो ये सब पतीले बर्तन समेटने लगा, तो हमने कहा कि तुम क्यों समेट रहे हो, हमारी बस कहाँ है, कैननोर जाने वाली बस कहाँ है। तो उसने कहा वो पोई,
1: मतलब गई
0: गई वो चली गई अभी, अब वो लगभग एक फरलांग दूर चली गई थी, तो हम भाग के भी उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे। तो बड़े हम निराश हो गए, डिप्रेस होने की स्थिति आ गई कि ये क्या है यार। मैं इसको समझाया तो शायद वो समझ नहीं पाया होगा ढंग से, तो अब क्या किया जाए, कहाँ रुके। रात को 9:30 बज गया और गांव में देहात में 9-9:30 बजे तो मध्य रात से ज्यादा हो जाता है, अब जाएं तो कहाँ गए। तो मैं और हॉरेन, हमारे पास कैमरे होते थे, दो दो टेप रिकॉर्डर होते थे, पर वहां ऐसा कुछ डर नहीं था, केरल में लोग बहुत साफ सुथरे और अच्छे थे। अब धीरे धीरे हमने कहा अब कहाँ, यहाँ तो रुक नहीं पाएंगे रात भर, तो चलो जहां जिस घर में हमको खाना खिलाया है और हमारी जो दुभाषी रहती है उसी के घर वापस जाते। वो 3.5 किलोमीटर दूर था वहां से, और वो भी भात की खेती से पैडी फील्ड से ढूंढते ढूंढते ज्योग्राफी ढूंढते वहां तक जैसे तैसे पहुंच गए, तब 11:30 बज रहे थे।
1: और चावल के खेत तो गीले,
0: चावल के खेत तो गीले होते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं, जब उसकी फूल गंध ये सब अनुभव करते जा रहे थे।
1: वाह।
0: तो वहां चले गए तो हमारे कपड़ों को भी उसकी गंध आ रही थी, क्योंकि उसके बीच में से जैसे लगते हैं ना फ्लावर्स।
1: जी जी।
0: तो वहां पहुंचे और नॉक करते समय 10 बार सोचा यार ये लोग क्या समझेंगे,
1: क्योंकि उनकी आधी रात हो,
0: वो तो हम निकलते ही सो गए होंगे।
1: जी।
0: नॉक किया और सौभाग्य से वो जो हमारी दुभाषी लड़की थी वही बाहर आ गई, गीता नाम था उसका। तो गीता को बोला है, सॉरी गीता यार ऐसा ऐसा हो गया, दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस एंड नाउ वी डोंट हैव, तो ये लास्ट बस वाली हमने उसको बोला और जो जाने के बाद उसने कहा बस पोई
1: बस पोई।
0: तो बोली अब क्या करोगे, तो हमने कहा कि आप घर वालों को डिस्टर्ब मत

0: करो यार, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो ये तो हमको देखना पड़ेगा। तो हमने कहा ये वरांडा है, इसमें हम रुकेंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं आपके लिए चाय बनाऊं, कॉफी बनाऊं। मैंने कहा कुछ मत बनाऊं। तो मैंने कहा एक ही अगर आपको मदद करनी है हमको तो ये काम करो, एक घंटा आपकी जिंदगी का दे दो और एक नई किताब दे दो, कोई नोटबुक दे दो। वो आई और मैंने कहा इस नोटबुक पे जितने मलयालम भाषा में अल्फाबेट्स है, स्वर है, व्यंजन है, उसके आकार उकार इकार सारे है, वो लिख लो। तो उसने वो सब लिख लिए और मैंने कहा इसमें अंग्रेजी में भी लिखो, इसका मतलब क्या है। तो जब वो बोल रही थी तो मैं अंग्रेजी में भी लिख रहा था और बीच बीच में मराठी में भी लिख रहा था उसको, ताकि ये मुझे याद हो जाए। और जैसे हो गया तो मैंने एक सवा डेढ़ घंटा लगा उसको ये सब करने के लिए। मैंने कहा आप जाके सो जाओ आप। सो हरेन भट्टाचार्य जो मेरा दोस्त था एनएसडी वाला, तो वो भी थोड़ा सा झपकी लेने लगा। मुझे गुस्सा आया, वो बस चली गई। क्यों? कि हमें लिपि नहीं आती। क्योंकि केरल में जितने भी बसेस दुकानों की बोर्ड्स होते थे वो सब असल मलयालम लिपि में होते थे। तो फिर वो रात भर मैं लिखता रहा, ओ क्या है, ब क्या है, क क्या है, ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लिखता रहा और पूरी किताब खत्म हो गई, वो नोटबुक खत्म हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: तब 4:30 बजने वाले थे, तो अब आइडिया आया कि सब तो सारा सब बालू ही है, यहाँ सैंड है। तो एक डंडा ले लिया और उसमें से लिखना शुरू कर दिया,
1: रेत के ऊपर।
0: पहला नाम लिखा वामन, मुझे याद है अभी भी।
1: वाह वाह।
0: और फिर सुबह उठते ही उसको हमने ये लिखना शुरू कर दिया। और कम से कम अब मेरी बस नहीं छूटेगी इतना तो मैंने अनुमान किया। एक रात में 56 अल्फाबेट्स याद कर लिए, लिख लिख के याद कर लिए, वो भी गुस्से में कि बस गई ना। इसका बहुत अहंकार को भी ठेस पहुंची। और हम ऐसा कैसा एक दूसरे शहर में आए हैं, दूसरे प्रांत में आए हैं, हमको पहले तो लिपि सीखना चाहिए था, भाषा सीखनी चाहिए। तो भाषा तो हमने बोलचाल की तो सीख ली थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी, पर लिपि सीखना रह गया। सो एक रात में लिखा, फिर आगे प्रैक्टिस क्या करता रहा, जो भी बोर्ड आएगा उसको पढ़ना, ट्रेन में जाए, बस में जाए, जो बोर्ड आते थे वो पढ़ते जाता था। और फिर जब कैनोनर पहुंचा, वहां से त्रिचूर पहुंचा, तो पूरी दूसरी एक कॉपी ले ली और वो सब लिखता गया।
1: अच्छा।
0: अंत में इतना हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि मलयालम मनोरमा जो डेली न्यूज़पेपर आता था उसको भी हमने खरीदना शुरू कर दिया, ताकि वो जो दिमाग में बैठा है थोड़ा बहुत वो वापस इरेज ना हो जाए।
1: वाह वाह।
0: तो ऐसे करके उस लिपि को एक रात में सीखा और फिर इसके बाद हमारी कोई बस पोई नहीं, साथ रही।
1: सुंदर बात।
0: और ये ऐसा अब मुझे लगता है कि जब आप आपके प्रांत के बाहर जाते हो, आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर जाते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने कहा ना कि डिटर्मिनेशन अगर आपका होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
1: लेकिन ये आपके भीतर जो डिटर्मिनेशन है, लोगों के भीतर चिंगारी होती है, आपके भीतर आ गए।
0: हाँ, मतलब वो पहले से ही है, क्योंकि नहीं होती तो फिर जिस गांव से मैं निकला हूं और जो आपके सामने बैठा हूं, ये जर्नी शायद कहीं आधे अधूरे में ही छूट जाती।
1: जी बिल्कुल।
0: यहां तक आना और अभी भी वो चिंगारी बुझी नहीं है, वो आग बुझी नहीं है, अभी भी कुछ बहुत कुछ ऐसा लगता है कि अभी तो एक चौराहा पार कर लिया है यार, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है और बहुत कुछ मीनिंगफुल करना बाकी है।
1: जी,
0: उसकी तलाश में है तो ढूंढ रहे हैं।
1: जी,
0: यही बात है। वो
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: गया।
1: आपके नाटकों की बातें चल रही थी, वो बात अभी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ और मैं उस चैप्टर की तरफ जा रहा हूँ जीवन के जो बहुत सुनहरा और जज्बाती है, जहाँ आप नाटकों का प्रशिक्षण करने जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि कोई बुजुर्ग आएगा और वहाँ आता एक नवयुवक है जिसकी एक नवयुवती से मुलाकात होती है।
2: ओ, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं समझ गया हूँ। तो मैं यहाँ जब आया, मुंबई वापस आ गया, मेरा सारा रिसर्च का प्रोडक्शन भी किया, रिसर्च भी किया, एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर, मेरे रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर, हमने कुछ साउंड एंड लाइट इफेक्ट से और स्लाइड शो किया
1: जी।
2: मेरे पश्चात मैं जब दिल्ली में नहीं था तो वो एग्जीबिशन एक महीना भर चालू रहा, क्योंकि मैं मेरा काम होते ही वापस मुंबई पहुंच गया
1: जी।
2: तो वो एग्जीबिशन रतन थियम जी ने देखा, शो जो पल्स पे किया था ऑटोमेटिक डबिंग और ये करके, उस समय की जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी
1: जी।
2: तो उन्होंने डायरेक्टर को, एनएसडी डायरेक्टर जब जो भी रहे हो, शायद मोहन महर्षि थे, उन्होंने कहा कि ये अद्भुत एग्जीबिशन है और मैं इसको इम्फाल ले जाना चाहता हूं। और उन्होंने वो सब जब खत्म हो गया दिल्ली का, वो पैक करके पूरा इम्फाल में ले गए और इम्फाल में एक महीना वो सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे, कॉस्ट्यूम्स थे, प्रॉपर्टी थी, जो हमने फोटोग्राफ्स लिए थे, उसके ब्लो अप थे, वो सारा एग्जीबिशन उन्होंने जाके मणिपुर में एक महीने के लिए लगाया।
1: वाह वाह,
2: ये भी उसका एक साइड इफेक्ट रहा। दूसरी एक बात है उससे संबंधित है, ये सब देखने के बाद, ये सारा जो काम देखने के बाद, हमारे जेएन कौशल साहब थे जो बहुत बड़े राइटर भी रहे हैं और जर्नलिस्ट भी रहे हैं और थिएटर हमारे एनएसडी के एल्यूमिनाई भी रहे हैं, उन्होंने ये सारा जो काम देखा मेरा, रिसर्च का देखा, फोटो देखी, ये देखी, वो देखी, एल्बम्स देखे, उन्होंने एक दिन अलका जी साहब से जिक्र किया कि मैंने ऐसा कोई एक अद्भुत काम देखा है और मैं चाहता हूं कि आप उसको देखिए। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहूंगा। तो अलका जी साहब ने कहा मैं तो उसके ऊपर किताब निकालना चाहूंगा, पब्लिश करना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई अनयूजुअल काम है तो। खैर कुछ दिनों बाद अलका जी साहब का मुझे मैसेज उन्हीं के द्वारा कि भाई अलका जी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अलका जी साहब से मिलने का मतलब तो बहुत बड़ा सपना हो गया, कि मैं जब एनएसडी में गया तब तो अलका जी साहब वहां नहीं थे, वो तो इंग्लैंड चले गए थे या जहां भी और कहीं जगह जहां उनकी सिटीजनशिप है वहां गए थे। तो गया मैं, जब उन्होंने बुलाया तो उस समय वो सारे एल्बम तो एनएसडी के पास थे, वो एल्बम उन्होंने देख लिए थे और सामने रख कर बैठे थे। और जाते ही मुझे बुलाया और बोले यार क्या काम किया आपने, अद्भुत काम किया, ये क्या है, एक एक फोटो की तारीफ करते रहे और बोले मुझे इसके ऊपर किताब छापनी है। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया कि मैंने कहा

0: यार इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी की अलकाजी साहब खुद उसको छापेंगे उनकी पब्लिकेशन हाउस की तरफ से। उन्होंने उसके पहले एक ही किताब छापी थी, उनकी मिसेस की थी, मिसेस अलकाजी की, जो कॉस्ट्यूम के ऊपर थी, और बहुत गजब की किताब छापी थी उन्होंने। और बोले मुझे दूसरी किताब ये छापनी है। तो एक तरफ ऐसा लगा कि क्या कहते मन में लड्डू फूट रहे थे, पर दूसरी तरफ ये सारा तो सारे प्रॉपर्टी तो एनएसडी की है, उन्होंने एनएसडी का ये सब खर्चा किया है। तो मैंने बड़ा डर डर से वो कहा कि सर ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन ये सारा का सारा इसके जो राइट्स है, जो मैंने थेसिस सबमिट की है, ये फोटोग्राफ सबमिट की है, ये तो एनएसडी के पास राइट है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो परमिशन देते तो मेरे जैसा खुश नसीब आदमी नहीं होगा। खैर उन्होंने कुछ बात की और फिर उनको जवाब दिया गया कि नहीं, हम खुद छाप रहे हैं, उसके लिए हमने 80,000 रुपया अलग से रखा है बजट, 1984 की बात है
1: जी।
0: तो अगर किताब छप जाती तो अब तक तो बहुत बड़ी हो जाती, पर बाद में वो हुआ नहीं, जो भी होना होता है। अब वहां से हम चल पड़े मुंबई की तरफ और यहाँ आ गए तो रोजी रोटी के चक्कर में एक दिन कमलाकर सोनटक्के जी यहाँ पर सांस्कृतिक विभाग के संचालक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा वामन आपको एक महीने के लिए अकोला जाना है, वहां पर हम ये कार्यशाला जो स्टेट कंपटीशन में जिनको पहले आते हैं मेडल मिलता है उनके लिए कार्यशाला करना चाहते हैं ऐसे एक्टर्स के लिए, और आप उसके लिए काबिल है मुझे पता है। तो हमने कहा चलो चल, हमने क्या काम मिल रहा है तो हम चले गए अकोला में। तो वहां के जितने भी ये सारे विद्यार्थी थे जिसमें गौरी पढ़ते ये भी विद्यार्थिनी थी, तो उनको लगा था कि भाई अब ये वर्कशॉप करने कोई आ रहा है तो बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा। और जब मुझे इंट्रोड्यूस किया वहां के हमारे बड़े रंगकर्मी रहे हैं, तो वहां कोई गवर्नमेंट का जो आदमी था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये भाई वामन केंद्र हैं और ये आपकी कार्यशाला लेने वाले एक महीना भर। तो कुछ लोग हंस पड़े,
1: दुबले पतले वामन
0: के, पतले वामन के थे, बहुत सारे लंबे लंबे बाल है
1: जी,
0: हीरो टाइप या उस टाइप का हुलिया है,
1: दाढ़ी वाड़ी थी
0: थोड़ी बहुत
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है
1: जी।
0: तो कुछ लोगों ने ये तय किया, जिसमें से पहली महिला थी या विद्यार्थिनी थी, वो तब सौभाग्यवती नहीं थी
1: जी,
0: कुमारी गौरी पढ़ती थी, सरनेम था उनका। तो उन्होंने कहा कि आज का एक सेशन अटेंड करेंगे और कल से इस बच्चे से क्या सीखना है,
1: ओके
0: ये क्या सिखाएगा हमको। उद्घाटन वगैरह होना था, हो गए, सब चले गए और क्लास शुरू हो गई, और 1.5 घंटे के बाद वो क्लास रुक गई। तब तक मैंने देखा कि सब हिप्नोटाइज्ड है कि क्लास की वजह से, जिस तरीके से मुझे पढ़ाने का थोड़ा बहुत तजुर्बा था, वहां केरल में भी मैंने कुछ किया था, फिर दिल्ली आके भी पढ़ाया था बच्चों के साथ, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ मेरे रिसर्च बेस पे एक प्रोडक्शन भी किया था, जिसमें पीयूष मिश्रा जिस बैच के विद्यार्थी है उस बैच के साथ मैंने नाटक किया था, या विभा छिब्बर जो एक्ट्रेस है वो भी उस बैच की थी, या दिनेश खन्ना है उस बैच के थे, तो उसके साथ मैंने उस रिसर्च बेस पे प्रोडक्शन किया था, तो उसका भी एक तजुर्बा था थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने का, और जो लीडरशिप या स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या करना चाहिए वो सब मालूम था
1: बिल्कुल।
0: तो इन्होंने तय किया था कि हम इंटरवल के बाद जैसे होगा उसके बाद कल से नहीं आएंगे। पर वो जिस तरीके से क्लास हो गई, जिस तरीके से वो वर्कशॉप हो गई, तो फिर उन्होंने घर जाना तो छोड़ दो, तो अंतिम दिन उन्होंने ये कहा कि हम मुंबई आना चाहते हैं।
1: ये बात
0: उसका अंदरूनी करंट पकड़ के जो पूछना चाह रहे तो, और बाद में वो गौरी पढ़ते जो थी, कुमारी थी, वो कुछ सालों बाद सौभाग्यवती गौरी वामन केंद्रे हो गई।
1: लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप उन दिनों में जब शादी नहीं हुई थी तब भी उनको भूल गए और प्रैक्टिस करने चले गए नाटक की, मतलब जीनियस लोग इतने भुलक्कड़ होते हैं।
0: क्या हो गया कि हम वो सांस्कृतिक कार्य संचालनालय में कुछ मैं काम करने गया था, और वहां से मुझे फिर शाम को रविन्द्र नाट्य मंदिर में रिहर्सल थी, तो उनको मैंने कहा कि मैं इस कार्यालय में जाता हूं, तब तक आप जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन वगैरह देख लीजिए, 1.5-2 घंटे बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, वैसे मैं आपको वहां से पिकअप करूंगा, या जैसे भी हम फिर चर्चगेट जाएंगे और सीधा रविंद्र चले जाएंगे। पर ये काम करते करते ऐसा हो गया कि मेरे रिहर्सल में देर हो रही थी, तो मैं तो चला गया कहां, रविंद्र नाट्य मंदिर, और मैं ये भूल गया कि मुझे किसी को पिकअप करना था या मैंने किसी को बोला है कि वहां पर खड़े रहो। तो 2-3 घंटा हो गया उसके बाद अचानक रविंद्र नाट्य मंदिर के वहां जो गेस्ट हाउस था वहां पर फोन आया कि वामन केंद्रे को बुलाइए।

0: तो मैं वहां पहुंचा, वो गौरी केंद्र थी, मतलब गौरी पढ़ते थी तब, तो उन्होंने कहा सर आपने ये क्या किया। मैंने कहा क्या किया, नहीं आप मुझे बोलने वाले थे, मुझे साथ में ले जाने वाले थे, और मैंने कहा मैं भूल गया।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जो मैं भूलता हूँ।
1: आपकी भुलक्कड़ी के और भी किस्से हैं?
0: बहुत है। मतलब क्या है, ऐसा होता है ना, मैं जन्मदिन मुझे याद नहीं रहता।
1: हे भगवान। हाँ, अपना नहीं कि दूसरों का?
0: मुझे मेरा जन्मदिन मालूम नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जाके उसकी खोजबीन करने की कोशिश की, मेरे माताजी से, पिताजी से, मेरे दादी से, मेरे बचपन के दोस्तों से। कुछ लोगों ने मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो साइन होती है वो निकालने की कोशिश की, पर आज तक कोई कुछ पता नहीं चल पाया। तो मेरा जो साइन है वो जो उस दिन का जो बेस्ट होता है वो मैं मान लेता हूँ, ये मेरा भविष्य है आज।
1: जो सबसे अच्छा है,
0: जो सबसे अच्छा है।
1: पर गौरी जी का जन्मदिन भूल चुके हैं आप?
0: हाँ, मैं कई बार भूल चुका
1: हूँ भगवान।
0: क्योंकि जन्मदिन होता है और वो सेलिब्रेट करना होता है, ये मुझे लगता है कि बहुत सालों तक हमारे संस्कार में ही नहीं था। वो दिल्ली में भी मैं था तब भी नहीं था ऐसा कुछ, वो माहौल ही नहीं होता था हमारे यहाँ। घर में कुछ होता होगा, थोड़ा बहुत टीका विका लगा के कुछ उसको आरती वूरती उतारते होंगे, लेकिन ये बर्थडे मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे ऊपर लादा हुआ कार्यक्रम है। उनकी मार्केटिंग के लिए है ये, रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो गया
1: जी।
0: तो पहले होता होगा राजा महाराजाओं का, गरीब का, श्रमिक का, किसान का, कहाँ बर्थडे होता है उसको कहाँ मालूम है। था, मेरे पिताजी चौथी क्लास पढ़े हुए थे, पर बर्थडे वगैरह मेंशन करना होता है, रिक्के रखना होता है, ये नहीं मालूम।

0: था, वो तो किसान तो किसान है। वो जब कभी एक महीना दो महीने के बाद आपको बेटा पैदा हो गया, चलो भाई वहां के अपने पुरोहित के पास जाओ और फिर उसको पूछा कब पैदा हो गया, वो सूरज जो है ना वो कासरा भर वर आला होता,
1: लो
0: मतलब जो कासरा होता है बैलों को पकड़ने का जकड़ने का, उसकी लंबाई है ना उतना सूरज ऊपर आया था आकाश में। मेरा जन्म तो सूरज से पहले हुआ है, सूरज उगने से पहले। तो वो सेवन स्टार होते हैं ना सप्तर्षि, चलो उसको गांव की भाषा में तिकाट न बोलते हैं, वो तिकाट न कासरावर वर आलेले होते। अब वो उसको भी काम आता ज्योग्राफी कब कितना कहाँ ऊपर आया, उसको जो लगेगा वो इम्पल्सिवली उसके आपका ये जन्म नाम है और आपकी ये जन्म राशि है कुछ ऐसा कह दिया होगा
1: जी।
0: तो वो भी करना होता है, इसलिए फॉर्मेलिटी थी। इसलिए मुझे मेरा जन्मदिन नहीं मालूम है। तो स्कूल में जब कोई ले गया होगा, पिताजी ले गए होंगे, तो मास्टर जी को जो इम्पल्सिवली लगा वो मेरी जन्म तारीख है।
1: वाह वाह।
0: और वो है 17 जनवरी।
1: अच्छा, वो मास्टर जी की मर्जी।
0: हाँ, मास्टर जी का पेन से जो उतरा वो मेरा जन्मदिन है।
1: गजब।
0: तो मैंने कहा वही मान लो ना, वही है, क्या मालूम है।
1: जी जी।
0: तो उसके बाद मेरे साथ इतने सारे दोस्त गांव आए जिनको एस्ट्रोलॉजी में, कि फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पूरा गांव खंगालने की कोशिश की, घर तो खंगाल लिया, फिर उनको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा कि गुरुवार को इसका जन्म हुआ है और सूरज होने से पहले हुआ है, उषक काल के समय से पहले हुआ है, इतना ही पता लगा। अब उससे वो मेरा ये तुम्हारी ये राशि है, तुम्हारी वो राशि है, तुम्हारा फलाना है। मैं कहता हूं ठीक है भाई, उससे क्या फर्क पड़ा। तो ये है मेरे जन्मदिन की कहानी
1: जी। और गौरी जी के जन्मदिन भूलने की कहानी,
0: भूलने की कहानी तो हर साल होती है। उनको मैं बोलता हूँ एक हफ्ता पहले से बोलना शुरू करो,
1: अरे भगवान
0: मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो अब ऋत्विक देखता है ये सारा
1: जी,
0: गिफ्ट विफ्ट लाना, गिफ्ट देना माता जी को, पिताजी को, जो भी है। तो ऋत्विक उसमें बहुत, क्योंकि वो अगली जनरेशन का है तो उसको सब संस्कार है
1: जी,
0: तो उसका जन्मदिन हम सबको मालूम है।
1: हाँ।
0: जब ऑपरेशन हुआ वो कितने बजे पहला टैब बोला तो वो सब हमने लिख के रखा, पर वो मेरे समय पे अभी कुछ नहीं मालूम है कि मेरा जन्मदिन वाकई कौन सा है।
1: जी जी जी।
0: ये किसी को भी नहीं मालूम।
1: अच्छा, जीवन का वो कौन सा पल था जब आपने तय किया कि गौरी जी आपकी जीवन संगिनी होंगी?
0: मुझे लगा कि जब वर्कशॉप खत्म होके वापस निकल रहा था और मैं अकोला के प्लेटफॉर्म में आ गया ट्रेन पकड़ने के लिए मुंबई की, मेरा रिजर्वेशन था, तो सारे ही बच्चे आए उन्हीं के साथ और उसमें आधे से ज्यादा रो रहे थे, पर सबसे ज्यादा गौरी जी रो रही थी और ये कह रहे थे कि आज के दिन रुक जाइए।
1: ओके।
0: तो मैंने कहा एक दिन रुकने से क्या होगा। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया कि नहीं यार, इतने दिन का, महीना सवा महीने का सबका साथ है। तो सभी गांव गांव जाने वाले थे, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए थे, बोले सर हम भी आज एक दिन रुकेंगे, आप रुकेंगे तो। तो फिर मैं उतरा, वाकई उन्होंने मुझे उतारा नीचे,
1: अरे कैसे,
0: और फिर मैं रुका और फिर दूसरे दिन वही सिलसिला हो गया। मैंने कहा अब नहीं रुकूंगा, अब जिनको आना है वो मुंबई आए।
1: वाह।
0: और कुछ दिनों बाद गौरी पड़ते जी की चिट्ठी आई मुझे कि मैं 3 महीने के बाद मुंबई आ रही हूँ।
1: ओहो हो।
0: और मैं करियर करना चाहती हूँ नाटक में और आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना सीरियसली नहीं ली बात को, पर वाकई वो जब एक दिन आके सामने खड़ी हो गई, मैं आ गई हूँ सर।
1: अरे बाप रे।
0: तो मैंने कहा ये तो धर्म संकट आ गया पर वो अपनी बहन के पास रहती थी आयरोली में, वहां रहती थी और वो हर दिन जाती आती थी। तो मैंने देखा साल हो गया, 2 साल हो गया, वो थकती नहीं है। तो हर बार वो आती है, साथ में काम भी करती है, फिर वापस जाती है। मुझे मालूम था कि वो शादी करना चाहती हैं, वो तो हमारे दोस्त बोलते थे। तो एक दिन मैंने कहा चलो 6 जून को शादी कर लेते हैं, रैंडमली बोला 6 जून को शादी करते हैं, 7 जून को बारिश आती है तो बारिश के आगमन के साथ हमारी भी शादी हो जाएगी, ऐसे करके बोल दिया। फिर घर में बता दिया, मेरे घर में, कि माताजी, पिताजी, चाचा जी लोग आ गए, भाई और एक बहन आ गई। फिर उसके घर में बोला तो उसके भी माताजी, पिताजी और उसकी बहनें तो यहाँ, लगभग 2-3 बहनें तो यहीं थी, मुंबई में थी, कुछ लोग अकोला से आ गए। तो कुल मिला के दोनों साइड से 10-12 लोग थे। देवदत्त साबले हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने ये दोनों फैमिली को अपने गाड़ी में डाला। हमारी शादी हो गई फिल्म सिटी में,
1: अरे गजब,
0: स्टूडियो नंबर 1 में।
1: ऐसा क्यों,
0: क्या कहते हो, नोटिस देना पड़ता है 1 महीने पहले। हमने बांद्रा कोर्ट में जाके जो भी होता है उसका रजिस्ट्रेशन का 1 महीने का बोल दिया। हमारे मित्र जो एक वहां के अधिकारी थे मोपलवार, बहुत अजीज दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने कहा

0: हमारी शादी जब भी होगी वो मेरे घर में होगी, मतलब जहां मैं रहूंगा। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं तुम्हारी शादी तो मेरे यहां होगी, और वो फिल्म सिटी में अधिकारी थे तब। तो हमने कहा कि चलो कोर्ट में करने के बजाय, तो उन्होंने कहा कोर्ट की क्या बात करते, हम रजिस्ट्रार को यहीं बुलाएंगे। तो रजिस्ट्रार को फिल्म सिटी में बुलाने के लिए पहले जाके हम रजिस्ट्रार से मिले, तो उसने कहा कि मुझे अंधेरी से पिकअप करना होगा, अंधेरी वेस्ट में कहीं शादी है, मैं वहां जा रहा हूं, वहां से पिकअप करने आऊं। तो ये सारे बाराती तो वहां पहुंचे हैं स्टूडियो नंबर वन में,
1: और दूल्हा,
0: हाँ दूल्हा रजिस्ट्रार को ढूंढने गया है। मेरे साथ एक मेरे मित्र विनोद पवार
1: जी,
0: जो प्रमोद पवार के भाई भी है और अपने आप में बहुत बड़े आदमी है।

0: जो प्रमोद पवार के भाई भी और अपने आप में बहुत बड़े आदमी हैं, जिन्होंने झुलवा उपन्यास मुझे लाके दिया था
1: जी,
0: वो और हम दोनों रजिस्ट्रार को ढूंढने गए और रजिस्ट्रार वहां आया ही नहीं है।
1: अरे
0: हम वहां एक घंटा इंतजार कर रहे, दो घंटा इंतजार कर रहे, वो शादी वाले बोले शायद वो नहीं आएंगे।
1: लो
0: अब उनको कहां ढूंढे, दो तीन घंटा हो गए हम यहीं ढूंढ रहे, इस गली में उस गली में, ये यहाँ इस शादी में आने वाला था, इस शादी में भी आने वाला था, तो कहीं आए ही नहीं हो रजिस्ट्रार। तो आप करे तो क्या करे। अच्छा तब कोई मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन टू लैंडलाइन ऐसा कम्युनिकेशन था, तो हम दोनों ने तय कर लिया चलो यार रिक्शा में बैठो और जो वहां पहुंचे हैं बाराती वहां तो चलो, मैं तो तब तक उनको लगेगा कि दूल्हा भाग गया इसके मन में ही नहीं है। तो वहां वही माहौल हो गया था कि गौरी और उनके माताजी पिताजी में आपस में यही चर्चा कर रहे थे ना कि भाई वामन ने सही हाँ कहा था ना तुम्हें क्या ये तुम्हारी अपने मन की कुछ धारणाएं थी। तो वहां हम गए और आत्मा बंसोड़े हमारे मित्र है, वो वहां अधिकारी थे, वो भी ढूंढ रहे हैं उसको। मैंने आत्मा को फोन किया यार रजिस्ट्रार यहाँ नहीं है, वहां देखो कहीं आया हो। तो वहां पहुंचे हम तब पता नहीं चला कि रजिस्ट्रार कहाँ है। अब शादी करे तो कैसे करे कोई दो मालाएं लाई थी
1: जी,
0: जो उन्होंने मोपलवार जी ने, तो वो माला एक दूसरे को पहनाएंगे तो क्या करिए। तो किसी ने बोला नहीं वो रजिस्ट्रार आया हुआ है कोई एक आदमी अधिकारी तहसील से या जो कोर्ट से आता है वो। तब तेजाब की शूटिंग चल रही वो वहां पर बैठा हुआ है वो शूटिंग देख रहा है। फिर ये आत्मा बंसोड़े गए उसको पकड़ के स्टूडियो में लाया, फिर उसने हमारी दस्तखत कर दी।
1: वाह वाह।
0: माता पिताजी गांव से आए हुए हैं, उनको तो ढोल बाजा ढमका ढमका सब वो अपने मन में देख रहे हैं। एक तो एक आदमी आया उसने साइन करवा लिया, उसने मेरी साइन उसकी साइन हो गया, दफ्तर बंद किया, उसको आने जाने का पैसा दे दिया, वो निकल गया,
1: हो गई शादी।
0: 42 रुपए में हमारी शादी हो गई।
1: वाह वाह।
0: 42 रुपीज
1: जी जी,
0: वो ये रिकॉर्ड है दुनिया का
1: दुनिया की सबसे
0: सस्ती शादी। और फिर 20-25 लोग जो थे मित्र थे, श्रीराम बड़े भी थे और ये मोपलवाद की फैमिली थी और ये सब कुल मिला के 25-30 लोग होंगे हम। तो उनके लिए उन्होंने खाने का इंतजाम किया था मोपलवार जी ने, वहां पर बहुत बढ़िया ज्वार की रोटी, बेसन पिठल, झुनका खेचा और भी कुछ कुछ ऐसा खा पी के लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हम भी अपने घर चले गए। मैंने गौरी को बोला तुम अपने घर चले जाओ।
1: अरे बाप रे।
0: क्योंकि हम एक कमरे में रहते थे, माताजी पिताजी चाचा जी बहन और ये सारे लोग आ गए वहां सोने के लिए जगह का तो बोले आप कहाँ जाओगे। मैंने कहा मेरा क्लास है साहित्य संघ में, मैं वहां जाके क्लास कर लूंगा अभी।
1: ओहो।
0: ऐसा करके वो कहीं और अपने रिश्तेदार के पास चली गई, मैं क्लास में गया। फिर शाम को कहीं हमारे एक मित्र यहाँ सांता क्रूज में रहते थे, उन्होंने कहा आप दोनों हमारे पास यहाँ आइए, हम यहाँ पार्टी देते हैं आप लोगों को। ऐसा करके हमारी शादी हो गई।
1: गजब गजब गजब। ये तो बड़ा अद्भुत किस्सा है भाई शादी का। और चूंकि आपने तेजाब की बात की तो
0: तेजाब का गाना बनता है
1: ये गाना सुनते हैं।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का तीसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी
1: FM बैंड 106.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे अदनान सामी के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे हैं अदनान सामी के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो।
1: हाँ हाँ,
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत, और सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना अदनान सामी के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत। दिन के 11:30 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आगाज करते हैं फिल्म की एंड का से। आवाज है मिथुन।

0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं टू स्टेट्स फिल्म से ये गीत अर्जित और चिन्मय श्रीपदा की आवाज में। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।
1: इश्क की धूम

श्रोताओं, लीजिए सुनते हैं बागी फिल्म से गीत अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर की आवाज में। बोल हैं संजीव चतुर्वेदी के और संगीतकार हैं अमाल मलिक।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

श्रोताओं, लीजिए सुनते हैं सिटीलाइट फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में गीत। बोल हैं रश्मि सिंह के और संगीत यह है जीत गांगुली ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म से जावेद शादाब और अल्तमाश शशि और श्रेयस की आवाज में गीत। संगीतकार है संजय लीला भंसाली।

श्रोताओं, फिल्म संगीत की अंतिम पेशकश सिम्बा फिल्म से राहत फतेह अली खान, असीस कौर और तनिष्क बागची की आवाज में, बोल हैं रश्मि विराग के और संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

0: एफएम बैंड 103 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत। दिन के 12 बजे हैं। अब पेश है विविध भारती के कार्यक्रम।
1: माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिजस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास

0: उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण नौसेना के पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। विशाखापट्टनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया INS निपुण गहरे समुद्र में चलाए जाने वाले गोताखोर और जटिल अभियानों के लिए

0: पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सभी का स्वागत है। यादों की महफिल में सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना आनंद बख्श की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। फिल्म का नाम है राजा और रंक।

इंदिवर का लिखा गीत है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। धुन है कल्याण जी आनंद जी की। फिल्म का नाम है पारस।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

मैं खो जाऊं, कहां ढूंढे कहां जाए मेरा पता, फिर तू किससे पूछ।

किया है।

0: उलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई बाहों में खिली तनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास।

0: भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यादों की महफिल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम था जिगरी दोस्त। आइए सुना जाए अगला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आप आए आए दिन बहार के।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देवबर्मन। फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

0: Amado la gata kare jama me chot kare jama me chot kare jama me chot de।
1: कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है नीरज, संगीतकार है सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है शर्मीली।

इसलिए उस बेखबर को कोई ये खबर दे कि ये प्यार हमको पागल न कर दे, क्योंकि आशिकी इम्तिहान लेती है। फिर भी पागल प्रेमी कहता है कि मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। तेरी गोरी रंगत का तो बड़ा चर्चा है, जब तू कमरे में चांदनी बनकर आई तो बिजली का क्या काम है। इसलिए झूठा है यह गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, और सच्चे प्यार को तड़पाना अच्छा नहीं। तो बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। ये शोखियाँ ये बाकपन, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। ये रुत प्यार की जुदाई में गुजर

शमा के परवानों को, इस घर के मेहमानों को, कैसे बात मतलब की समझाऊं दीवानों को, कि एक से भले दो से भले तीन। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ मैं दिल में तो हैरान हूँ क्यों, मैं तुम्हारी ही दिल की आवाज हूँ। अनहोनी पग में काटे लाग बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए, फिर दिलवाली क्यों घबराए।

तो सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो उन सारी बातों को संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में बन के हम सफर हम और आप मिलकर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम पढ़ देते हैं पहले कुछ संदेश।

मोहब्बत रूह का वो नूर है जिसके बिना जिंदगी अधूरी है। जो इस आग में ना जला उसने जीना ही कहाँ सीखा। ये वो इबादत है जो फासलों को मिटाकर धड़कनों को एक कर देती है। कोई जाकर मेरे उस बेपरवाह सनम को बता दे कि उसकी सादगी ने हमें दीवाना बना दिया है। अगला मैसेज था ये कि सच्ची मोहब्बत कोई समझौता नहीं, वो खुद का विसर्जन है। मोहब्बत में मैं मिटता है और सिर्फ तू ही बचता है। इसके बाद अगला मैसेज इन्होंने लिखा है कि प्यार एक साधारण इंसान को भी शायर और पूरी दुनिया को एक खूबसूरत ख्वाब बना देता है, और एक पागल आशिक के लिए उसका महबूब ही उसकी बंदगी बन जाता है। तुम्हारी आंखों के आईने में मैं अपनी पूरी हयात देखूं, अगर मिले जो तुम्हारा साया तो धूप में भी बारात देखूं। अच्छा, अगला ये मैसेज हमें मिला है कि दो दिलों की मोहब्बत भरी दीवानगी दास्तां बयां करती है। दमदार इबारत है, कायनात की इस कुदरती करिश्माई तोहफा मोहब्बत की तड़प तन्हाई का खूबसूरत चित्रण प्रेमी युगल के बेसब्री बेकरारी को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। और प्रेम पूर्ण संगीत सफर के इस कार्यक्रम में हम श्रोतागण डुबकी लगाकर तर जाने को बेकरार रहेंगे। तो साथियों, शुरुआत में तो हमने आपको कुछ संदेशे पढ़कर सुना दिए। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस गीत के साथ में, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर, पद्मिनी और सुषमा श्रेष्ठ की। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है यादों की बारात। और बचपन में बिछड़े तीन भाई, उनके माता पिता की हत्या का बदला लेने और बिछड़ कर फिर से मिलने की एक क्लासिक कहानी थी यादों की बारात। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस गीत में जो सबसे छोटा बच्चा था वो आज का बड़ा सुपरस्टार है, कौन है वो? और इस फिल्म में खलनायक अजीत का नाम क्या था, और जीनत अमान के अपोजिट जो हीरो थे उनका नाम भी हमें बताएं। तो ये तीनों बातें आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। तब तक सुनते हैं।

आवाज की दुनिया के दोस्तों ने हमें बहुत सारे जवाब दे दिए हैं कि वो छोटा सा प्यारा सा क्यूट बच्चा था आमिर खान, और जो फिल्म में खलनायक थे उनका नाम था शाकाल, और जीनत अमान के अपोजिट जो हीरो थे वो थे विजय अरोड़ा। एक मित्र ने ये मैसेज भेजा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम इतना सुरीला होता है कि हर दिन इसके साथ दोपहर का भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है। और ये क्या लिख दिया आपने कि आज की इबारत में बहुत सारे गाने हैं, बस हमें लिखने का समय नहीं मिल पाया। चलिए कुछ जुगाड़ करते हैं।

साथियों, अब तक तो आप भी समझ ही गए होंगे कि आज हम ऐसी फिल्मों के गीत लेकर आए हैं जिनमें परिवार से बिछड़े लोग कई सालों के बाद आपस में मिल जाते हैं। तो इसी कड़ी में अगला गीत है इस फिल्म का, जिसमें बचपन में बिछड़े तीन भाई अलग अलग धर्म और माहौल में पलते बढ़ते हैं। तो इस ब्लॉकबस्टर मूवी में यानी कि अमर अकबर एंथनी में उनकी माताजी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री का नाम हमें बताएं, और साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट और किशन लाल कौन थे इसकी भी जानकारी हमें दे दे। इसके अलावा बिछड़ के मिलन की और कौन सी फिल्में आपको याद आ रही हैं हमें वो भी बताएं। तब तक सुनते हैं ये गीत जिसमें आवाजें हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह की। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

गायिका हैं जो बाद में पूर्णिमा बन गई, ऐसा मंदाकिनी जोशी ने एक कार्यक्रम में बताया था, तो बिल्कुल सही बताया था, सही बात है वो। चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो कमेंट्स में हमें जवाब मिले हैं वो ये है कि निरूपा रॉय ने माँ की भूमिका निभाई थी इस फिल्म में और किशन लाल का किरदार निभाया था मशहूर अभिनेता प्राण, और फिल्म के मुख्य खलनायक रॉबर्ट का किरदार निभाया था मशहूर अभिनेता जीवन ने, जो एक बड़े बॉस और स्मगलर थे इस फिल्म में। तो साथियों हमें ये बताइए कि क्या आपके आसपास कभी ऐसा भी हुआ कि कोई बिछड़ के मिल गया, या कभी कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ कर आपको मिला, तो फिर उसे कैसे घर पहुंचाया आपने, या कैसे उसे घर पहुंचाना चाहिए। कोई घर छोड़ के चला जाता है तो उसे खोजने के अभियान में आप भी शामिल हुए थे कभी, या किसी को ढूंढने में आपने कोई सहायता की थी। कभी कभी घर का पालतू जानवर भी खो जाता है तो क्या करते हैं आप, कैसे ढूंढते हैं, और मिल जाए तो कैसे पार्टी करते हैं, हम भी तो जाने, हम भी तो सुने। लिख भेजिए हमारे FB पेज पर, क्या कभी खोया पाया केंद्र पर गए हैं आप। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है धर्मवीर। तो धर्मवीर फिल्म में दोनों बिछड़े भाइयों के रोल में कौन से अभिनेता थे उनके नाम बताएं। वैसे इस फिल्म में एक हीरो का तो नाम छुपा है, और साथ ही अपने विचार भेज दीजिए हमें।

हमारे दोस्तों ने हमें जवाब भेज दिए हैं कि धर्मवीर में दो जुड़वा भाइयों के रोल में नजर आए थे धर्मेंद्र और जितेंद्र, और उनके साथ में जीना तमान और नीतू सिंह थी। एक दोस्त ने लिखा है कि सच्चे दोस्त समय आने पर काम आते हैं। ये कमेंट मिला है कि 4 साल पहले हमारा पालतू जानवर घर से गायब हो गया था। बहुत खोजा गया, खोया पाया, केंद्र में भी गए और कुछ भी पता नहीं चला। बहुत दिनों तक घर के सभी लोग उसे ढूंढते रहे, उदास रहे, याद तो आज भी आती है। राहों में चाहे कितने ही कांटे हो, वक्त चाहे कितनी ही दूरियां क्यों न ले आए, सच्चा प्रेम अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। क्योंकि मोहब्बत फूल की तरह नाजुक जरूर होती है, मगर उसकी खुशबू उम्र भर साथ रहती है। मैं और तुम से हम हो जाना ही मोहब्बत है। प्यार का एहसास अपने आप किसी से रूह से निकलने वाली आवाज से होता है। वो किससे होगा या नहीं होगा या कहाँ होगा, ये कोई नहीं कह सकता। बस सब आत्मा और समय का खेल है। सुरीला सफर कार्यक्रम में अपने विचार, अपनी बातें, अपने संवाद, अपने पैगाम, अपने संदेश, अपने मैसेज, अपने कमेंट्स आपने भेज दिए हैं जो हम तक पहुंच गए हैं और लगातार आप भेज रहे हैं। तो उन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में। इस दार्शनिक गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है धर्म करम, जिसकी कहानी नाटकीय और भावुक थी। तो इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था और खलनायक की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, लिख दीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूं, तो लगातार भेजते रहिए अपने कमेंट्स।

दोस्तों आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि रणधीर कपूर और राज कपूर ने इस फिल्म का निर्देशन किया था और मुख्य विलन थे प्रेम नाथ। ये कुछ कमेंट्स मिले हैं कि चार दिन की जिंदगी में किससे कतरा के चलूं, खाक हूं मैं खाक पर क्या खाक इतरा के चलूं। त्रिमूर्ति, वक्त और संबंध इन फिल्मों में एक बार बिछड़ जाते हैं और फिर सभी लोग दोबारा मिल जाते हैं। पहले फिल्मों की कहानी में ऐसा बहुत दिखाते थे कि एक भाई कुंभ के मेले में खो गया और फिर फिल्म के एंड में मिल जाते हैं। हमें लगता था कि ये जल्दी से मिल जाएंगे। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि इश्क, प्यार, मोहब्बत, प्रेम में तो अक्षर भी अधूरे हैं, तो मोहब्बत क्या पूरी होगी। मोहब्बत जिसकी हमेशा से दुखदाई उसका अंजाम होता आया है, लैला मजनू, सोहनी महवाल, हीर रांझा हो या सास समुंदर पार।

वाले रोमियो जूलियट सभी के प्रेम का अंत समाज के हाथों से हुआ है। यही वजह है कि शायरों ने भी मोहब्बत की खूबसूरती से ज्यादा उसके अंजाम के बारे में लिखा है। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया और मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोई। साथियों अब बात करते हैं समय और भाग्य के फेर में बिछड़ जाने वाले परिवार की कहानी की, जहां वक्त सबका अलग अलग इम्तिहान लेता है और आखिर में ऐसे हालात बनते हैं कि सब आमने सामने आ जाते हैं। निर्माता बीआर चोपड़ा की ये फिल्म हमें क्या सीख देती है वो बताएं, और लाला केदारनाथ की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता का नाम भी बता दें। और हाँ, इस फिल्म का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, वो कैसे भूल सकते हैं, तो लिख दीजिए जल्दी से। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डी की आवाज में, नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम आप बताएंगे हमें, और साथ में ये भी बताएंगे कि इस जोहरा जबी का नाम क्या है।

खुशियाँ ये बांधपन तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकिया ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ, मैं तेरी

0: हमारे एक सुनने वाले ने लिखा है कि मोहब्बत वो जुनून है जो मिटती नहीं, फना होकर ये रूह में बसती है सांसों की सदा होकर। चांदनी का क्या गिला जब हुस्न ही महताब बने, हर बात में शोखियां हैं, हर अदा लाजवाब बने। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे गीत हैं आज इबारत में, और उन्होंने गीत के बोल लिखे हैं कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, ऊपर से आप लोग भी इम्तिहान लेने लगे हैं तो हमें तो चक्कर आ रहे हैं। तो ये तो नहीं बताए कि चक्कर क्यों आ रहे हैं। कमेंट्स में जो जवाब मिले हैं उसमें लिखा है कि ये मशहूर डायलॉग बोला था राजा यानी कि राजकुमार ने, चिनोई सीट जिसके अपने घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, और लाला केदारनाथ का किरदार निभाने वाले अभिनेता थे बलराज सहानी, और हिंदी फिल्मों की पहली जोहरा जबी का नाम है अचला सचदेव, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म में वरिष्ठ अभिनेत्री ने काजोल की दादी का किरदार भी अदा किया था। तो साथियों अब बात करते हैं एक्शन और थ्रिलर फिल्म की। ये कहानी है बचपन में बिछड़े दो भाई मोहन और सोहन की। बड़ा भाई सीआईडी अधिकारी और छोटा भाई गैंगस्टर बन जाता है इस फिल्म में। तो इस फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले कलाकार का नाम हमें बताएं, और ऐसे भी इसमें कलाकार थे जिन्होंने हमेशा पुलिस कमिश्नर की भूमिकाएं निभाई थी, तो उस अभिनेता का नाम भी लिख दें अपने संदेशों में। और अब फिल्म का नाम, गीतकार, संगीतकार आप बताएंगे क्योंकि आपको सब पता है। तो मोहन सोहन कौन थे, और इस ये भी बताएं कि इस फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से किस जगह पर हुई थी, हमें ये भी बताएं।
1: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं,

वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि इस फिल्म की शूटिंग बिहार के नालंदा, खंडर और राजगीर के जंगलों में हुई थी। देव आनंद, प्राण, जीवन, प्रेमनाथ, इफ्तखार, जगदीश राज, एक साथ सारे नाम लिख दिए आपने। इस गीत में आवाज थी किशोर कुमार की, गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि जब मैं लगभग 2 साल का था, तब मेरी बड़ी दीदी मुझे शहर में सब्जी मंडी लेकर गई थी। जब घर लौटी तो केवल सब्जियां ही थी घर पर। माताजी ने पूछा कि भैया कहाँ है, तब दीदी को समझ आया कि मैं वहीं छूट गया। तब वे दौड़कर आई और वहां आकर देखा तो मैं वहीं खड़ा रो रहा था। बस इतना ही किस्सा है बिछड़ने और मिलने का। तो हम भी आपसे पूछ लें कि आप मिले कि नहीं। एक साथी ने लिखा है कि वक्त फिल्म, इससे हमें ये सीख मिलती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हमें वक्त की कदर करना चाहिए। साथियों, बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ जाने वाले उस बच्चे की कहानी जो समाज में खुद को लावारिस पाता है, उसे समाज में अपनी असली पहचान और अपने पिता को ढूंढने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं उसे फिल्म का गीत। तो बताइए उस गीत के बोल क्या है, गीतकार का नाम क्या है, फिल्म का नाम भी बता दीजिए, संगीतकार भी बता दीजिए, और साथ ही ये भी बताइए कि इस मूवी में गंगू गणपत किरदार को किस दिग्गज महान अभिनेता ने निभाया था।

जिसके

साथियों, हमें जवाब मिले हैं कि फिल्म का नाम था लावारिस। अलका याग्निक की आवाज थी, गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी। और गंगू गणपत की जो जो किरदार जिस अभिनेता ने निभाया था, उनका नाम था डॉक्टर श्रीराम लागू। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि वक्त फिल्म की एक सीख उन्हें और अच्छी लगती है कि कितने ऊंचे हो जाएं पर आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त बहुत बलवान होता है, एक झटके में अर्श से फर्श पर ला देने के का सामर्थ्य रखता है। फिल्मों में खोए हुए भाई बहन पिता पुत्र तो मिल जाते हैं, किंतु हमारे कमेंट्स गायब ऐसे होते हैं कि मिलना मुमकिन नहीं लगता। वक्त फिल्म का दूसरा मशहूर डायलॉग है कि ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाएगा तो खून निकल आता है। और ये एक मैसेज मिला है कि वक्त में अचला सचदेव ने जोहरा जबी का किरदार निभाया था, और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, और मेरी लिस्ट का पांचवा गाना भी शामिल हो गया है।

दोस्तों, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ा जा रहा है। समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि इस फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। आवाजें हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर साथियों की। इस गीत को लिखा है अनजान ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस फिल्म में अभिनेता का नाम लोगों ने लिख दिया है अमिताभ बच्चन।

साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, अपनी बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए। आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद और आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का सबसे सुंदर संदेश चरैवेति अर्थात चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये वेद वाक्य हमें सिखाता है रुक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन गतिमान है, जैसे जल यदि स्थिर हो तो वो उपयोग के लायक नहीं होता और प्रवाहमान जल शुद्ध स्वच्छ उपयोग युक्त होता है। समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, हमेशा बदलता रहता है, चलता रहता है। इसी तरह हमें भी जीवन में कभी नहीं ठहरना है। यात्रा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को ही नहीं कहते, यात्रा जीवन को समझने, नए नए अनुभव प्राप्त करने और निरंतर कर्म करते रहने, स्वयं को निखारने और सदैव गतिमान रहने, सीखने और प्रगति पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। तो चलिए चले चलते हैं जीवन की सुगम निर्गम धूप और छांव की इस यात्रा में।

भारत में तो यात्राओं और देशाटन की गौरवशाली परंपरा रही है। यात्राओं से हमें अलग अलग स्थानों को देखने, जानने, तरह तरह की लोक संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है, जिससे हमारा मन और जिज्ञासु होता है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। आपसी सद्भाव और सहिष्णुता का भी विकास होता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि दुर्गम मार्ग से यात्रा किया करते थे। विदेशी यात्रियों का भी भारत में आना जाना था। यूनान से मेगास्थनीज, चीन से फाहियान और व्हेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत की संस्कृति को समझने आए। अनुभव, ज्ञान और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए यात्रा जरूरी है।

हमारा तन और मन दोनों ही एक निरंतर यात्रा के पथिक हैं। ये यात्रा हमारे जन्म के साथ आरंभ होती है। हम पहली बार संसार को आश्चर्य और मासूमियत से देखते हैं, फिर युवा अवस्था की यात्रा में संवेदनाओं, सपनों और संभावनाओं का संसार हमारे सामने खुलता है। ये जीवन यात्रा का सबसे ऊर्जावान और कर्म प्रधान समय होता है। इसी समय के हमारे निर्णय, हमारा परिश्रम और हमारे कर्म ये तय करते हैं कि समाज हमें किस रूप में याद रखेगा। धीरे धीरे जीवन यात्रा आगे बढ़ती है और वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं हम, और वृद्धावस्था की यात्रा ये यात्रा पूरे जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब होता है, झलक होती है। अतः जीवन की इस यात्रा को, इस सफर को बड़ी खूबसूरती से सजाएं, सुमधुर और सुहाना बनाएं।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज, मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुक्कुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
2: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुक्कुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारू ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो

0: ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो, सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
1: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
4: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप प्रण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपनी मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
4: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4,000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहां व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
5: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष

0: जिसे मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि आईएनएस निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
0: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितम्बर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
4: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार एएफसी अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में

उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371717। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC Under-20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला सदाबहार गीत है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है यादों की बारात।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है आराधना।

0: कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए अब सुना जाए वो गीत जिसमें आवाजें हैं मुकेश और आशा भोसले की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राजेश रोशन। फिल्म का नाम है तुम्हारी कसम।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। और इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। तो कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है अन्नदाता इस फिल्म से। गीतकार हैं योगेश, संगीतकार हैं सलील चौधरी और इस गीत में आवाज है किशोर कुमार की।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है कटी पतंग।

0: घंटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है अनुरोध। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: Haley.
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और एक लंबे अरसे के बाद मैं आज आपसे मिल रही हूँ यहाँ।
1: बिल्कुल, और मुलाकात तो होती ही रहती है ना, अब सखी सहेली के साथ माइक के साथ मुलाकातें बारी बारी से होती रहती है सखियों से। और एक मिलना होता है, मन का मिलना, वो बहुत जरूरी है। बस वो मुलाकात होती रहे ये काफी होता है। और जब मन मिलता है तो मुझे लगता है कि दो लोगों का मन मिलता है तो दोस्ती बहुत लंबे समय तक कायम रहती है।
2: बिल्कुल सही।
1: दो लोगों का जब मन या दिल मिलता है तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। और जब दो दिल मिलते हैं तभी तो दाम्पत्य के सूत्र में बनते हैं ना।
2: और मिल तो जाते हैं, दाम्पत्य सूत्र में बन जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं बहुत लंबी पारी तक उन्हें साथ जाना होता है। इस लंबी पारी तक साथ चलने के लिए बहुत सारे सामंजस्य बिठाने पड़ते हैं, कई बार समझौते भी करने पड़ते हैं, कई बार एक बहुत सारी बातों को कहते हैं कि समझ के लेना वाली बात जो होती है कि हमेशा होड़ नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, तू मैं नहीं करनी है, सिर्फ उन बातों को तालमेल कैसे बिठाए ताकि घर में एक सुख शांति का वातावरण बना रहे, सबके बीच में प्रेम बना रहे। तो सुखी दाम्पत्य जीवन अगर चाहिए तो उसके लिए हमारे जो सुनने वाले लोग हैं अगर वो बहुत लंबी पारी तक आ चुके हैं, यानी कि आज उनके विवाह जो वैवाहिक जीवन है उसको 35 बरस 25 बरस हो चुके हैं या 15 बरस हो चुके हैं, तो अब तक जीवन कैसे रहा और कैसे तालमेल बिठाया उन्होंने अपने साथी के साथ में।
1: और जब दोनों में से कोई एक नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, तकरार होती है, तो मेल कैसे होता, अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। और ये तो आज हम ये बातें इसलिए शुरुआत में करें कि सुखी दाम्पत्य जीवन आज का एक मुद्दा है, विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे श्रोता भी इस चर्चा में शामिल हों।
2: और सोमवार के दिन हम जो प्रादेशिक व्यंजन है उनको लेते हैं, और अगस्त के पूरे महीने में हमने लिए हैं पश्चिम बंगाल की जो अच्छे अच्छे व्यंजन होते हैं ना, चाहे वो तीखे चटपटे हों या मिठास लिए हुए हों,

0: ऐसे व्यंजन हमने बताए हैं, तो आज ये आखिरी सोमवार है अगस्त के महीने का, तो बहुत सारे जो व्यंजन हम जिन्हें शामिल नहीं कर पाए हैं उनको आप जरूर बताइए उनके बारे में, और कुछ नाम हमने दिए हैं हमारे श्रोताओं को, उनके बारे में वो बताएं और उनकी रेसिपीज लिखकर साझा करें
1: और कथा सुधा की बात भी करेंगे, कथा सुधा सुनवाएंगे। और आज एक खास दिन और है, एक ऐसी कवित्री लेखिका का जन्मदिन है जिन्हें जब हम याद करते हैं तो बस प्रेम का भाव, प्रतिरोध का भाव मन में पैदा होता है कि उनकी लेखनी में प्रेम भी था, प्रतिरोध भी था, और बड़ी बेबाक लेखिका मानी जाती है। रसीदी टिकट आप सबने पढ़ी होगी, और भी उनकी कृतियों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा उनका लिखा ये गीत सुन लेते हैं।

0: कादम्बरी फिल्म का ये गाना था और ये इसलिए गाना खास तौर से सुनाया गया, अमृता प्रीतम की याद को ये गाना समर्पित था। और अमृता जी की के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम श्रोताओं को दे दें कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें भारत के जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें अपनी पंजाबी कविता अज आखा वारिस शाहनू के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी और इस कविता में भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं का बहुत ही दुखद वर्णन है। और इसके अलावा इनके उपन्यास है पांच बरस लंबी सड़क, पिंजर, अदालत, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपियां और इनकी आत्मकथा रसीदी टिकट। मुझे लगता है हमारे श्रोताओं ने रसीदी टिकट तो जरूर पढ़ी होगी। कहानी संग्रह कहानियां जो कहानियां नहीं है कहानियों के आंगन में और संस्मरण कच्चा आंगन एक थिसारा और बहुत सारी अन्य कृतियां भी हैं इनकी। और जब भी हम अमृता प्रीतम को पढ़ते हैं तो खास तौर से महिलाएं उन्हें उनसे प्रेरणा भी पाती हैं क्योंकि उनकी उनकी जो लेखनी थी उसमें पंजाब की मिट्टी की सौंधी गंध थी, उसमें प्रेम की आवाज थी, विरह भी था, विद्रोह भी था, तो ये सब कुछ एक महिला को परिपक्व और परिपूर्ण बनाता है। तो अमृता जी की याद को आज नमन कर रहे हैं
1: और अब सुनते हैं कथा सुधा।

0: सुधा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: छह आने का टिकट, इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना।
2: आप ही किशोर जी हैं
3: जी।
2: आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको छह कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
3: अच्छा।
2: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ।
3: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया।
2: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता, लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
3: जी।
2: इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
3: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूँ और आसानी से ना नहीं कह सकता हूँ, लिहाजा अब श्री राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था, क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
2: किशोर जी
3: जी,
2: आज तो आपकी छुट्टी है।
3: हाँ,
2: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
3: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है। अरे भाई भीखू, देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ, और 2 6-6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया, ठीक है?
2: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट, मैं अकेले ही घूम लूंगा।
3: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रख कर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
2: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा न कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
3: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था, और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला, और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था।

यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

0: राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ? वो रात को घर क्यों नहीं लौटे? क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: कलकत्ता बहुत अच्छा नगर नहीं है, और श्री राम खेलावन अपने जीवन का जहाज लेकर अकेले ही इस कलकत्ता नामक महासागर में निकल पड़े थे। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं बस के नीचे तो नहीं आ गए, या रास्ता तो नहीं भूल गए, या उन्हें कोई भगा तो नहीं ले गया। मुझे अच्छी नींद भी नहीं आई। बिस्तर पर मैं करवटें बदलने लगा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि श्री राम खिलावन शरण के प्रति मुझमें इतनी अधिक ममता कैसे आ गई। एकाएक मैं चौंक उठा, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। मैं उठा, घड़ी पर मेरी नजर गई और उस समय 3 बजे थे। धड़कते दिल के साथ कांपते हुए हाथों से मैंने रिसीवर उठाया। हेलो,
2: भवानीपुर थाने से बोल रहा हूँ। आपके यहाँ कोई राम खेलावन शरण प्रसाद तो नहीं ठहरे?
1: जी, खैरियत तो है, जिंदा है ना?
2: जी हाँ, है तो खैरियत से, लेकिन पिए हुए हैं। आध घंटा हुआ लाए गए हैं, आप उन्हें ले जाइए।
1: जी जी जी, रिसीवर मैंने रख दिया। अच्छा, तो हमारे श्री राम खेलावन शरण प्रसाद सिंह इतने पहुंचे हुए आदमी है, भाई मान गए। विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी होते हैं। ऐसा लग रहा है जमीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं। अब ये राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह जैसे आदमी इतना पी सकते हैं कि थाने में बांध दिए जाए, तो हम जैसे न पीने वालों के तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। बहरहाल, अपने अतिथि को हवालात से लाना ही था, और मैं हवालात पहुंचा। पूरे 5 रुपए देकर राम खिलावन शरण को मैंने छुड़ाया और उन्हें घर ले आया। घर आते ही श्री राम खिलावन शरण ने खींच कर एक गिलास पानी पिया और फिर मत्था पकड़कर बैठ गए। अब देखिए कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं और वे मौन बैठे हैं, न हिलते हैं, न डोलते हैं, न बोलते हैं, न चालते हैं। आखिर मुझे ही पूछना पड़ा, राम खेलावन शरण जी, भला आपको ये क्या सूझी कि आप पीकर रास्ते में निकले?
3: मैं शपथ से कहता हूं कि मैंने मदिरा पान का जघन्य पाप नहीं किया है।
1: क्या?
3: बदमाश पुलिस वाले ने मुझे जबरदस्ती बंद कर दिया।
1: अच्छा, वो क्यों भला?
3: अरे ये मेरा दुर्भाग्य है, मुझ में अब जान नहीं है, इतना थका हुआ हूँ, आज 6 आने की टिकट ने मुझे मार डाला।
1: ये कैसे भला?
3: देखिए किशोर जी, आपने मुझे 6 आने का टिकट दे ही दिया था।
1: हाँ?
3: जब मैं कलकत्ता घूमने निकला तो मैंने 2 आने पैसे और साथ में ले लिए कि वक्त जरूरत काम आएंगे। मैं रवाना हुआ, ट्राम पर बैठ जाता था, जहां तक जाती थी वहां तक जाता था, और उसी ट्राम पर धर्मतल्ला वापस आता था। टॉलीगंज गया, बालीगंज गया, बहला गया, खिदरपुर गया, पार्क सर्कस गया, सियालदह, राजा बाजार, श्याम बाजार, बाग बाजार, डलहौजी, हाई कोर्ट गया, बहु बाजार गया, हैरिसन रोड गया, नीमतल्ला भी मैं घूम आया।

0: तो शाम को कुछ थोड़ी सी भूख लगी थी, तो पास में दो आने पैसे थे, तो नाश्ता झट कर किया। अब करीब 10 बजे मैं हैरिसन रोड और चितपुर रोड चौराहे पर पहुंचा। वहां उतरा मैं, मैंने हिसाब लगाया, 6 आने की टिकट में मैं 1 रुपया 12 आने का घूम चुका था, और अब घर आने में 2 आने का और सफर करता तो इस प्रकार 1 रुपये 14 आने घूम चुकता, और 6 आने में अपने हिसाब से मुझे 1.5 रुपया घूमना चाहिए था, और इसलिए मुझे संतोष करके उस समय लौट आना चाहिए था। लेकिन मालूम होता है कि उस समय मुझ पर शैतान सवार था, क्योंकि एक ख्याल आया कि खर्च 6 आने नहीं बल्कि 8 आने हुए, क्योंकि 2 आने का नाश्ता तो घूमने के सिलसिले में ही मैंने किया था, और 8 आने के हिसाब से मुझे 2 रुपए का घूमना चाहिए था। इधर ये ख्याल आया और उधर मुझे एक ट्राम दिखाई दी। जिस पर बेलगछिया लिखा था, मुझे ख्याल आया कि बेलगछिया अभी तक नहीं गया। मैं उस ट्राम में बैठ गया। बेलगछिया पहुंचकर मैं इस आशा से ट्राम में बैठा रहा कि ये वापस जाएगी, लेकिन एक आदमी ने आकर मुझसे कहा,
1: अब आप जाइए।
0: मैंने कहा मैं धर्मतल्ला जाऊंगा।
1: 11 बज गए हैं, घड़ी देख रहे हैं आप, अब यहां से कोई ट्राम नहीं जाएगी।
0: किशोर जी मैं चौंक उठा। मैंने कहा कि क्या क्या क्या आप कोई ट्राम नहीं जाएगी है? नहीं जाएगी यहाँ से।
1: कह तो दिया नहीं जाएगी, अभी बस मिल जाएगी, चले जाओ।
0: मैं उठा वहां से, लेकिन मेरी जेब में 1 पैसा नहीं, मतलब बस पर कैसे आता। मैंने उस आदमी से पूछा, धर्मतल्ला यहाँ से कितनी दूर है?
1: होगा कोई 5 मील।
2: तो फिर आपने क्या किया?
0: किशोर जी मैं पैदल धर्मतल्ले की तरफ रवाना हुआ। करीब 12:30 बजे मैं धर्मतल्ला पहुंचा। पूरी तरह थका हुआ था, धर्मतल्ला में कोई ट्राम नहीं मिली, इसलिए मुझे वहां से भी पैदल ही रगड़ना पड़ा। डेढ़ बजे के करीब मैं उस बड़े चौराहे पर पहुंचा। किशोर जी आप जरा देखिए ना, 9 मील पैदल चलकर आया था, दिन भर खाना भी नहीं खाया था, प्यास जोरों से लगी थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें निकल पड़ती थी, और उसी समय एक पुलिस वाले ने बढ़कर मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। मैं ऐसा बेकाबू और बेहोश था कि मेरे मुंह से शायद शब्द ही नहीं निकले, और अगर निकले भी होंगे तो टूटे फूटे बिना मतलब के रहे होंगे। तब तक एक दूसरा पुलिस वाला आ गया, उसने पहले से पूछा कि मामला क्या है। दूसरे ने जवाब दिया कि मालूम होता है सर, दारू पिए हैं, पैर सीधा नहीं पड़ते, जबान नहीं खुलते, नशा में बेहोश है। तो दूसरे ने कहा कि तो फिर थाने ले चलो, कल सुबह होश आई जाए। उस समय मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन या तो मैं उन्हें नहीं समझा सका, या फिर वो मुझे नहीं समझ सके।
2: ओहो ये बात है भिखू, अरे खाना ले आओ थाली में। भाई राम खिलावन जी, आपका अनुभव तो बहुत बुरा हुआ, अब मेरी सलाह यह है कि आप कल सुबह अपने घर वापस चले जाएं। आप अच्छी साइट पर घर से नहीं चले थे।
0: जी हाँ किशोर जी, बात तो ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे मामा के ससुर के बहनों जो टिकट कलेक्टर हैं और मुझे कलकत्ता मुफ्त में लाए थे।
2: अच्छा?
0: कह गए थे कि करीब 15 दिन में वापस लौटेंगे, तब साथ ले जाएंगे। 12 दिन तो हो गए, 2-3 दिन में आने वाले हैं, तब तब चला जाऊंगा।
2: लेकिन इस घटना को हुए करीब 15 दिन हो गए हैं और मेरा घर अभी तक आबाद है, क्योंकि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के मामा के ससुर के बहनोई

0: अभी तक वापस नहीं लौटे हैं।
1: छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, पुलिस कर्मी यूनुस खान, ट्राम का कर्मचारी दीपक केसावलेकर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: विविध भारती से।
1: अरे हम दोनों एक साथ बोल रहे हैं
0: जी।
1: तो बस यही बताना है कि ये कार्यक्रम है सखी सहेली, जो आज पहली बार जिन्होंने ट्यून किया होगा उनके लिए जरूरी है बताना कि सखी सहेली कार्यक्रम। और अब हम अपने एक मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं जो एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, वो है शादी, दाम्पत्य। शादी दरअसल अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आती है।
0: जी।
1: जीवन में यदि खुशियां हैं तो गम भी जिंदगी का हिस्सा है, ऐसे में जरूरी है कि हम इनमें संतुलन बनाकर चलें। लेकिन संतुलन बनाए कैसे? पति और पत्नी दरअसल होते एक सिक्के के दो पहलू हैं।
0: जी ममता जी।
1: दोनों में से किसी एक को कभी भी किसी मोड़ पर एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम इसे अपनी परेशानी नहीं समझे बल्कि अपना कर्तव्य समझे और एक दूसरे के मन को समझे।
0: बिल्कुल। और ये जो रिश्ता है बहुत समझदारी से काम लेने का होता है, प्यार और विश्वास पर टिका होता है जो रिश्ता है पति पत्नी का। कभी भी इस इमारत को बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि नींव ही अगर मजबूत नहीं हुई तो जो इमारत है उसका गिरने का खतरा हमेशा ही बना रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो पति पत्नी के रिश्ते की इमारत है, इसके दो आधार स्तंभ होते हैं, प्यार और विश्वास। ये स्तंभ अगर कमजोर हो जाएंगे तो रिश्ता ज्यादा समय टिक ही नहीं पाएगा। और जो भी पति पत्नी है जिनके बीच ये दो बातें बहुत मजबूत हैं, इनकी प्यार भी है और विश्वास भी है, उनका दाम्पत्य जीवन मान के चलिए कि हमेशा सुखमय रहता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि थोड़ी सी जो खट्टी मीठी बातें हैं वो तो जीवन का हिस्सा है, चलनी भी चाहिए।
1: बिल्कुल। देखिए ना, इसी तरह की कुछ बात हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखी है, लिखा इन्होंने कि कहते हैं कि जो धनुष बहुत मुश्किल से मुड़ते हैं वो चटक कर टूट जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी यही बात लागू होती है। दाम्पत्य जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है, जो देंगे वही आपके पास वापस आएगा। अगर एक दूसरे की खूबी को आप सराहते हैं तो कमियों को भी नजरअंदाज करना सीखिए। एक दूसरे की असहमति को समझे और ध्यान दें कि कहीं आप कंट्रोल फ्रीक तो नहीं होते जा रहे। एक दूसरे की कमियों और खूबियों को ही उसकी विशेषता समझें और हर कदम पर अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश हरगिज न करें, वरना जीवन में सिवाय कलह के और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ तुम समझो कुछ हम समझे, ये वाला सूत्र अपनाएं और दाम्पत्य की गाड़ी को दोनों पहियों पर चलने दें।
0: और ये जो इन्होंने लिखा है ना कि बदलने की कोशिश ना करें, जब आप किसी से अगाध प्रेम करते हैं तो आप उसको उसकी हर अच्छाई बुराई, उसकी कमियां खूबियों सबके साथ उसे अपनाते हैं और ये बहुत जरूरी है। कहीं आपको सिर्फ खूबियां देखकर किसी से प्रेम हुआ और बाद में कमियों के देखते अगर झगड़े में चीजें बदल जाती हैं तो ये सुखी दाम्पत्य जीवन की निशानी रही है, क्योंकि जहां खूबियां होती हैं वहीं कमियां सब में होती हैं। और एक चीज और है ममता जी, कि जो चीज आपको कमी लगती है वो किसी अन्य को खूबी लग सकती है और जो आपको खूबी लगे वो किसी अन्य को कमी लग सकती है। ये सबका देखने

0: का समझने का अपना नजरिया होता है
1: और दिन भर आरोप प्रत्यारोप भी दाम्पत्य जीवन को कमजोर बनाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो दोनों की जहां समझदारी होती है वहां लंबे समय तक दाम्पत्य टिकता है, जबकि कोई बहुत बड़ी समस्या न हो, बड़ी घटना न हो। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 6 आने का टिकट भाग 2 का इंतजार है, देख इन्होंने सुन लिया, और ये जो विषय है सुखी दाम्पत्य जीवन मेरे कोमल दिल पर मरहम है और प्रहार भी। बहुत ही नाजुक विषय है, चर्चा का इंतजार है, सहन शक्ति की परीक्षा है। जब विवाहित जीवन 30 साल पूरा होता है तो साथ रहना भी है, एक दूसरे का के साथ दुश्मनी भी है, तो फिर भी कट ही जाएगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। दरअसल इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है, शायद हो सकता है कि छोटी सी दरार पड़ जाती है दाम्पत्य जीवन में तो लोग उसको बहुत बड़ा भी बना लेते हैं कई बार। हाँ। और कई बार उस दरार को पाटने की कोशिश नहीं करती है तो टूटने की नौबत आ जाती है, तो कोशिश हो कि वो दरार पाट लिया जाए।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा ना कि कई बार मुश्किल वक्त में साथ देना होता है, तो बहुत सारी मुश्किलों का समय आता है जब पति पत्नी की भी एक बहुत कठिन परीक्षा होती है। अभी मान लीजिए आपके जो पतिदेव हैं, यानी किसी स्त्री के पति हैं, उनकी नौकरी छूट गई या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, और ये ऐसे समय में ना एक जीवन साथी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। हो सकता है कि अगर कोई महिला है वो कोई बिजनेस वुमेन है, यानी कि वो नौकरी करती हैं या कोई व्यापार करती हैं, और उनके व्यापार में घाटा हो गया, तो चाहे वो पति है या पत्नी है, कामकाज जब मंदा होता है या छूट जाता है तो घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं और बहुत सारी चीजें उथल पुथल होने लगती हैं। ऐसे में परिवार में लोगों का तनावग्रस्त होना जरूरी है, तो अगर आपके पति तनावग्रस्त हैं ऐसी चीजों को लेकर या पत्नी तनावग्रस्त हैं, तो दोनों एक दूसरे का साथ दें और प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो वो इस परिस्थिति से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। और ऐसे में यदि अगर ताने देंगे कि भाई तुम्हारी वजह से ही ये नुकसान हुआ, तुमने ऐसे ठीक से नहीं किया, तो ये चीजें है ना घर में चीजों को और क्लेश बना देती हैं।
1: मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे की बात को समझें, और जहां कोई एक परेशान है तो साथी को चाहिए कि वो आपकी उस परेशानी को दूर तो नहीं कर सकता है कोई एकदम से, लेकिन उस परेशानी में ये जताना बहुत जरूरी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो ये नौबत जो आपने ऑफिस की बात कही, चाहे वो हो, चाहे एक दूसरे में से कोई एक जोड़ा बीमार पड़ जाता है तब की समस्या है, या फिर कई कोई ऐसा हादसा हो जाता है इसका शिकार हो जाता है, तब तो निश्चित रूप से दोनों में से एक की जरूरत पड़ती है। बात जरूरत की नहीं है, जरूरत तो आप और भी तरीके से पूरी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत यहां पर बात यह है कि आप जिससे प्रेम करते हैं दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से प्रेम की नींव होती है, मतलब प्रेम की बुनियाद पर ही टिका होता है, उस प्रेम को टूटने से कैसे बचाएं।
0: और जैसे आपने कहा ना कि चिंता ना करते हुए अगर कोई भी एक शख्स ये कह देता है कि आप चिंता मत करो मैं हूं ना आपके साथ,
1: बिल्कुल,
0: तो ये जो शब्द हैं बहुत कहते हैं कि मजबूत बना देते हैं।
1: अब एक गाना सुनते हैं।

0: तो ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और हमारी बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि पति पत्नी के आपसी विश्वास और साथ से दाम्पत्य जीवन भी सुखी और बच्चे भी सुखी होते हैं। बात यहां बच्चे की है तो ये बात बताना बहुत जरूरी है। कई बार दाम्पत्य जीवन को स्थायी रखने के लिए, टिकाऊ रखने के लिए बच्चे की भूमिका बहुत अहम होती है। कई बार बच्चे पति पत्नी के झगड़ों में आकर अच्छी बड़ी भूमिका निभाते हैं और झगड़े को खत्म भी करवा देते हैं। और कई बार ये माता पिता भी बच्चे के लिए अपने झगड़े खत्म कर देते हैं।
1: बहुत सही कहा आपने। और कई बार ऐसा भी होता है ना, जब मुश्किल का समय आता है, जैसे हम एक बात कर रहे थे, हमने एक सिर्फ कारोबार या नौकरी की बात की, ऐसे समय में पत्नियां एक तरीके से इस चीज को टूल की तरह इस्तेमाल करती है, भाई अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं मायके चली जाऊंगी। यानी कि बात बात पर आपको अपने, चाहे वो कोई छोटी सी नोकझोंक वाली बात है या कोई बड़ी समस्या आपके साथ में हुई है दाम्पत्य जीवन में,
0: अब उल्टा भी होने लगा है। हमने तो सुना है कि अब महिलाएं ये कहती हैं कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं तुमको घर से निकाल दूंगी। अच्छा।
1: तो भाई दोनों ही परिस्थितियां जो है वो ठीक नहीं है ना, तो पति को घर से बाहर निकालने वाली परिस्थिति ठीक है, ना ही मायके जाने वाली है। जो भी कोई समस्या आपके जीवन में आई है, जो दाम्पत्य जीवन के साथ में उलझनों को बढ़ा रही है, तो उसे सुलझाने का प्रयास करना है और दोनों को मिलजुल कर ही करना है। अगर किसी तरह से हमें पता लगता है कि जीवन साथी के साथ कोई स्वास्थ्य समस्या भी है, किसी रोग से वो ग्रसित हैं, तो ऐसे समय में भी धैर्य से काम लेना है। अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे वो पति हैं या पत्नी, तो उनका सहयोग अगर मिलेगा, आप ध्यान देंगे, तो वो जो भी आपका रोग है या आपकी समस्या है उससे जल्दी स्वस्थ होकर, सुरक्षित होकर उबर कर बाहर आ सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और देखिए, कुछ मिलती जुलती बातें हमारे श्रोताओं की ओर से भी आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन की कुंजी खुशी है, जो पारस्परिक सम्मान, अटूट विश्वास और खुले मन से संवाद रूपी की चेन में बंधी हुई है। अध्यात्म और ज्योतिष दृष्टि से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव पार्वती को ध्यान में रखना चाहिए और इस मतलब आध्यात्म की ओर ले जाने की बात इन्होंने कही है। दरअसल आज जो भागदौड़ की जिंदगी है, ऐसे में आपको सबसे बड़ी कुंजी तो यही है कि आप एक दूसरे की बात को सुने और समझें, तो काफी कुछ मुश्किलें हल हो जाती हैं।
1: एक बड़ा छोटा सा बात छोटी सी कही है शोधा ने, लेकिन अहम बात है। उन्होंने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन कोई बना बनाया नियम नहीं, ये दोनों की भागीदारी की निरंतर प्रयासों और आपसी समझ के बिना किसी शर्त के बिना एक दूसरे को स्वीकार करने की भावना से ही ये रिश्ता फलता और फूलता है।
0: चंचल जी, दरअसल ये बड़ी बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही नाजुक डोर होती है दाम्पत्य की, और इस नाजुक डोर को टूटने से बचाना ही

0: सही होता है। हालांकि अब दौर बदल चुका है, जब हम सभी इस बात पर चर्चा करते हैं और स्त्री विमर्श की जब बात आती है तो यही होता है कि आपकी जब आपका मन एक दूसरे से नहीं मिल रहा है तो आप एक दूसरे के साथ को छोड़ दें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है छोड़ना भी। जोड़ना जितना आसान होता है, छोड़ना उतना ही कठिन होता है। तो जब आप घर में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है और बहुत ज्यादा रोज रोज की मारपीट, लड़ाई झगड़े जब एकदम अति हो जाती है तो निश्चित रूप से छोड़ना ही बेहतर होता है। लेकिन उसके लिए लड़कियों की बचपन से जो कंडीशनिंग होती है, लड़कियों की जो पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी जो परवरिश होती है, उनको शुरू से ट्रेन करना बहुत जरूरी है। अब पिछला समय जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही सम्मान देना चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। अमूमन हमने देखा है कि घरों में लड़कियां कभी पिता के सहारे, कभी भाइयों के सहारे, फिर कभी दोस्तों मित्रों के सहारे ही अपना जीवन जीती हैं। तो जब पति पत्नी के बीच ऐसी नौबत आती है तो वो औरत ये सोचती है कि अब हम कहां जाएं, अब हम क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे। तो ये जो सहारे वाली बात मन में आती है, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो दौर बदल चुका है।
1: और कई बार जब त्रिकोण वाली परिस्थिति आती है ना, अगर आपका कोई साथी है, कोई मित्र है, पति की कोई अगर महिला मित्र है या पत्नी की कोई पुरुष मित्र है, तो उनको लेकर भी कई बार संदेह मन में इस तरह के आते हैं कि दाम्पत्य जीवन टूटने की कगार पे आ जाता है। और कई बार आजकल मोबाइल जो चीज है, हम एक दूसरे की अंदर झांकने के लिए उस मोबाइल को देखने की कोशिश करते हैं। अगर वहां कोई पासवर्ड है वो हमें ना मिले तो शक कितना पक्का हो जाता है, गहरा हो जाता है कि भाई पासवर्ड क्यों लगाया है आपने अपने मोबाइल पर, ऐसा क्या है जो हम नहीं देख सकते। तो ये चीजें भी कई बार परिस्थितियों को बहुत उलझा देती हैं, तो चीजों को समझ के लेने वाली बात है।
0: और पासवर्ड तो अमूमन महिलाओं को, मतलब महिलाओं का पासवर्ड पुरुष ही तय करते हैं, तो ये तो शायद भेद अब तक नहीं मिट पाया है। और ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो जिसे हम अनदेखा करके दाम्पत्य जीवन को संभाला जा सकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब एक साथी की नाइट शिफ्ट होती है और दूसरा घर में है, मान लीजिए पति की नाइट शिफ्ट है और पत्नी घर में रहती है और घर की पूरी देखरेख कर रही है, उसके कंधे पर पूरी घर की जिम्मेदारी है, तो यहां भी टसल होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसको नींद की जरूरत होती है पति को और वो घर उतना मैनेज नहीं कर पाता है, तो भी मुश्किलें होती हैं। तो ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके कारण टकराव होते हैं।
1: कुल मिला के कहना यही है कि हर समय, चाहे वो कठिन समय है चाहे आपके प्यार के पल हैं, एक दूसरे का हाथ हमेशा थामे रहें और अपनी जिंदगी की मुश्किल भरे दौर में भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। जब आप खुशी एक साथ साझा करते हैं तो दुख को भी एक साथ साझा करें।
0: साथ छोड़ने की जब बात आती है तो बहुत जरूरी है कि स्वावलंबी होना महिलाओं का। महिलाएं अगर आत्मनिर्भर हैं और उनकी भी आजीविका है साथ में, तो जब ऐसी नौबत आती है तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ नहीं टूटता है। इसलिए बचपन से लड़की और लड़के को बराबर रखना चाहिए। और बात जब दाम्पत्य जीवन को संभालने की आती है तो यही हम सभी यही कहते हैं कि तोड़ने से बेहतर होता है जोड़ना। तो जितना हो सके जोड़िए एक दूसरे को। फिलहाल सुनिए ये गाना।

0: देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना अभिमान फिल्म, ये भी तो दाम्पत्य जीवन पर ही आधारित
1: है। किस तरह से थोड़े से अहम को लेकर दाम्पत्य जीवन टूट जाता है,
0: तो अहम का टकराव नहीं होना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, सुखी दाम्पत्य जीवन भाई दाम्पत्य जीवन सुखमय ही नहीं अपितु तो आनंद युक्त होना चाहिए, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी लोगों के पास आनंद नहीं है, वो तेरे अपने उस बेगाने प्यार की तलाश और मोबाइल में कर रहे हैं, तो क्या किया जाए।
1: बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब कुछ खट्टे मीठे चटपटे जिस तरह के भी व्यंजन हैं इनकी बात हो जाए। और आज हम बात कर रहे हैं जिन व्यंजनों की, उसमें से एक है शुक्तो। ये एक पारंपरिक बंगाली मिश्रित सब्जी होती है जिसका स्वाद हल्का कड़वा और मलाईदार होता है। मुख्य सामग्री इसमें होती है करेला, कच्चा केला, बैंगन, सहजन की फलियां यानी कि ड्रमस्टिक्स और राधुनी मसाला और दूध। इसे बंगाली दोपहर के भोजन की शुरुआत के समय मेन कोर्स के रूप में परोसा जाता है।
0: और एक व्यंजन इस तरह से बना है, सोनार मूंग दाल। ये भुनी हुई मूंग दाल से बनने वाला खास और शाही व्यंजन कहलाता है। इसमें दाल को पहले सूखा भून दिया जाता है जिससे इसमें एक बेहतरीन सोंधी खुशबू आती है। मुख्य सामग्री है सोना मूंग दाल, छोटे दाने वाली खास तरह की दाल, घी, काजू, किशमिश और हरी मिर्च। इसे बंगाली शादियों, त्योहारों और विशेष पूजा के अवसरों पर चावल के साथ परोसा जाता है।
1: इसी तरह से एक और रेसिपी हमारे पास आई है, ये मोचार घंटों, और ये बिहारी रसोई में भी बनाया जाता है बंगाली रसोई के साथ साथ। और जिनके भी घर में केले का पेड़ लगा हो वहां केले का गोंद गिरता है, उससे फूल बनता है। और ये इन्होंने रेसिपी बताई है कि उस फूल को निकालकर ये सब्जी बनाई जाती है। थोड़ी सी मेहनत इसमें ज्यादा लगती है लेकिन उसके भीतर पुंग केसर को निकालना पड़ता है और थोड़ा सा एक कसैला भी लगता है। इसे उबालकर बेसिक मसालों के साथ और बिना प्याज लहसुन के बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है। उबालने के बाद पिसे हुए चने या मसूर दाल में मिलाकर इसकी पकौड़ियों की तरह बनाकर

0: के कोफ्ते भी बनाए जाते हैं।
1: पातिशाब्ता जानती हैं आप क्या होता है? नहीं जानती है?
0: जी
1: चलिए
0: बताइए।
1: तो हमारी श्रोता ने लिख भेजा है, पातिशाब्ता ये एक तरह की पारंपरिक बंगाली मिठाई है और जो पतले चीले की तरह दिखती है, ये बेहद मीठी और मलाईदार होती है। मुख्य सामग्री इसमें लगती है मैदा, सूजी और चावल के आटे का घोल, जिसमें खोया कद्दूकस किया हुआ मतलब मावा

0: में लगता है और इसमें मुख्य सामग्री होती है कच्चा कटहल, आलू, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, बंगाली पंचफोरन के साथ और गरम मसाले के साथ इसे परोसा जाता है और इसे शाही मटन भी कहते हैं।
1: और जब भी ये सब व्यंजन बनाएं आप तो उस समय गाना जरूर सुने, वो भी विविध भारती से। फिलहाल ये गाना सुने।

0: अब जरा घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओ, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके निदान पर विशेषज्ञों से बातचीत। बालों की सुंदरता और इसके लचीलेपन को लेकर हम बड़े सजग रहते हैं और हर तरह से इनकी सुंदरता के लिए प्रयास भी करते रहते हैं, फिर भी बालों को लेकर एक समय के बाद कुछ न कुछ समस्याएं देखने में आ ही जाती हैं। पिछले हफ्ते आज ही के दिन बालों की समस्या और देखभाल इस विषय को लेकर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत हमने आपको सुनवाई थी। आज इसी बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाते हैं।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कि कई पुरुषों में जो बालों की समस्या वो दो तरह से होती है। एक तो ये कि बाल पीछे की तरफ सरकते चले जाते हैं और ये माथा जो है वो बड़ा होता चला जाता है। दूसरा, जिसको हम हिंदी में चांद निकलना कहते हैं, बेल्डनेस आती है बीच के हिस्से में। इन दोनों को रोका जा सकता है? इनका कोई उपाय है? या ये जेनेटिक है और ये खानदानी चीजें हैं तो इसको टाला नहीं जा सकता?
2: एक भ्रम है लोगों में।
1: अच्छा,
2: कि जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट नहीं है। ये भ्रम। अगर मैं कहूं कि डायबिटीज भी जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट मत लीजिए। हो सकता है?
1: नहीं हो सकता है, मुश्किल हो जाएगी।
2: तो जरूरी समझना है कि जेनेटिक बीमारियां जो होती है, साइंस ने इतना रिसर्च कर लिया कि उसमें ट्रीटमेंट लाई हुई है।
1: ओके।
2: और हमने ऐसे ट्रीटमेंट देखे हुए हैं कि जिसको रिस्पॉन्स काफी तरह से होता है। सिर्फ ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग है। स्टेज वन, स्टेज टू, अलग अलग स्टेजेस में हमको ट्रीटमेंट देनी होती है। तो चांद निकला है, शायद मेडिकल लाइन इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हो, उससे फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि बहुत बड़ा चांद है।
1: बहुत बड़ा चांद है। सिर पर बहुत बड़ा चांद।
2: तो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
1: जी जी जी। ओके।
2: उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
1: उसकी भी बात हम आगे चलकर करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो क्या है, उसकी बात आगे करते हैं। तो ये टाला जा सकता है, मतलब ये कि अगर कोई खानदानी मामला भी है, जेनेटिक मामला भी है, तो भी डॉक्टर के पास जाए।
2: या क्योंकि ट्रीटमेंट है, रिसर्च ने ट्रीटमेंट निकाली है उस पर।
1: जी,
2: आपको लेना या नहीं लेना आपका डिसीजन है।
1: राइट, बिल्कुल। अच्छा, ये जो चारों तरफ बड़े सजीले विज्ञापन आते हैं, इसमें लहराते हुए बाल नजर आते हैं और ये शैम्पू लगाने से बाल चमकीले, और वो कमाल कमाल के वर्ड्स का इस्तेमाल है जो हम यहाँ नहीं दोहराना
2: चाहिए। तभी तो उससे विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन का काम ही है कि आप देख के थक हो जाओ।
1: हाँ, कि ये रिचनेस आती है फलाना, अलग अलग टेक्निकल चीजें बताई जाती है कि ये विटामिन से भरपूर है और ये दादी नानी के नुस्खों से भरपूर है। क्या कोई शैम्पू सचमुच में बालों का भला करता है, या बिना सोचे समझे शैम्पू का इस्तेमाल करने का मतलब है कि उल्टा असर हो जाएगा?
2: मैं उल्टा नहीं बता सकूंगी कि उल्टा असर होगा। शैम्पू बहुत माइल्ड तरीके से स्लोली काम करता है। इट्स अ सपोर्टिव। जैसे कुछ शैम्पू जो है कि हमारे स्काल का इकोसिस्टम होता है, हमारे स्काल पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे स्काल को हेल्दी बनाते हैं और हेयर को हेल्दी बनाते हैं। जब गंजापन आता है तो इसका जो ये है सपोर्टिवनेस या इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ शैम्पू ये है, इंग्रेडिएंट्स जो शैम्पू में होते हैं, ये बालों के इकोसिस्टम को रेस्टोर करने का काम करते हैं स्लोली। पर कुछ शैम्पू ऐसे, अब कोई हार्श शैम्पू आजकल तो नहीं लग

0: लगाता है, अच्छे वाले शैम्पू ही लगाते हैं, लेकिन वो शैम्पू में ये इकोसिस्टम को रेस्टोर करने की कैपेसिटी है या नहीं है आपको नहीं पता चलेगा।
1: जी जी,
0: आपको डॉक्टर ही बता सकेगा कि ये शैम्पू में ये सिस्टम है, आप ये लगाइए। नॉर्मल लोगों को देखना है कि आपका हार्श शैम्पू नहीं लगा। हार्श आप कैसे समझोगे, तो जब झाग ज्यादा होता है, हमारी मेंटेलिटी क्या है,
1: झाग ज्यादा है तो अच्छा है,
0: अच्छा है, पर वो ज्यादा झाग वाला शैम्पू आपका स्किन का हेयर का मॉइस्चर निकाल लेता है पूरा।
1: ओहो, जो हर धारणा जो है लोकप्रिय धारणा, उसमें आज आप भयानक तोड़फोड़ कर रही हैं। जी ये क्योंकि हमें तो लगा कि वाह वाह झाग वाला शैम्पू है।
0: एडवर्टाइज देखोगे तो झाग वाला शैम्पू से भरपूर ऐसे और लोगों को लगता है कि लेना चाहिए।
1: जी
0: तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा तुम्हारा मॉइस्चर
1: चला जाएगा। जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैम्पू की फ्रीक्वेंसी क्या हो और उसका सही तरीका क्या है,
0: उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल समझना जरूरी है। अगर आप रोज जिम जा रहे हो या पसीना आ रहा है तो आपको रोज करना चाहिए, पर करने के टाइम पर आपको ध्यान देना है कि वो शैम्पू माइल्ड तरीके का हो।
1: ये ऐसा झाग वाला नहीं हो,
0: झाग वाला नहीं चाहिए। अदरवाइज महिलाओं में 2 से 3 बार, पुरुषों में डेली या 3 से 4 बार। अभी जिसको स्केलिंग है, डैंड्रफ है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, अलग टाइप का शैम्पू लेना होता है। और जब भी आप शैम्पू करें और आपके बाल ड्राई होते हैं तो पहले दिन या 1 घंटा पहले आपको ऑयल लगाना जरूरी है, कोकोनट ऑयल। से क्या होता है, कोकोनट ऑयल का एक कैपेसिटी है जो हेयर के अंदर के सेल तक जाके रुकता है। तो इससे उसमें से का मॉइस्चर है ना, वो शैम्पू के टाइम पर नहीं निकलता जल्दी से।
1: ओके
0: तो ड्राई नहीं होते हैं,
1: बहुत महत्वपूर्ण बात है।
0: और फिर भी आपको लगता है कि ड्राई हो रहे हैं तो कंडीशनर लगाना चाहिए। भले ही आप 2 मिनट के लगाओ, 5 मिनट के लगाओ, लेकिन कंडीशनर लगाइए। पहले वाला कंडीशनर मतलब तुम्हारा ऑयल जो कोकोनट ऑयल है, बाद में वाला कंडीशनर मतलब अभी मार्केट में अच्छे वाले कंडीशनर आते हैं। इसके बावजूद भी आपके बहुत ड्राई है, लस्टर लेस है, तो आपको देखना चाहिए, उसको बोलते हैं हेयर शार्प डिसऑर्डर्स, मतलब आपकी शार्प की क्वालिटी कुछ खराब हो रही है। वो भी जेनेटिक होता है और नॉन जेनेटिक भी होता है।
1: ओके
0: तो वो एक एनालिसिस करके लेना जरूरी होता है।
1: जी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो है वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि शैम्पू की फ्रीक्वेंसी की सारी बातें हो गई कि किस तरह से शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बड़ी सूझबूझ के साथ नारियल के तेल का जिक्र किया। आज के लड़के या कुछ हद तक लड़कियां भी बालों में तेल लगाने से परहेज करते हैं क्योंकि रोज बाहर जाना है वो गंदा दिखेगा, बाल चिपचिपे दिखेंगे। ये तेल लगाना कितना जरूरी है?
1: तो मैं कहूंगी तेल लगा के बाहर नहीं जाइए, रात को तेल लगाइए। सुबह आपको शैम्पू करना है तो जो दिन शैम्पू करना है उसके पहले रात को तेल लगा लीजिए।
0: जी,
1: तेल लगाने का और एक फायदा होता है, ये रिसर्च बोलती है। और ये जब मैं सोचती हूँ कि हमारे टाइम पर हम लोग तेल लगा के शैम्पू करते थे बचपन में,
0: बिल्कुल
1: एक क्या बोलते हैं माहौल रहता था, रूल था कि मम्मी आती थी अच्छे से तेल चंपी करती थी और दूसरे दिन हम शैम्पू करते थे। रिसर्च ने बताया है कि कुछ तेल ऐसे हैं जिसकी इकोसिस्टम मेंटेन होती है, जो मैंने बोला है इकोसिस्टम,
0: हाँ जी,
1: वो तेल से मेंटेन रहती है।
0: तो देखिए कि ये हमारी पुरानी परंपरा कितनी साइंटिफिक,
1: तभी साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। तो अभी क्या हुआ कि पेरेंट्स वो टाइम के चले गए, अभी मॉडर्न पेरेंट्स आए हैं तो उनको ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है।
0: जी,
1: मैं तो कहती हूँ तेल लगाना जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है
1: इकोसिस्टम के हिसाब से। अगर आपको बालों के इकोसिस्टम मेंटेन करने, इस सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ, आप बालों को मॉइस्चराइजर, हाथों को मॉइस्चराइजर लगाते हो, क्यों लगाते हो?
0: रूखे हो जाते हैं।
1: स्काल्प को हम मॉइस्चराइजर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सीबम रहता है अपने बालों में, एक सीबम जो बालों में बहुत ज्यादा रहता है, सीबेसिस ग्लैंड बहुत रहते हैं, तो मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए। लेकिन ओवर पीरियड जब हम धूप में जाते हैं, हमारी जब उम्र होती है तो इसका प्रमाण भी सीबम सिक्रीशन का कम हो जाता है। तो हम रोज नहीं लगा रहे ऑयल, पर बॉडी में हम रोज लगाते हैं स्नान करने के बाद, ड्राई होते हैं, तो कभी कभी सर के बालों को, स्किन को तेल लगाना जरूरी है।
0: ये फ्रीक्वेंसी क्या हो, इसका भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए।
1: हफ्ते में 2 से 3 बार। आप शैम्पू तो हफ्ते में 2 से 3 बार कर ही रहे हो। और बहुत चिपचिप नहीं, थोड़ा सा, जैसे आप मॉइस्चराइजर बॉडी को लगा रहे वैसा समझ के लगाइए तेल।
0: जो लोग नहीं लगाते हैं बालों में तेल, चाहे वो अपनी मान्यता की वजह से या फैशन की वजह से या लापरवाही की वजह से, उनके बालों पर क्या असर पड़ता है?
1: देखो, सिर्फ बालों से नहीं, ये बालों का जो इकोसिस्टम सपोर्टिव सिस्टम है, आपका मेन कॉज क्या है? अगर हेयर फॉल का मेन कॉज अलग है, अगर मैंने उसको नहीं ठीक किया तो सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं होने वाला।
0: जी, वो एक पूरा स्कैल्प, पूरा इकोसिस्टम,
1: होलिस्टिक अप्रोच करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: दूसरा मैं कह रही थी कि जो आपने देखेंगे ना, जो तेल लगाते हैं, रेगुलर तेल लगाते हैं, उनका शायद बाल झड़ने का प्रमाण जल्दी ठीक हो जाता है।
0: जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको फिर बोल दीजिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आए।
1: जो बालों में तेल लगाते, बालों में मतलब स्किन पर, जब बालों में हम तेल लगाते हैं वो कंडीशनिंग करके होता है, सर के स्किन को तेल लगाते हैं वो इकोसिस्टम इम्प्रूव करने का काम करता है,
0: उनके बाल सही सलामत रहते हैं,
1: रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: जी, बहुत

या है। अब यहां पर एक गाना आएगा और वो सावन की घटा फिल्म का गाना है, जुल्फों को हटा दे चेहरे से थोड़ा सा उजाला होने दे। सुनते हैं ये गाना।

0: इतने जुल्फों के गाने हम बजा रहे हैं और इतनी इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं, आपने कई ऐसी पॉपुलर मान्यताओं में तोड़फोड़ कर दी जिनको हम मानते थे कि जैसे झाग वाला शैंपू, तेल ना लगाना, ये तमाम बातों को लेकर बड़ी उपयोगी जानकारी आपने दी। और बालों को लेकर जो फैशन है, मतलब तरह तरह के कलर्स लगाना, आजकल तो लोग पर्पल और नीला और हरा क्या क्या रंग बालों के कर लेते, वो कितना नुकसानदेह, अब इस पर आ जाते हैं। पहले
1: आपका बैंक बैलेंस है और आपको खर्चा करना है, कितना खर्चा करना चाहते हो ताकि आपका बैंक बैलेंस थोड़ा नेगेटिव में जाए, ये आपको डिसाइड करना है।
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है ये।
1: मतलब ये जो कलरिंग करते हैं, बहुत जो डार्क कलर्स अलग तरीका करते हैं,
0: पहले ये नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत ही वो जो बम्बैया शब्द है, अतरंगी कलर्स,
1: ये बट ये आपका फैशन है
0: जी,
1: पर ये फैशन आएगा आपको नुकसान के साथ आएगा,
0: राइट,
1: आपको चलने वाला है
0: नहीं,
1: नहीं आप बोल रहे नहीं, पर किसी को चलने वाला भी हो सकता है
0: जी,
1: आप सोचे कि नुकसान के साथ आने वाला है तो ये बैगेज के साथ आएगा, आप तैयार है उसके लिए, गो अहेड।
0: बहुत सही बात है, मतलब ये जो लोग तरह तरह के बालों में कलर्स लगाते हैं, चाहे वो गोल्डन कलर्स हो,
1: हाँ, लेकिन क्या होता है, इन लोगों को बहुत ऐसे एक मन में इच्छा होती है, बहुत सारे
0: ट्रेंड के साथ चलना,
1: ट्रेंड के साथ चलना।

0: तो मैं ट्रेन के साथ नहीं चलूंगी तो कैसा लगेगा, मैं करके देखती हूँ। ठीक है, एक बार करके देखो, दो बार करके देखो, आप डिसाइड करो कि आपको डैमेज कितना हो रहा है, देन यू टेक अ कॉल कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम ऐसे जनरलाइज में स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि नहीं करो,
1: लेकिन करना आपको है, देखना है कि कितना नुकसान हो रहा है।
0: हो रहा है नुकसान, आप वो नुकसान सहन करने को तैयार है, ठीक है, फिर आगे बढ़िए।
1: जी, और एक उम्र के बाद, आजकल तो एक उम्र के पहले भी बाल सफेद हो जाते हैं और लोगों को जरूरत पड़ती है बाल काले करने की, और उसमें केमिकल कलर्स का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं जो बाजार में उपलब्ध होते हैं, या आप जाके प्रोफेशनल से लगवाते हैं, और दूसरा तरीका है मेहंदी लगाने का। इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखिए।
0: जो ग्रे होते हैं, जिनके ग्रेइंग जो शुरू होती है 20 साल के पहले, उसको जेनेटिक बैकग्राउंड है
1: जी। उसको रोक सकते हैं,
0: कम कर सकते हैं, कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है, पर बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ तरह के लोशंस है मार्केट में जिसके रिजल्ट्स हमने देखे हुए हैं, पर इसका 100% नहीं उपयोग होता है, 40-50% इम्प्रूवमेंट होता है लोगों में। और जो उम्र के हिसाब से ग्रे बाल होते हैं उसको रिवर्स करने का अभी साइंस ने कोई तोड़ नहीं डाला है उसमें। तो उसको आपको कलर करना होता है। अभी कलर कौन सा करें, कलर में बहुत सारे वैरायटीज है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कंपनी का जिससे ड्राई नहीं होते हैं और जिसकी एलर्जी नहीं है, कुछ लोगों को डाई की एलर्जी भी होती है तो उनको वो कलर रेंज सूट होता है, फिर बगैर वो इनग्रे पीपीडी फ्री वाला कलर लेना पड़ता है।
1: आजकल वो एक सेंटेंस बहुत चलता है ना, अमोनिया वाला कलर, और अमोनिया से फ्री
0: थोड़ा डैमेज कम हो जाता है
1: जी,
0: क्योंकि ये तो हेयर डाई है, अमोनिया रहेगा तो थोड़े ड्राई होते हैं बाल, डैमेज मतलब ड्राई होते हैं, तो अमोनिया फ्री से ड्राइनेस कम हो जाता है। जैसे ही आप, वैसे ही जैसे आपका कलर डाई भी लाइट कलर का होगा, गोल्डन होगा, तो ड्राई बहुत ज्यादा होता है। मेहंदी लोग इसके लिए लगाते हैं कि वो ये कलर डाई से डरते हैं, पर अगर आप देखेंगे कलर डाई इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, साइड इफेक्ट्स वाले होने वाले प्रमाण बहुत कम है।
1: बिल्कुल,
0: पर मेहंदी लगाने से ड्राइनेस काफी ज्यादा आता है बालों में।
1: तो इसमें एक फैसला करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी चीज ठीक है।
0: अमोनिया फ्री अच्छे कंपनी का डाई
1: जी,
0: उसके साथ आपको कंडीशनर करिए तो आपके ड्राई नहीं होंगे बाल। तो ये जो डाई करना है कलर डाई, अगर आप ग्रे के लिए करना चाहते हैं तो नुकसान नहीं होता है, हम सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, पर आप बहुत अलग तरह के मतलब रेड वाले कलर करोगे तो आपके बाल ड्राई होते रहेंगे, फिर वो ड्राई बालों को ठीक करने के लिए आप दूसरी प्रोसेस करोगे, तीसरी प्रोसेस करेंगे, तो ये तो विशेष साइकिल चालू रहेगी।
1: बिल्कुल, तो इसलिए समझदारी से चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है। यहाँ पर एक गाने की बारी है।

0: ये जो हेयर कलर्स हैं, क्या ये कोई बड़ा नुकसान अचानक कर सकते हैं कि बालों का एकदम बड़ा पैच अचानक गायब हो गया?
1: अगर आपका कलर लो क्वालिटी का है, उसमें इरिटेशन बहुत ज्यादा है, रिएक्शन हो गई आपको, यस, कुछ लोगों को रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये रिएक्शन वाली बात हुई तो डेफिनेटली यस।
0: तो इसको लेकर सावधानी की जरूरत है। एक बहुत बड़ी और कॉमन समस्या हर उम्र के लोगों में है और वो डैंड्रफ की समस्या है, जिसको लेकर भी विज्ञापन इंडस्ट्री बहुत सक्रिय है। डैंड्रफ से जुड़ी भ्रांतियां दूर कीजिए।
1: डैंड्रफ के साथ बहुत लोगों को एक स्टिकी टाइप का डैंड्रफ होता है, किसी लोगों को फ्लेकी टाइप का डैंड्रफ होता
0: है,
1: गिरता रहता है। लोगों में धारणा ऐसी है कि डैंड्रफ हुआ तो मुंह से हुए, ये गलत है, ये गलत है। वो डैंड्रफ फेस पर आता है और फेस में है, वो अलग है। मुंह से का पैथोजेनेसिस बिल्कुल अलग है और डैंड्रफ का अलग है
0: जी।
1: डैंड्रफ के प्रकार जो होते हैं उसमें आपको समझना चाहिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, क्योंकि वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होती है। यहां मैं सावधान करना चाहूंगी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब हम स्कोप के नीचे देखते हैं, बहुत सारे आधे लोगों को स्कैल्प सोरेसिस होता है। ये स्कैल्प सोरेसिस अलग बीमारी है
0: जी।
1: जैसे हमारे बॉडी में सोरेसिस है, वैसे एक स्कैल्प सोरेसिस एक प्रकार है,
0: उसके बारे में भी बता दीजिए।
1: तो ये स्कैल्प सोरेसिस हमको वो टेस्ट करने मतलब ट्राइकोस्कोप से समझ में आती है कि स्कैल्प सोरेसिस है या डैंड्रफ है। जो जो लोगों को डैंड्रफ करके डायग्नोस हुआ, 50% लोगों में स्कैल्प सोरेसिस निकला, इसका हमने रिसर्च किया हुआ है। तो स्कैल्प सोरेसिस की ट्रीटमेंट अलग है, हालांकि उसको क्योर नहीं है, बट हम बिल्कुल कंट्रोल रख सकते हैं दवा से। दवा भी बहुत सिंपल है, बहुत हार्श दवा नहीं है, बट रिकरेंस इज वेरी कॉमन। तो लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, तो उसको कुछ चीजें ऐसी होती है कि रिकरेंट होती रहती है। कंट्रोल करना हमारे, जैसे हम डायबिटीज की दवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, हम ऐसे बोलते हैं क्या कि मुझे खाना नहीं है, कितने सालों तक मैं खाऊं?
0: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता,
1: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए
0: जी। कई शैम्पूज इस तरह के विज्ञापन के साथ आते हैं कि वो डैंड्रफ के दुश्मन है, क्या ऐसा होता है?
1: शैम्पू डैंड्रफ के दुश्मन है कि शैम्पू डैंड्रफ के लिए है?
0: बताइए कि शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं या नहीं हटाते हैं?
1: नहीं, कुछ शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं, और बहुत बार कैसे होता है कि सेम तरीके का शैम्पू जब आप इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो शैम्पू काम करना बंद हो जाता है।
0: अच्छा, ऐसा
1: आपको लगता है कि अब ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट को कभी कभी ये मैलेजिया फरफर करके एक फंगा होता है, वो काम नहीं करते, तो दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ शैम्पू आप ले सकते हो, पर भी आपके नहीं जा रहे तो आपको देखना है कि आपका स्कैल्प सोरेसिस नहीं है ना। आपको नहीं पता चलेगा, दोनों स्कैल्प सोरेसिस और डैंड्रफ बहुत दिखने में सेम दिखते हैं। इससे अच्छा मैं मैसेज देना चाहूंगी कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपने ट्राई किया है
0: जी,
1: आपको फर्क नहीं हो रहा है, तो आपको स्कैल्प सोरेसिस है या नहीं है इसकी जान लीजिए।
0: ओके, उसको आपको टेस्ट करवा लेना है जी। ये एक थंब रूल होगा,
1: थंब रूल मतलब लोग ऐसे ही बहुत सालों तक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, एक छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और वह परेशान हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि आपको स्कैल्प सोरेसिस है कि नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये मैसेज जाना चाहिए,
0: ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं और उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
1: बहुत बड़ा मुद्दा।
0: यहाँ पिया का घर फिल्म का गाना आ रहा है, ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है ना।

पसंद हो, क्या तुम रजामंद हो? मैं तो रजामंद हूँ, बोलो।

0: डॉक्टर, हमने ये इतनी सारी बातें की तो लोगों को ये समझ में आ गया कि क्या तरीका है बालों की देखभाल का, लेकिन कई बार ये होता है कि बाल तो चले ही गए और एक और बहुत ज्यादा चलन चारों तरफ है कि कोई एक व्यक्ति अपना ट्रांसप्लांट करवा के आता है और एकदम उसका रूप बदल जाता है और सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये क्या किया, तो पता चला कि उसने ट्रांसप्लांट करवाए और बाल, मतलब लुक जो है वो पुराना वाला आ गया। ये तरीका क्या जनरलाइज्ड सब लोगों के लिए कारगर है या ये कुछ कुछ लोगों पर काम करता है?
1: सब लोगों पर कारगर के लिए हमें जानना जरूरी है कि उसका अंडरलाइन कॉज क्या है।
0: जी,
1: अगर अंडरलाइन कॉज है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या सिकेट्रिशियल एलोपेशिया बोलते हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। अगर हेयर फॉल का कारण अलग है और आप नहीं जानते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करने से मतलब नहीं है। अभी सेफ्टी के इश्यू में अगर बात करें तो बहुत बड़ी, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी हो रहा है आजकल कि बहुत सेंटर पर टेक्नीशियंस हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, टेक्नीशियंस एनेस्थीसिया देते हैं।
0: ओहो हो हो,
1: तो ये गलत बात हो जाती है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो भी, ये एक प्रोसीजर है जो लोकल में होती है। जैसे आपके यहाँ हम सूचर करते हैं, समझो आप एक सर्जन से सूचर करवाए या कंपाउंडर से सूचर करना पसंद करोगे?
0: सीधी सी बात
1: है। लोकल एनेस्थीसिया देते हो।

0: डॉक्टर को सब मालूम है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, रिएक्शन हुआ, कैसे मैनेज करना है, कितने अमाउंट में लोकल एनेस्थीसिया देना जरूरी है, अंडरलाइन पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, पेशेंट स्मोकर है या कोई कन्वर्शन की मेडिसिन ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ये सब कौन कर सकता है? डॉक्टर ही कर सकता है।
1: यस।
0: सो अगर इसमें उदाहरण मैं देना चाहूंगी तो अगर मैंने आपको एक चक्कू दिया जो आप मूर्तिकार है और एक चक्कू मैंने छोटे बच्चे को दिया, चक्कू चक्कू ही है पर छोटा बच्चे के हाथ में बहुत डेंजरस है और आप मूर्तिकार हैं, आप एक अच्छी मूर्ति बना सकते हैं तो आपके हाथ में बहुत सेफ है।
1: यस।
0: तो आपका सर आपके किसके हाथ में दे रहे हैं वो जानना जरूरी है,
1: बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
0: यस
1: बिल्कुल। ये हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस क्या है और ये कितना महंगा है?
0: ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है
1: जी,
0: क्योंकि ये वन टाइम एक ही दिन में होता है हेयर ट्रांसप्लांट। और प्रोसेस ये है कि आपके जो पीछे के बाल होते हैं, मतलब हमारे गर्दन के पीछे के साइड के ऊपर के जो बाल होते हैं, वो जल्दी नहीं जाते हैं, मतलब थिन नहीं जल्दी होते हैं, तो वहां से निकाल के रिपोजिशनिंग, बेसिकली वहां से बहुत घने होते, वहां से कुछ प्रमाण से 2000, 3000, 4000 हेयर फॉलिकल्स, मैं हेयर नहीं बोल रही हूँ, हेयर फॉलिकल्स, एक फॉलिकल में शायद दो भी हेयर हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो हम जितना एरिया होगा वो हिसाब से गंजे एरिया पर डालते हैं। अभी डालने का तरीका और लगाने का तरीका बताती हूँ। लोकल एनेस्थेशिया में वो रूट्स निकालने पड़ते हैं, तो रूट्स के साथ हेयर होते हैं, साथ में छोटे हेयर होते हैं क्योंकि ट्रिम करना पड़ता है
1: जी।
0: तो रूट्स को हम जैसे हम झाड़ की सैम्पलिंग करते हैं, वैसे रूट्स को निकाल के हम गंजेपन को जगह पर एक निक देते हैं, स्लिट देते हैं छोटी सी, और उसमें हम डिपॉजिट करते हैं ताकि बॉडी उसको रूट्स को लिए और हेयर उसमें से बाहर निकले, बट हेयर निकलने का टाइम रहता है 6 से 9 महीना
1: जी।
0: उसके बाद वहां से बाहर, और आप उसको कोम कर सकते हैं, शेप नॉर्मल, मतलब आपके ओरिजिनल
1: ओरिजिनल बालों की तरह हो जाते हैं,
0: बिल्कुल ओरिजिनल
1: बालों के, पौधे को यहाँ से हटा के
0: वहाँ लगा दिया
1: जी जी। और आपने कहा कि एक महंगी प्रोसेस है,
0: ये थोड़ी महंगी प्रोसेस होती है,
1: क्या ये फेल्योर भी हो सकती है?
0: फेल्योर रेट बहुत कम है
1: जी,
0: अगर अच्छे सर्जन ने किया तो फेल्योर रेट बहुत कम है
1: जी। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं,

0: डॉक्टर, इतनी सारी बातें हमने की इसमें ना, महिलाओं की बातें हमने की, पुरुषों की बातें की, अलग अलग उम्र के लोगों की बातें की, बातें टीनेज से शुरू हुई, बच्चों में बालों की जो समस्याएं इन दिनों में आप देख रही हैं वो क्या हैं और क्या उनके निदान और सावधानियां हैं?
1: आप अभी सही पकड़े हो बच्चों में बहुत कॉमन हो रहे हैं बालों की समस्या
0: जी।
1: उनके रीजन अलग है, जो बड़ों में है वो रीजन नहीं है बच्चों में। फंगल इन्फेक्शन है बच्चों में, बच्चों में एलोपेशिया एरियाटा कॉमन हो रहा है। ये दो चीजें बहुत सारे हमने कॉमन देखे, और जनरली पैंडेमिक के बाद एलोपेशिया एरियाटा बहुत कॉमन हो गया बच्चों में, जो अभी बड़ों में कम दिखाई देता है लेकिन बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। और इसमें छोटे छोटे ऐसे पैचेस, राउंड राउंड पैचेस, बहुत सारे राउंड राउंड पैचेस आते हैं। बच्चे स्कूल में जाना टालते हैं क्योंकि उनके स्कूलमेट्स उनको चिढ़ाते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो कैप लगाए हुआ कोई बच्चा दिखेगा तो एक तो फंगल इन्फेक्शन होगा उसको, या तो एलोपेशिया एरियाटा होगा।
0: ओके,
1: फंगल इन्फेक्शन के लिए कैप जो पहनते हैं, कोई कैप पहनता है, वो कैप शेयर नहीं करना चाहिए, उनकी कोम शेयर नहीं करना चाहिए, और तुरंत ट्रीटमेंट इसके लिए जरूरी है कि कुछ फंगल इन्फेक्शन जो स्काल्प में होते हैं उससे परमानेंट हेयर डैमेज हो जाते हैं। परमानेंट मतलब वहां कभी बाल नहीं आएंगे।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, तो उसके लिए वो केरियन कहा जाता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है। और इसकी ट्रीटमेंट ऐसे नहीं कि एक दिन दस दिन, इसकी ट्रीटमेंट कभी कभी चार हफ्ते से छह हफ्ते तक भी चल सकती है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है बालों के नीचे के हिस्से तक जाके बैठता है, तो उसको निकालने के लिए टाइम लगता है। और ये छह हफ्तों तक मेडिसिन लेनी होती है, तो उनके टॉवल्स अलग, कोम अलग, सोप अलग।
0: अच्छा, इतना सब करना पड़ता है।
1: इतना सब करना पड़ता है
0: जी।
1: एलोपेशिया एरियाटा, अभी एलोपेशिया एरियाटा की जो बात करते हैं, सब लोग घर का सुनते हैं, इन्फ्लुएंसर का सुनते हैं, कुछ अलग अलग अलग चीजें यूज करते हैं जो नॉन स्पेसिफिक है। इसमें टाइम बहुत निकल जाता है, कभी कभी बहुत साल भी निकल जाते हैं, और जब तक हमारे पास आते हैं उनके पांच छह साल हो जाते हैं। ये पांच छह साल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टाइम पर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी जो रीग्रोथ की पोटेंशियल है वो कम होती जाती है।
0: जी जी,
1: जितना आपने टाइम गंवाया है उतना आपका हेयर ग्रोथ की चांसेस कम होती जाती है। तो इस पर रिसर्च अभी लेटेस्ट जो डेवलप्ड हुए है उसमें बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो बालों की ये जो एलोपेशिया एरियाटा पर इफेक्टिव रीग्रोथ 100% पॉसिबल होने के चांसेस है।
0: ओके, तो एक उम्मीद बंधी है।
1: यस, बट ट्रीटमेंट टाइम पर लेना, इट्स अ टाइम बाउंड डिसीज मैं कहूंगी।
0: हमारी पूरी बातचीत में ये बात बार बार आती है कि समय पर सावधान होकर इलाज की तरफ बढ़ना है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: इतनी लंबी बातचीत का जो आखिरी मकाम है, मुझे लगता है कि यहां ये बात करनी जरूरी है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल में बालों की सामान्य रूप से देखभाल का क्या पैटर्न होना चाहिए। इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं कि बदलते हुए मौसमों में भी किस तरह से हम अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में बालों की देखभाल करते रहें, क्या आइडियल तरीका है?
1: आपका लाइफस्टाइल के साथ आपका शैम्पू कैसे यूज करते हो, आप कितने कड़ी धूप में जाते? बहुत बार कड़ी धूप में हम प्रोटेक्ट नहीं करते बालों को, तो कड़ी धूप में से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं बहुत कड़ी धूप में। तो नॉर्मल शैम्पू, अच्छा वाला शैम्पू जो हार्श नहीं हो, बहुत झाग वाला नहीं हो, रूटीनली आपको 2 से 3 बार हफ्ते में करना चाहिए। साथ में अगर ऑयल लगा के करे 1 घंटा पहले या रात को ऑयल लगा के करे तो बेहतर है। खाने में आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कीजिए, जो अभी आजकल आया ऑटोफेजी, ऑटोफेजी और 16-16 घंटे खाते नहीं है, उसका असर बालों पर गिरता है। तीसरी बात जो है कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो हमारे इसमें अमाइनो एसिड्स की थोड़ी कमतरता होती है, क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स में इतने अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, तो अमाइनो एसिड लेना जरूरी है। फिर आपका प्रोटीन इंटेक भी, बहुत बार वेजिटेरियन लोगों का प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट नहीं होता है, तो उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। ये नॉर्मल लोगों के लिए बोल रही हूं जिसके बाल नहीं झड़ रहे हैं
0: जी।
1: जब आपके बाल झड़ते हैं तो क्या कारण है, रीजन क्या है, वो एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो रीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग होती है।
0: बिल्कुल।
1: और सोडा,
0: नींद
1: मॉर्निंग से हो गया, अभी शाम का टाइम, शाम को हेवी खाना नहीं खाना है। आप कहेंगे मैं 11 बजे नॉनवेज खा के सोता हूँ, आपके इंटेस्टाइन सोने के टाइम पर आप उसको इंटेस्टाइन को जगा रहे हो
0: जी जी,
1: तो वो नहीं ठीक है। ओकेशनली ठीक है, पर हर बार डेली डेली होते रहेगा तो नहीं चलेगा। बाहर का आप बहुत सारा चीजें खाते हैं जो प्लास्टिक में आती रहती है, टेस्ट के लिए एक बार खा लिया ठीक है, पर आपने उसको आदत ही बना लिया तो फिर कैसे होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सारी चीजें, ये नॉर्मल

0: हेयर को मेंटेन करने के लिए है, बाकी तो फिर बीमारी के लिए तो हम लोग हैं।
1: तो मतलब ये है कि एक तो नॉर्मल जो हमारी एक लाइफस्टाइल को हमको पालन करना है और सावधानियां जरूरी तौर पर रखनी है। डॉक्टर रचिता धुरत, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी जानकारियां आपने बड़े विस्तार से दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।

खास तरह से संवारते हैं। बालों के स्वास्थ्य की किस तरह से देखभाल की जाए कि इनकी सुंदरता बनी रहे, तो आज के सेहतनामा में बालों की समस्या और देखभाल इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना। अगले सोमवार आज ही के दिन एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे हमारे विविध भारती के स्टूडियो में। आपके स्वास्थ्य को लेकर फिर होंगे एक नए विशेषज्ञ, तो सुनते रहिए सेहतनामा। कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: उसने कहा यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोले रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुख्य केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से शाम के 6:30 पर। राजस्थानी प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हम आपको जानकारी देंगे। हमारी आज की सभा में शेष रहे और कल की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। तो आइए श्रोताओं, पहले आपको सुनवाते हैं हमारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ पल आप सुनेंगे ठीक 5:05 पर युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से शाम के 5:30 पर।

शाम के 7 बजे आप सुनेंगे चौपाल कार्यक्रम। जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:45 पर।

रात्रि के 9 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि के 10 बजे से। रात्रि के 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। श्रोता थे हमारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रम। आप एक नजर डालते हमारी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों पर। हमारी वातावरण सभा की शुरुआत होगी रोजाना की तरह सुबह के 5:53 पर। सुबह के 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। चिंतन आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से 6:05 पर। वंदना आप सुनेंगे 6:10 पर।

हम जरिस मान गाना सुनेंगे 6:30 पर। कार्यक्रम खेती की बात आप सुनेंगे 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:50 पर। वातावरण आप सुनेंगे 7:20 पर।

विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे सुबह के 7:30 पर। समाचार प्रभात आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह के 8:00। कार्यक्रम कुंडली से आप सुनेंगे 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर।

सुबह के 9 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:10 पर। एनसीएटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 9:30 पर।

रेडियो केन्द्र से सुगम संगीत आप सुनेंगे सुबह के 11 बजे, फिल्म संगीत आप सुनेंगे 11:30 पर, दोपहर के 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केन्द्र से।

श्रोता, आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM बैंड 103.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का नई चैनल है। इस समय शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

कहानी सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त अंजलि का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे, हमें हमेशा हमारी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। भले ही हमारे जीवन में कितने ही कष्ट, कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से तनाव और चिंता का स्तर कम होता है, मन हमेशा शांत रहता है, आशावादी सोच से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। दोस्तों सकारात्मक सोच से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, जिससे कठिन परिस्थितियों में भी सही और सकारात्मक निर्णय लेना आसान हो जाता है। यह असफलता के बाद भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और जीवन को लंबे समय तक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। सकारात्मक स्वभाव दूसरों के साथ विश्वास, सहानुभूति और अच्छे संवाद को बढ़ावा देता है। दोस्तों हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में अच्छी आदतों को अपनाकर हम हमारी सोच को सकारात्मक रख सकते हैं। दोस्तों हमारे चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, उससे पहले सुनते हैं यह प्यारा सा गीत और संदेश।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लकी हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम नहीं लगाओ।
2: समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार में तुम्हारी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: दोस्तों अब हम बात करते हैं सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के बारे में। दोस्तों आज के युग में पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतों के कारण पर्यावरण की प्रकृति नष्ट हो रही है। जगह जगह घने वृक्ष काट कर बड़े बड़े बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। वाहनों का धुआं, मशीनों की आवाज, खराब रासायनिक जल की वजह से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण हमें अनेक बीमारियों का और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण, जिसमें परि का मतलब है जो हमारे चारों ओर है और आवरण का मतलब है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण, जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण और वृक्ष सभी से मिलकर बनता है और यह सभी चीजें हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखती है और उसे प्रभावित करती है। दोस्तों मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण में जल प्रदूषण, वृक्षों का कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है।

मानव की अच्छी आदतें जैसे वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण को रोकना, स्वच्छता रखना, यह सब पर्यावरण को प्रभावित करती है। मनुष्य की बुरी आदतें पानी दूषित करना, पानी को बर्बाद करना, वृक्षों की कटाई करना, यह सब पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती है, जिसके कारण बाद में मानव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पर्यावरण के जैविक संगठनों के सूक्ष्म जीवों से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, जबकि पर्यावरण के अजैविक संगठनों में निर्जीव तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे पर्वत, चट्टानें, नदी, हवा और जलवायु के तत्व। सामान्य अर्थ में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं से मिलकर बनी इकाई है। हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी पर आधारित है। दोस्तों, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं पर्यावरण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। दोस्तों, हम ये चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं यह प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखने के बारे में। दोस्तों, इच्छा और प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने की हमारी क्षमता को निर्धारित करते हैं। अंतर्निहित समस्याओं का प्रबंधन करना और आंतरिक रुचियों को बढ़ावा देना मदद कर सकता है। आपके द्वारा हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? कुछ लोगों के पास इस प्रश्न का उत्तर तुरंत होता है, लेकिन कईयों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। हमें हमारे जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य जीवन व्यर्थ है। लोग केवल दिन प्रतिदिन जीवन जीने और बैठकर देखने को जीवन जीना कहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े लक्ष्य को तो बना लेते हैं, पर जब उसे पूरा करने का समय आता है तो वह पीछे हट जाते हैं। वह लक्ष्य को पूरा करने में जो कठिनाइयां आती है उससे घबराकर पीछे हट जाते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें रुचि, जागरूकता, दृढ़ता और कई ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। लक्ष्य ऐसी आकांक्षाएं हैं जिन्हें एक निश्चित समय सीमा में पूरा करने की प्रतिबद्धता की जाती है। लक्ष्य में विशिष्ट उद्देश्य, समयबद्ध और संकल्प जैसे तत्वों का प्रमुख रूप से समावेश होता है। यह प्रत्येक व्यक्ति समुदाय की अपनी अभिरुचि के अनुसार होते हैं। इनमें त्याग और रणनीति तत्व भी महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी प्रकार का लक्ष्य बिना त्याग एवं रणनीति के प्राप्त करना असंभव है। हमें अपने जीवन के लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। दोस्तों, बार बार उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही उस कोशिश में आपको असफलता ही क्यों न मिले। निरंतर प्रयास करने से एक न एक दिन आप सफलता अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। लक्ष्य तय करने से पहले हमें जीवन जीने को सरल बनाना चाहिए और अपनी रुचि के अनुसार जीवन जीने में सहायता मिलती है।

दोस्तों ऐसी बातें तो बहुत सारी करनी थी लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। इसी के साथ इजाजत दीजिए आपकी दोस्त अंजलि को कार्यक्रम युवाणी समाप्त करने की। नमस्कार।

ये वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माहिया चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुख्य केंद्र से।

पुरानी नए पुरानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने।

तरानी में पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे समाचारों के बाद। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन

0: 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को अधिक मजबूत करने और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु नीति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार का ध्यान वेफर फैब्रिकेशन से लेकर चिप उत्पादन तक देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। ईएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियन कप 2027 के क्वालिफायर में भारतीय अंडर 20 पुरुष टीम और सीरिया के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीम गोल रहित बराबरी पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान। कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
1: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेलिनॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:30 को है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से पहले हिंदी और फिर राजस्थानी प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में GDP वृद्धि दर 7.8%। राज्य में 309 नगर निकायों में होने वाले चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम पूरा। 21,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी के नए तरीके बॉस स्कैम को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील की। और प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां फिलहाल थमी। 19 जिलों

0: तक सामान्य से कम पानी बरसा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी में 7.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% रही थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने विकास की रफ्तार बरकरार रख उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आज चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जून तक के लिए जीडीपी के तिमाही अनुमान जारी किए। ये आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य अनुमानों से काफी बेहतर रहे हैं। मजबूत घरेलू खपत, सरकारी पूंजीगत व्यय, मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र और रियल एस्टेट ने इस बढ़ोतरी को बनाए रखने में मदद की है। प्रदेश में 309 नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आज पूरी हुई। अंतिम दिन तेज सरगर्मियां रहीं। नामांकन केंद्रों पर दिन भर गहमा गहमी बनी रही। विभिन्न नगर निकायों में बड़ी संख्या में प्रत्याशी और उनके समर्थक नामांकन दाखिल करने पहुंचे। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ नामांकन पत्र भरने का सिलसिला दोपहर 3 बजे तक चला। कुछ स्थानों पर प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए नाम निर्देशन पत्र पेश करने पहुंचे। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने कुछ वार्डों में उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की और सीधे अपने प्रत्याशियों को सिंबल सौंपे। कुछ स्थानों पर टिकट वितरण को लेकर दावेदारों में नाराजगी और विरोध भी देखा गया। विभिन्न पार्टियों के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों में भी नामांकन दाखिल करने को लेकर उत्साह रहा। 10,245 वार्डों के लिए करीब 21,000 से अधिक प्रत्याशियों ने लगभग 26,500 से ज्यादा नामांकन भरे हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। वहीं 3 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों की तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। निकाय चुनावों के लिए 2 चरणों में 9 और 11 सितंबर को मतदान होगा। 14 सितंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इस बीच निकाय चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान की सक्रियता बनी हुई है। विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए आमजन को मतदान के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही बिना किसी प्रलोभन के निष्पक्ष मतदान करने की अपील की जा रही है। रैली, रंगोली और विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाने का संदेश दिया जा रहा है। राजस्थान पुलिस ने लोगों से साइबर ठगी के नए तरीके बॉस स्कैम से सावधान रहने की अपील की है। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि इसमें अपराधी सोशल मीडिया के जरिए लोगों की जानकारी जुटाते हैं और विभिन्न संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी बनकर उनके कर्मचारियों से ठगी करने का प्रयास करते हैं। पुलिस ने किसी भी वित्तीय लेनदेन और डेटा संबंधी पुष्टि के लिए मल्टी लेवल अप्रूवल सिस्टम लागू करने की अपील की है। इस बीच डीग में ऑपरेशन काउंटडाउन के तहत एक संगठित साइबर अपराध सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस के सहयोग से हुई इस कार्रवाई में दिल्ली के साइबर ठगों का खुलासा किया गया है। डीग पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया कि आरोपी लोगों को बैंक क्रेडिट कार्ड दिलाने का झांसा देकर ठगी को अंजाम दे रहे थे।
1: जो आईडीज है एक्सिस बैंक के एम्प्लॉय को वो भेजकर और फर्जी कॉल करकर लोगों के साथ जो है वो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के संबंध में फ्रॉड किया जा रहा है। इस तरह की जो शिकायत साइबर थाने में दर्ज थी। अनुसंधान आगे बढ़ा तो ये पता चला कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से दिल्ली में उत्तम नगर थाना इलाके में एक 3 मंजिल जो है वो बिल्डिंग है उसमें इसी तरह से संगठित होकर साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। पुलिस में 64 जो है वो गिरफ्तार किए गए और 2 जो है माइनर इनको बाद में रेस्क्यू करके जो है वो सीडब्ल्यूसी भेज दिया गया और साथ में इसमें शामिल जो मेन इनका कोर ग्रुप है उसके 8 मेंबर को जो है बाद में रिमांड पे लाया गया।
0: प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों और गोदामों पर छापेमारी कर खाने पीने की चीजों के नमूने लिए जा रहे हैं। खराब और अवधि पार सामग्री मिलने पर उसे नष्ट भी करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीकानेर पहुंचे जयपुर के केंद्रीय दल ने बीछवाल

0: क्षेत्र में एक गोदाम को सीज किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इस गोदाम से मिठाइयों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। सिरोही जिले में रेवदर के पास आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अनादरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार दुर्घटना कांडला हाईवे पर होलागरा के पास कार और मोटरसाइकिल की टक्कर से हुई। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे। 2 दिन की इस यात्रा में श्री मोदी ने आज राष्ट्रपति सादोर जापरोफ के साथ बैठक की। श्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से भी मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। पश्चिम एशिया के हालिय घटनाक्रम को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा, अर्थव्यवस्था और तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर वार्ता की। श्री मोदी ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री के बिश्केक पहुंचने पर भारतीय समुदाय की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की सटीक मात्रा अनिवार्य रूप से बताने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अधिवक्ता नरेंद्र गोस्वामी की ओर से दायर की गई इस याचिका में एथेनॉल मिश्रित ईंधन के वाहनों के इस्तेमाल की अनुकूलता के बारे में अधिक पारदर्शिता के निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें अपनी शिकायत लेकर संबंधित उच्च न्यायालय जाने की छूट दी। याचिका में मांग की गई थी कि हर पेट्रोल पंप के हर नोजल पर एथेनॉल का प्रतिशत अंकित होना चाहिए, साथ ही पेट्रोल पंप से मिली रसीद पर भी एथेनॉल का प्रतिशत लिखा जाना चाहिए। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि सरकार E20 पेट्रोल की उपयुक्तता को लेकर वाहनवार आधिकारिक सूची बनाए। इसके अलावा जो पुराने वाहन E20 उपयुक्त नहीं हैं, उनके लिए बदलाव की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे उन्हें कम इथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध कराया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ ही लाखों लोगों को आजीविका भी देता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
1: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप करुण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि फैशन उद्योग में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए।

0: प्रदेश में मॉनसूनी गतिविधियां फिलहाल थमी हुई हैं और 3 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। हालांकि उदयपुर संभाग सहित कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 7 सितंबर के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में गरज के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान कोटा संभाग और आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं मध्यम से तेज और भारी बरसात की भी संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में अगले कुछ दिन मॉनसून की परिस्थितियां कमजोर रहने के आसार हैं। बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। जल संसाधन विभाग के अनुसार प्रदेश में इस सीजन में अब तक करीब 18% कम बारिश हुई है। 362 मिलीमीटर सामान्य बरसात के मुकाबले अब तक 295 मिलीमीटर पानी बरसा है। राजधानी जयपुर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर और उदयपुर सहित 19 जिले कम बारिश वाले स्थानों में शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8%। राज्य में 309 नगर निकायों में होने वाले चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम पूरा। 21,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी के नए तरीके बॉस स्कैम को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील की। और प्रदेश में मॉनसूनी गतिविधियां फिलहाल थमी, 19 जिलों में अब तक सामान्य से कम पानी बरसा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है नीलिमा दादीच ने। अजमेर जिले में बीते दिनों शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल से जुड़े कार्यक्रमों के साथ ही धार्मिक और राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन हुआ। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हलचल रही। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। बारिश के मौसम में स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए गतिविधियां संचालित की। जिले में नगरीय निकायों के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन होने के चलते आज नामांकन स्थलों पर गहमा गहमी का माहौल रहा। इससे पहले प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों के कार्यालयों में टिकट लेने की लोगों में होड़ रही। प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन आज सुबह तक भी जारी था। चुनाव कार्यक्रम के तहत नामांकन पत्रों की जांच 1 सितंबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 3 सितंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 9 सितंबर को और दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 14 सितंबर को होगी। इस बीच मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए जिले में स्वीप गतिविधियां जारी हैं। विभिन्न नवाचारों के जरिए लोगों में मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता लाई जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र की यदि बात करें तो राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर को अंगदान जागरूकता, ब्रेन स्टेम डेथ की पहचान, अंगदान समन्वय और अंग प्रत्यारोपण सेवाओं में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ये सम्मान जयपुर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में प्रदान किया गया। जिले में पिछले दिनों मौसम का मिला जुला मिजाज देखने को मिला। कभी बारिश तो कभी लंबे अंतराल के चलते उमस और गर्मी का असर रहा। इस बीच मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग सजग रहा। विभाग ने स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान चलाया। शहरी क्षेत्र में 1,070 आशा सहयोगिनियों और स्वास्थ्य अधिकारियों ने घर घर जाकर कूलर, पानी की टंकियों और जमा पानी की जांच की। मच्छर और लार्वा को नष्ट करने की कार्रवाई की गई और बुखार, डेंगू तथा मलेरिया के संभावित मरीजों की पहचान कर उपचार की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम हुए। केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी में माय भारत नेशनल स्पोर्ट्स डे युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में युवाओं को खेल और फिटनेस के प्रति जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से विद्यार्थियों को संबोधित किया और उनसे संवाद किया।

0: प्रधानमंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रहने और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का संदेश दिया। इसी क्रम में किक द ड्रग्स पिक द स्पोर्ट्स थीम पर निजी कॉलेज में कार्यक्रम रखा गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी का सम्मान भविष्य को प्रोत्साहन थीम के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन, नगर निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों की ओर से तिरंगा रैली, प्रभात फेरी और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह पुलिस लाइन मैदान में हुआ। इसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रही। उन्होंने झंडारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 87 लोगों को सम्मानित किया। समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी और आमजन शामिल हुए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली और तकनीकी नवाचारों को देखने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉ एके वर्मा ने अजमेर स्थित परिसर का दौरा किया। उन्होंने आयोग के विभिन्न अनुभागों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ऑन स्क्रीन मार्किंग और स्कैनिंग प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। अब बात धार्मिक आयोजनों की। सावन माह के दौरान तीर्थराज पुष्कर में श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर से जल लेकर विभिन्न शिवालयों में अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। जिले के अन्य शिव मंदिरों में भी सावन के दौरान धार्मिक कार्यक्रम रखे गए। सावन के चारों सोमवारों पर जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने विशेष पूजन किया। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। दुनिया में अनिश्चितता रे बावजूद भारत री माली व्यवस्था रो उम्मीद बेहतर प्रदर्शन। चालू माली साल रा पहला 3 महीना में जीडीपी री बढ़ोतरी रेट 7.8%। कजरा 309 नगर निकाय में भी बनवाला चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रो काम पूरो थियो। 21,000 उम्मीदवार पर्चा भरिया। राजस्थान पुलिस साइबर ठगी रा नुआ तरीका बॉस स्कैम सावचेत रहवन री अरज कीनी। प्रदेश में चौमासारी बिरखा मंदी। 19 जिला में हाल ताई सामान्य कम पानी बरसो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। चालू माली साल री पहली तिमाही माए देश री जीडीपी माए 7.8% री बढ़ोतरी फी है। लारला माली साल री इनी मियाद माए आ रेट 6.9% ही। दुनिया री माली चुनौतियां रे बावजूद भारत री माली व्यवस्था माए विकास री रफ्तार बरकरार राखर उम्मीद बेहतर रही। चालू माली साल री पहली तिमाही माए नॉमिनल जीडीपी माए 10.3% री बढ़ोतरी भी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय आज चालू माली साल में अप्रैल और जून महीना ताई सारू जीडीपी रा तिमाही अनुमान जारी कीना। प्रदेश में आवता महीना भिवन वाला 309 नगर निकाय रा चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रो काम आज पूरो हो गयो। नाम पाना दाखिल करण रा आखिरी दिन आज नामांकन केंद्र मत है। मोटी तादाद माए उम्मीदवार वाना हिमायतियां सागे पर्चा दाखिल करण सारू पुग्या। सवारे 10 बजे सारू भी नाम पाना दाखिल करण रो सिलसिलो दोपहर पाछे 3 बजे ताई चल्यो। कठे कठे उम्मीदवार आप आपरा समर्थका सागे ढोल नगाड़ा बजाता थका नाम निर्देशन पत्र पेश करण सारू पुग्या। भाजपा और कांग्रेस दोनों खास पार्टियां कुछ वार्डा माए उम्मीदवारा ने लिस्ट जारी नी कीनी और सीधा ही उम्मीदवारा ने चुनाव चिन्ह सौंपिया। कठे कठे टिकट रा बंटवारा न लेर दावेदारा माए नाराजगी नजर आई। न्यारी न्यारी पार्टियां रा उम्मीदवारा सागे निर्दलीय उम्मीदवारा माए नाम पाना दाखिल करण रो माव रहो। 10,245 वार्डा सारू 21,000 उम्मीदवार 26,000 पर्चा दाखिल कीना। नाम पाना री काल जांच करी जावेला। नाम 3 सितंबर ताई पाछा लिया जा सकेला। निकाय चुनाव सारू 9 और 11

0: सितंबर न वोट पड़ेला वोटानी गिनती 14 सितंबर न करी जावेला ई बीच निकाय चुनाव में जनतारी भागीदारी बधावन सारू भांत भांत रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। वोट देवन वालाओं रैली रंगोली और न्यारा न्यारा सम्मेलन रे जरिए लोकतंत्र रा महापर्व में भागीदारी निभावन री अपील करन सा गई बिना लोभ करिया सोच समझ हर वोट देवन री अरज करी जा रही है। राजस्थान पुलिस जनताओं साइबर ठगी रा नुआ तरीका बॉस स्कैम नु सावचेत रहन सारू चेतायो है। पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह बतायो का इन तरीका माए अपराधी सोशल मीडिया रे जरिए लोगों ने जानकारी हासिल कर और न्यारा न्यारा संस्थान रा आला अहंकार बन और ठगी करन री कोशिश करे है। पुलिस किनी माली लेन देन और डेटा संबंधी पुष्टि सारू मल्टी लेवल अप्रूवल सिस्टम लागू करन री अपील कीनी है। इन बीच डीग माए ऑपरेशन काउंट डाउन रा तहत दिल्ली पुलिस री मदद एक संगठित साइबर अपराध सिंडिकेट रो पर्दाफाश करी चियो है। डीगरा एसपी कामले शरण गोपीनाथ बतायो का आरोपित लोगों ने बैंक रा क्रेडिट कार्ड दिरावन रो झांसो देर ठगी कर रहा है।
1: जो आईडीज है एक्सिस बैंक के एम्प्लॉय को वो भेजकर और फर्जी कॉल कर लोगों के साथ जो है वो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के संबंध में फ्रॉड किया जा रहा है। इस तरह की जो शिकायत साइबर थाने में दर्ज थी। अनुसंधान आगे बढ़ा तो ये पता चला कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से दिल्ली में उत्तम नगर थाना इलाके में एक 3 मंजिल जो है वो बिल्डिंग है उसमें इसी तरह से संगठित होकर साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। कुल इसमें 64 जो है गिरफ्तार किए गए और 2 जो है माइनर इनको बाद में रेस्क्यू करके जो है सीडब्ल्यूसी भेज दिया गया और साथ में इसमें शामिल जो मेन इनका कोर ग्रुप है उसके 8 मेंबर को जो है बाद में रिमांड पे लाया गया।
0: प्रदेश में खान पीन री चीजा में मिलावटखोरी रे खिलाफ लगातार कार्रवाई करी जा रही है। इन सारू न्यारा न्यारा प्रतिष्ठान और गोदामा माथा छापा मार और खान पीन री चीजा रा नमूना लिया जा रहा है। खराब और मियाद पार सामग्री मिलन पर वाना खत्म कराई जा रही है। जयपुर रो केंद्रीय दल बीकानेर रा बीछवाल हल्का माए एक गोदाम ने सीज कर तीनो। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बतायो कि ई गोदाम मिठाइयां रा नमूना लेर जांच सारू प्रयोगशाला माए भेजी गया है। सिरोही जिला रा रेवदर हल्का माए कांडला हाईवे माथे होला ग्राहक ने कार और मोटरसाइकिल री टक्कर रे कारण 3 जना री मौत वेकी और 2 जना घना जख्मी वेक्या। जख्मी लोगों ने अनादरा रा अस्पताल में भर्ती कराई चिया है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल हुए वंसारू आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पुग्या। 2 दिन रा ई दौरा राते श्री मोदी आज वठेरा राष्ट्रपति सादोर जापारोफ सागर मीटिंग कीनी। श्री मोदी ईरान रा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन सागई मुलाकात कीनी। आतुनी एशिया माए लाडला दिना उपजा हालात रा बारा माए प्रधानमंत्री कहो का सगला मुद्दा ने बातचीत और कूटनीति रे जरिए सुलझाया जावना चाहिए। श्री मोदी ई हल्का माए शांति और थरता ते करण सारू लगातार कोशिशां दी जरूरत मथे जोर तीनो। इनो पहली प्रधानमंत्री मोदी बिश्केक माए आर्मीनिया रा प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान सागे मुलाकात कर और हिफाजत माली व्यवस्था और तकनीक समेत न्यारा न्यारा हल्का माए मदद रे बारा माए चर्चा कीनी। श्री मोदी बिश्केक माए महात्मा गांधी स्मारक चार वठे फूल चढ़ार बापू ने श्रद्धा भाव सागे याद कीना। प्रधानमंत्री रे बिश्केक पुगण पर वठे बछोड़ा भारत रा लोगों ने ओर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां सागे मानो स्वागत करी जियो। प्रधानमंत्री मोदी रो काल बिश्केक माए शंघाई सहयोग संगठन रा 26वां शिखर सम्मेलन न संबोधित करन रो कार्यक्रम है। सुप्रीम कोर्ट देश माए न्यारा न्यारा पेट्रोल पंप मथे मिलन वाला पेट्रोल माए मौजूद एथेनॉल री सटीक मात्रा बतावण जरूरी करण री मांग करण वाली अर्जी मथे सुनवाई नट गयो है। एक वकील कानून दायर अर्जी माए एथेनॉल भेड़ और दिया जा रहा पेट्रोल रे गाड़ियां रे अनुकूल भेवन रे बारा माए 32 साफ कोई रा हुक्म देवन री मांग करी जी ही। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले रिपीट अर्जी माथे सुनवाई नटता थका वकील ने शिकायत संबंधित हाईकोर्ट माए दायर करण री छूट दीनी। अर्जी माए पेट्रोल पंप रा हर नोजल माथे और पेट्रोल पंप मिली रसीद माथे एथेनॉल रो प्रतिशत मानदंड री अरज करी ची ही। अर्जी माए सरकार में E20 पेट्रोल

0: इस प्रयास में आप प्रण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
1: प्रदेश में आए चौमासारी बिरखा मंदी पड़वा सागे अब 3 सितंबर बारिश रो नुआ दौर शुरू फेमन रहा आसार है। मौसम विभाग ने मुजब 4 और 7 सितंबर बीच भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में गरज सागे बिरखा फेमन की संभावना है। इन दौरान कोटा संभाग और आरासार हल्का माए कठे कठे जोरदार मे बरस बारा आसार है। दूजिकानी राज्य रा आतुनी हल्का माए आवता कुछ और दिन बिरखा मंदी रहमन री संभावना है। प्रदेश रा आतुनी हल्का रा बीकानेर संभाग और उगनी राजस्थान रा शेखावाटी हल्का माए कठे कठे बिरखा भय सके है। जल संसाधन विभाग रे मुजब राज्य माए चौमासारी ई रुत्र दौरान हाल ताई सामान्य करीब 18% कम में बरसियो है। 362 मिलीमीटर सामान्य बरसात रे मुकाबले हाल ताई 295 मिलीमीटर बिरखा भी है। राजधानी जयपुर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और उदयपुर समेत 19 जिला में कम बारिश हुई है। सिर्फ डीग और फलौदी में सामान्य बत्तों में बरसियो है, जबकि अजमेर, अलवर, भरतपुर, चूरू, बाड़मेर और बीकानेर समेत 20 जिला में हाल ताई सामान्य बरसात हुई है। प्रदेश में आज कजली तीज रो त्योहार मनायो जा रियो है। ये मौके महिलाओं व्रत राख और पूजा अर्चना कर रही है। सिरोही समेत न्यारा न्यारा जिला रा गांव आई हल्का माए खास उमाव नजर आ रियो है। अजमेर माई सातुड़ी तीज रे मौके सुहागिना 16 श्रृंगार कर और तीज माथेरी पूजा करिया पाछे सातु खार व्रत खोल लेला। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। दुनिया में अनिश्चितता रे बावजूद भारत री माली व्यवस्था रो उम्मीद बेहतर प्रदर्शन। चालू माली साल रा पहला 3 महीना में GDP री बढ़ोतरी रेट 7.8%। कजरा 309 नगर निकाय में भेवन वाला चुनाव सारो पर्चा दाखिल करन रो काम पूरो थियो। 21,000 नु बत्ता उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। राजस्थान पुलिस साइबर ठगीरा नुआ तरीका बॉस स्कैम सावचेत रहमन डी आरएच कीनी। प्रदेश में चौमासारी बिखरा मंदी 19 जिला में हाल ताई

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से राजस्थान प्रादेशिक समाचार FM बैंड 101.3 MHz पर। यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय शाम के 7 बजे ही प्रस्तुत है चौपाल कार्यक्रम।

चौपाल कार्यक्रम हम द्वारा सब किसान भाइयों ने सोरा अडियोवाल जी भाई ने राम राम किसान भाइयों देखो सोरा पूरा उपजो चुको है सोरा ऊपर हाथ ना वेरना अपने भेगा थी गए हम किसान भाइयों अवरे आना समय में अपने जो हुई फसलों की देखभाल करी गए हम ने स्थानीय जलवायु फसल ने अनुसार अपने ने अवरेजे विशेष करीने काम किसान भाई करी जा सका है इन्होंने भी देखो मुख्य कृषि कार्य जो है इन्होंने कीट नियंत्रण विशेष करीने सली जो चुकू है इन्होंने गंधी बग ने तना छेदक कीटों की निगरानी करें इन्हें बाद इन्होंने जैविक उपाय थे कि नीम तेल नो छिड़काव भी करें इन्हें हटाते खरपतवार प्रबंधन नो काम किसान भाइयों को भी पड़ेगा फसल में अवांछित घास उगी गई है जिन्हें आपने जरूरत नहीं इन्हें आप निकाली दो तो पसे पौधे ने पर्याप्त पोषण भी मिली सके खाद में प्रबंधन किसान भाइयों को रिश रहा हो आप धान की फसल में यूरिया की अंतिम खुराक भी अवरे आना समय में आल भी पड़ेगा।

0: बचाव भी फसल में करना पड़ेगा, ब्लास्ट या पसंद फंगस देखवाना स्थिति में अनुशंसित फंगी सहित छिड़काव किसान भाइयों ने करव पड़ेगा। किसान भाइयों देखो सोरा ऊपर अपने आगे एक बात बीजी करी रहा हूं, धान की फसल में उर्वरक प्रबंधन भी अपने समय पर करव पड़ेगा। किसान भाइयों धान की फसल में उच्च पैदावार हारू अपने भाइयों ने संतुलित उर्वरक प्रबंधन घणो जरूरी है, जेमा मुख्य रूप थकी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश ने जिंक न सही मात्रा में उपयोग करव जरूरी है। किसान भाइयों आना में आवश्यक मुख्य पोषक तत्व ने एवं प्रबंधन सही समय पर जरूरी पड़े है, जेम के सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करें तो आ पौधों की वृद्धि हरियाली में कल्ला फूटवा में मदद करे है। आने किसान भाइयों एक हाथे फसल में नए आली में बे या त्रण वगत आपने अलवू जुए, एक है फास्फोरस डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट, आज इनके जड़ों में शुरुआती विकास में मजबूती हारू खूब आवश्यक है। आने पूरी मात्रा रोपाई या बुआई ना समय में खेतर में तैयारी ना वक्त अपने ऊपर ना खूब जरूरी है। तो किसान भाइयों पोटेशियम जिन्हें अपने म्यूरिएट या पोटाश की बात करो तो आप पौधों में मजबूती आ रही रोग या सूखा थावानी स्थिति में फसल में बसावे है। आने आधी मात्रा रोपाई में पहले में शेष मात्रा बाद में अवस्थाओं में आपने खड़ी फसल में आली सका। किसान भाइयों जिंक सल्फेट इन्हें अगर बात करो तो धान्य फसल में आप जानी रहो कि जिंक की कमी तो आम बात है, जे धान्य फसल में कम थाए से जिनके पत्तियों में पीलापन देखा आपने या पीलापन पड़वानी स्थिति में या कमी देखावा ऊपर अपने 20 थकी 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब थकी जिंक सल्फेट अलगू हुए। किसान भाइयों उर्वरक आलवाना भी सही चरण ध्यान में रखना पड़ेगा आपने, क्योंकि देखो पहली टॉप प्रेसिंग आपने इन बाद कल्ला निकटी जरा बीजा दौरना जे गाब बनवाने स्थिति में जिन्हें आपने गणितीय भाषा में 50 थे कि 55 डाला बाद भी अपने उर्वरक में प्रबंधन करी सका। ध्यान रखें कि रासायनिक खाद हमेशा खेतर में पानी हो नमी बनी सकी हो इन स्थिति में समान रूप की अपने ना कूद हुए। तो किसान भाई आत थी कि आप धान्य फसल में उर्वरक प्रबंधन केवी रीत थकी करव जुए। किसान भाई देखो सौरव पूरे बजटों को ने आज भी अपने रोज किसान भाई ने एक एक बात हमारा इन्होंने अनुभव दे है इस सौरा ऊपर सबने हाथे अपने साझा करा हूं तो एना भाई ने बात भी हामेगा पर एना पहले आज मारो विचार थी गये कि सौरा ऊपर बढ़िया सु भजन हामला भजन हामी ने अपने एना किसान भाई ने जो बात है ये भी अपने सौरा ऊपर हामेगा पर एना पहले आप भजन बढ़िया सु हामला।
1: मंगल मानव तन मिलान सब

0: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: राम राम।
3: राम राम।
2: आपनु नाम?
3: दीपक।
2: दीपक जी क्या काम ना हो?
3: बासला।
2: दीपक जी बासला, देखो तुम तो खेती भी करी रहो ने तुम्हारे बारे में हम जो भी खूब है। दीपक जी आपने आज सोरा ऊपर बात करी रहा है कि किसान भाई जे खेती करे हैं एना में नवी तकनीक ने माध्यम थी खेती करवानो समय से आवी पड़ियो है ने एना में भी आ उत्पादकता बढ़ावा बल्ले कृषि ना जे मूल मंत्र है एना मंत्र ने किसान भाई केवी रीते याद रखे ताकि ई आपणे उत्पादन बढ़ावा में एना ने सहयोग ने सहायता करे। तो दीपक जी आज सप्ते की पहले ई बताड़ो कि आ किसान भाई ने उत्पादकता बढ़ावाना पहला जे मूल मंत्र है ई
3: देखिए खेती उत्पादक बढ़ाने के लिए जो मूल मंत्र है मूल चीज है अच्छी और प्रमाणिकता गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना।
2: अच्छा अच्छा।
3: और अपने क्षेत्र की मिट्टी के हिसाब से किस्म का चुनाव करना सबसे जरूरी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, तो ना आवे किसान भाई ने अनभिज्ञ है तो इन्हें खबर हटते पड़ेगा कि आपने मिट्टी एना जलवायु ने हिसाबे बनी थकी है या पसे आपने मिट्टी की जांच कराबा जो नियम चाली रू है तो किसान

0: किसान भाई ने मिट्टी की जांच किम जरूरी है ने किम कराबी पड़े।
1: मिट्टी की जांच से देखिए उसमें मौजूद जितने भी पोषक तत्व हैं या उसमें जो कमी है उसकी जानकारी मिलती है। इसके आधार पर संतुलन खाद का उर्वरक का प्रयोग किया जाना चाहिए
0: जी।
1: उसी के आधार पर पौधा वृद्धि कर सकता है।
0: दीपक जी देखो किसान भाई हमारा एक तो सिंचाई में विश्वास करे ना, हमेशा सिंचाई आली भी जा सका है फसल में, पर सिंचाई ने भी कोई विशेष बातें भी हैं कि आपने कया मापदंड ऊपर सिंचाई आलवी है या कई बातों में किसान भाई हमारे ध्यान रखें सिंचाई में, तो एना जो मूल मंत्र बनाया था ये भी बता दो।
1: फसल को उसकी जरूरत के हिसाब से अनुसार समय और उचित मात्रा में सिंचाई करना, पानी देना आवश्यक है
0: जी।
1: उसमें भी ड्रिप या स्प्रिंकल जैसी आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं मार्केट में, उससे पानी की बचत भी होती है, पौधे को जितनी आवश्यकता है उतना जल उसको मिल जाता है।
0: बिल्कुल आप जो बता रही रहो नवी तकनीक के माध्यम से की सिंचाई करवानी थे, बूंद बूंद सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है, इना माध्यम से की अगर किसान भाई सिंचाई फसल में आलेंगा तो निश्चित इन्होंने फसल भी अच्छी थागा ने दीपक जी पानी ने बचाव भी करी सके आने तक। देखो आजकल खाद ने उर्वरक भी किसान भाई से नाके हैं, पर इना में किसान भाई ने केटलो खाद नाखवू है, कई वेरा नाखवू है, कई मात्रा में नाखवू है, ये थोड़ी सी जानकारी किसान भाई ने अभाव है, तो एना बदले दीपक जी आप खेती करी रहो तो आप ये बता दो क्या खाद ने उर्वरक जो नाखे इनो सही उपयोग किस रीते करी सके।
1: मिट्टी की परीक्षण करने के बाद उसकी जो आवश्यकता है उसको संतुलित करने के लिए जितने खाद और उर्वरक की आवश्यक है, जितने आवश्यक तत्व हैं उन्हें डाल करके जैविक खाद और गोबर की खाद का भी उपयोग मिट्टी के सेहत के लिए बहुत अच्छा है।
0: अच्छा,
1: उसका प्रयोग करें तो वो मिट्टी और पौधे दोनों के लिए काफी लाभदायक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी आप तो बहुत अच्छी जानकारी आप थोड़ा ऊपर आ ली रहो ने, अपनी बात हमारी ने किसान भाई भी लाभान्वित थी सके। पर दीपक भाई आज ये बताओ कि आज देखो किसान भाई ने जो फसल करे हैं इना में अक्सर देखवा में आवे कि इन्होंने कीट है, रोग हैं, खरपतवार हैं, एवं जो फसल में लगी जाए नहीं ये किसान भाई ने हमेशा नुकसान करिया ले ने उपज बढ़ाबा में भी आनो के न के आपने एक नुकसान उठावो पड़े, तो किसान भाई ने हमें आज कीट ने रोग तो इनो बचाव करवा बल्ले किसान भाई ने हो करू पड़ेगा।
1: इसके लिए खेत की नियमित निगरानी करना आवश्यक है
0: जी जी।
1: रोग या कीट की शुरुआत को पहले ही दौर में पहचानना आवश्यक है और आवश्यकता पड़ने पर जितनी उचित दवाई का इस्तेमाल हमें जरूरत है उतना करना, उसके ऊपर एकीकृत कर और कीट प्रबंधन का भी इस्तेमाल बेहतर तरीके से करना जरूरी है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा एक किसान भाई ने खरपतवार नियंत्रण बल्ले भी हमेशा किसान भाई लाजा थका रहे हैं, पर आप ये बता रहे हो कि खरपतवार नियंत्रण क्यों जरूरी है।
1: खरपतवार फसल के साथ पानी, पोषक तत्व और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं
0: जी जी।
1: तो उस समय पर जो निराई गुड़ाई कर उसकी उचित खरपतवार नियंत्रण करने के फसल के अंदर वृद्धि हो सकती है, बड़ी आसानी से पौधा उस आसानी से वृद्धि कर सकेगा।
0: बिल्कुल दीपक जी देखो आज आप मूल मंत्र बता ही रहो इना में आप फसल चक्र अपना अपनाना भी का फायदा है कि फसल
1: फसल चक्र अपनाने के काफी फायदे हैं। इसमें अलग अलग फसलों को बदल बदल कर उगाने से मिट्टी की जो उर्वरकता है उसकी जो ताकत है वो बनी रहती है और इसमें कीट और रोगों का भी प्रकोप कम होता है। एक ही फसल लगातार करने से इनका कीटों का प्रकोप ज्यादा हो जाता है, मिट्टी के अंदर भी कमी पोषक तत्व की आती है और इसलिए इस उत्पादन को भी अगर हम बदल बदल कर फसलें करें तो उत्पादन में भी काफी वृद्धि हो सकती है।
0: बिल्कुल दीपक जी कितनी बढ़िया जानकारी आप थोड़ा ऊपर आ ली रहो ने, अंतिम में जाते जाते तुम्हारे की ये बात पूछूंगा कि उत्पादकता बढ़ावा में किसान ने जो आधुनिक तकनीक है ई केम अपना भी जरूरी है।
1: आधुनिक कृषि यंत्र, मौसम की जानकारी, उन्नत बीज, वैज्ञानिक खेती और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से लागत को कम करके उत्पादक और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाई जा सकती है
0: जी जी। इस देखो दीपक जी बहुत बढ़िया जानकारी आ उत्पादकता ना कुछ मूल मंत्र से आपे सौरा ऊपर आवी ने किसान भाई ने हमें बताया है ने निश्चित मारे हिसाब से कि आपनी बात हमरी ने किसान भाई लाभान्वित थी सके। પણ સાથે સાથે કિસાન ભાઈઓને

0: आप हौसला वो चाहो कि खेती नहीं सफलता बल्ले विशेष कर एवं मूल मंत्र है थे खेती में अपने सफल बना भी सके।
1: इसके लिए स्वस्थ मिट्टी
0: जी,
1: अच्छा बीज, संतुलित पोषण, सही सिंचाई, समय पर कीट रोग नियंत्रण
0: जी,
1: दवा का छिड़काव, वैज्ञानिक तकनीकी अपनाकर आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल, प्रयोग अधिक से अधिक उत्पादकता और बेहतर आमदनी के लिए बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहाते दीपक जी, आपने कई संदेश और हमारे किसान भाई ने एवं फायदो थी सके मूल मंत्र हमरी ने के किसान भाई आने से की लाभान्वित था तो एवं कई संदेश आप आलो चाहो के
1: परंपरागत अनुभव के साथ वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाएं
0: जी,
1: मिट्टी और पानी का संरक्षण करें
0: जी जी,
1: हर कृषि कार्य सही समय पर करें, यही टिकाऊ खेती और अच्छी आयु का मूल मंत्र है।
0: बिल्कुल दीपक जी, आप आदर्श स्वरा ऊपर आवीने अति बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाई ने ली है, एना बल्ले आपने खूब खूब धन्यवाद। राम राम साहब।
1: राम
2: राम। देखो दीपक जी, कितनी बढ़िया अनुभव ने बात बता रही कि किसान भाई ने अगर उत्पादकता बढ़ा भी हो तो एना कुछ मूल मंत्र है, इन मूल मंत्र आपने याद रखवा जरूरी है तो आप काम अगाड़ी इंडेगा। किसान भाई देखो अगाड़ी काम है ढलवा बल्ले भी किसान भाई जो है इस शरीर की भी सक्षम जरूर हुए भोजन ने पोषण की बात अगर आप थोड़ा ऊपर करी रहा तो किसान भाई देखो स्वस्थ ने ऊर्जावान रहवा हरू संतुलित भोजन ने उचित पोषण अत्यंत आवश्यक है। आणामे भोजन ने पोषण नो अर्थ ई है कि भोजन में जे ठोस या तरल पदार्थ जेने आपणे खावा में लई रहा हां ताकि शरीर ने ऊर्जा ने ताकत मिले जेने थकी जीवन रूपी गाड़ी सही दिशा में चाली सके। पोषण ई जैविक प्रक्रिया है जेने आपणे शरीर भोजन थकी मलवा वाला तत्व ने ग्रहण करे है ने आनो उपयोग वृद्धि विकास ने स्वास्थ्य हारू बढ़िया रहे ने इन्हें हारू करे है। मुख्य पोषक तत्वों में आपने कही सक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन ने खनिज इन्हें हाथे हाथे पानी ने फाइबर भी आपने खूब जरूरी है। किसान भाइयों देखो संतुलित आहार थकी खूब लाभ है जिम के कुपोषण ने बीमारी थकी शरीर में बसाव थाय है। आने हाथे बीजो फायदो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत थाय है। किसान भाइयों संतुलित आहार थकी मानसिक स्वास्थ्य ने ऊर्जा ने स्तर भी बेहतर बना थका रही सके। तो किसान भाइयों खेती में जो काम करा हूं एना बल्ले आपने थोड़ी सी ताकत ने ऊर्जा भी जरूरी है क्योंकि हाड़तोड़ किसान भाई मजदूरी करे तो एना बल्ले आपने खावा में विशेष ध्यान रखू पड़ेगा संतुलित आहार लात में लेवा पड़ेगा। बीजी बात है कि किसान भाइयों देखो नशा पत्ता थकी हमेशा दूर रहू पड़ेगा तो आप काम अगाड़ी सही थी सके। अभी किसान भाइयों कार्यक्रम टीम भी धीरे धीरे पूरा थी रो है पर अपने जाते जाते भाई हम जानता हूं कि वालजी भाई वातस करी रहे हैं तो आ संदेश ने हाथे अपने एक छोटो सो भजन हम पसा आप थकी विदाई ला।
3: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अच्छा लगे देखो कितना बढ़िया भजन आपने पूरु तो नहीं हमला भी सक्या समय पर फिर हमला होगा आपने अगर आज कार्यक्रम में टेम पूरा थी जो आज तो वाल्जी भाई ने आज्ञा लो कल सोलह पर फिर नवी जानकारी नाते आपने मलंगा ये आज

अभी चौपाल कार्यक्रम प्रसारित किया गया। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर जी आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7:30 होने को ही आइए सुनते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम भारती। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमे चैनल है। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: देखो अब शिवम मिश्रा को गीत सुने पोदीना और अब अपना प्रोग्राम ने आगे बढ़ाता हो या जानकारी को सिलसिलो से। और देखो किसान भाई आप जब भी कोई फसल लेवा चाह तो अपने मिट्टी पानी की जांच तो करानी चाहिए, बीस आपने पता हो जाए कि अपनी मिट्टी में कौन कौन सी कमी है। लेकिन आज आपने सामने वो प्रश्न है कि आप मिट्टी पानी की जांच आखिर करावा क्यों था, और ये जानकारी देवा के लिए आज अपने बीच पावना पधारे श्री टीकम चंद यादव साहब जो जो सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी दुर्गोपड़ा जयपुर। तो सबसे पहले तो आपको स्वागत करा, राम राम साहब। देखो साहब सबसे पहले तो मैं किसान भाई ने बताओ कि मिट्टी पानी की जांच आवश्यक क्यों है।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, देखो मिट्टी पानी की जांच की बात करा किसान भाइयों जी प्रकाश आपा कोई डॉक्टर के जावा तो सबसे पहले डॉक्टर खून की जांच करे, खून की जांच करके आधार पर बतावे कि आपने शरीर में काई कमी है, काई चीज की दवाई देनी चाहिए, कौन सो रोग है। भी प्रकार सो मिट्टी भी क्या है, एक शरीर है आपने खेती के लिए, तो ये खेती की इस सारी जरूरता का हिसाब से आपन एक चेकअप करावो जरूरी है, जिन बोला हुआ मर्दा की जांच और पानी की जांच। जी का मैं आपन यू पतो लागे कि आपनी जमीन में कौन सी चीज की कमी है, कौन सी चीज की ज्यादा अधिकता है, बस सारी सारी जानकारियां मिले। ज्यादातर किसान भाई का ही समझे कि मिट्टी तो केवल पौधा खड़ा करवा को एक माध्यम है, नहीं आ गलत सोच है आपनी। मिट्टी आप जो शरीर है वह ही पौधा के लिए, एक शरीर को काम करे एक आत्मा है। तो अपन क्यों जरूरत है की बात है कि अंदर कौन कौन सा पोषक तत्व है जो पौधा के लिए आवश्यक है, बाकी क्या काई काई मात्रा कितनी मात्रा उपलब्ध है, कौन सा की कमी है, भी का आधार पर आबा आबा समय पर जो भी फसल आपा बुआई करा भी फसल को निर्धारण क्या करना, कौन सो खाद देना है, भी की मात्रा को संतुलन अपन पतो लगावा के लिए मिट्टी की जांच जरूरी है।
0: बिल्कुल सर, देखो आप तो बता दिया आपन ने मिट्टी पानी की परीक्षण की जांच क्यों जरूरी है, लेकिन भागे किसान भाई कई अभी तक इस जांच से मतलब जानकारी तो बाना है, बताओ सर मृदा और नमूना लेते समय अपने कौन कौन सी विधा को ध्यान रखना चाहिए।
1: हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखो ज्यादातर किसान भाई क्या करे मृदा को नमूना तो लावे, लेकिन बाने यू ही पतो की सही तरीका से मृदा को नमूनो किया लेनो है, खटेव लेनो है, कत्ती मात्रा में लेनो है, बस सारी जानकारी वो बहुत जरूरी है। नहीं तो वही बात है कि लेब में कितनी बढ़िया जांच कर लियो बस जांच की रिपोर्ट बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव है, या कोई मतलब कोई औचित्य को नहीं
0: जी।
1: तो किसान भाइयों जब भी आप नमूने लेवा की बात करा तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आपनो खेत कितो

0: कुछ है, एक हेक्टेयर कुछ है, एक बीघा कुछ है, बिल्कुल आकलन होवो जरूरी है। या आपने सामान्य नमूना की बात करा तो आपका दो बीघा को एक खेत मान लिया, बीघे के अंदर सफिशियंट नमूना माने जाएगा, एक नमूना के लिए दो बीघा खेत होना चाहिए। दूसरा, आप लोग खेत में किसान भाई वो देख लो है कि खेत को उपलो हिस्सो, निचलो हिस्सो या बीच वालो हिस्सो एक समान होना चाहिए। यदि उपला हिस्सा में काली माटी है, निचला में रेतीली माटी है, तो वो खेत अलग अलग होगा, कि मतलब अपन नमूना अलग अलग लेना है। बहुत सारा किसान कई सारी समस्या हो कि सर नमूनो कणा लेवा की विद्या सु लेवा, तो दो किसान भाई नमूनो लेवा को सबसे सही समय माने जाए फसल आपने जी कटी कटवा के बाद में या नई फसल बुआई करवा सु पहली। अब किसान भाई यो तो अपने समय को पतो लागू, अब नमूनो क्या लेनो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि नमूनो क्या लेनो। किसान भाई आपने मान लीजिए एक डब्लू है, बी का आधार पर आपने खेत में जिग जेक वे में बाढ़ देने, टेडी मेडी लाइना का हिसाब से कि 20 फुट लंबा गया फिर तिरछा गया, इस हिसाब से खेत में अलग अलग जगह से 10-20 जगह से आपने बिल्कुल ऊपर कचरा ने साफ कर, जो पेड़ पौधे की पत्तियां साफ कर और लगभग लगभग 15 सेंटीमीटर गहरो गड्ढो खोद वी आकार को और अपन नमूनो इकट्ठो करना है। 10-20 जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी कर लेनी
1: जी,
0: फिर वो मिट्टी में एक साथ मिला लेना। अब मिलाने के बाद क्या करना, अपन जी मिला लिया तिरपाल साफ तिरपाल पे या गमला के अंदर जो भी आपने सुविधा है अभी के अनुसार या कट्टा के ऊपर मिलाने के बाद भी एक ढेर बना और भी का चार हिस्सा कर देना, जो आमने सामने का दो हिस्सा तो अपन फेंक देना चाहिए, भी के बाद में जो बच्चा दो हिस्सा है वापस आपने मिला लेना। आप प्रक्रिया जब तक करते रहो जब तक आपका नमूनो लगभग लगभग 500 ग्राम न बच जाए, इस प्रकार से जो नमूनो बच्चे भी नमूना ने आपने लेब में ले जाकर जांच करानी चाहिए, जिन ब्लॉक लेवल की मृदा परीक्षण लेबा है या राष्ट्रीय स्तर की के कृषि विज्ञान केंद्र बाप भी ले जा सका। तो ये प्रकार से नमूनों लेते में छोटी छोटी सावधानियां रखनी है।
1: बिल्कुल, और ठीक भी बताया गया मर्द नमूना लेते समय आपने सावधानियां रखनी चाहिए। मृदा परीक्षण जांच में कौन कौन सा गुणा की जांच हो जाए?
0: देखो इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं थाने कि मर्दा नमूना लेते समय कुछ और सावधानी रखना जरूरी है।
1: जी
0: जी हाँ, कि मर्दा नमूना लेते समय एक सावधान रखनी, अपन कदे भी जो मेड़ होया करे जी सीव बोला अपने देशी भाषा में, सीव पे सारा सु कदे भी नमूनो नहीं उठानो, 10-12 फुट छोड़ के बाद नमूनो लेना। फिर दूसरो जगह पानी भरे बैठे नमूनो लेकर देखते पता चले उपला हिस्सा में पूरा भी जो खाद भी जो खाद हो जो बिकी उर्वर क्षमता है वह सारी नीचे तैयार बहेगी, तो बड़ी तो ज्यादा होगी और ऊपर की तरफ कम होगी। ये आपन ध्यान रखो पेड़ा का नीचा सु नहीं लेनो, जब आप खाद डाला तो खाद डालते तुरंत बाद में नहीं लेनो, ये आपन ध्यान रखना भी उर्वरक जो डाले अपना उर्वरक यूरिया डीएपी डालते तुरंत नहीं लेनो। अब ये था वो सवाल कि कौन कौन सा पोषक तत्व की जांच हुआ करे।
1: जी
0: देखो मुख्य रूप से पोषक तत्व की बात करा तो अपन 17 पोषक तत्व चाहो पौधा के लिए, जिम आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंदर 12 पोषक तत्वों की जांच करा करो जी कमाए। मुख्य रूप से पहले पीएच करा जो कि अपन मर्दा की अम्लता का बारे में, मर्दा क्षारीय चबी का बारे में, उदासीन ये सब की जानकारी दिया करे। दूसरा आपा विद्युत चालकता ईसी की बात करा जो कि मुख्य देशी भाषा में समझा तो भाई आपने पानी में लवण कट्टा अगर नमक कट्टो खारोपण कट्टो भी सारी जानकारी दे तो ईसी करा। फिर कार्बनिक पदार्थ जो आपने पेड़ पौधे की पत्तियां हुए वो गड़ जाए फिर बाद में ह्यूमस बन जाए तो बी की जांच करा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी है। इसके अलावा जो मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम आकिक्रास फिर सल्फर एक इम्पोर्टेंट है जो सल्फर की जांच करा। ये कुछ सूक्ष्म तत्व है जी हाँ आयरन आवलो लोहा होगो आपने जस्ता होगो कॉपर होगो जिंक होगो बोरोन होगो आप पोषक तत्वों के मुख्य रूप से आप जांच करा।
1: बिल्कुल सर, मृदा जांच को उर्वरक का उपयोग और बाकी फसलों के उत्पादन में काय का महत्व है?
0: देखो वो भी बहुत बढ़िया बात पूछी कि जो मर्दा नमूना लिया भी जांच परीक्षण करवा के बाद में मर्दा उर्वरता पर काई प्रभाव पड़ेगा और भी प्रभाव भी उत्पादकता को आपने फसल उत्पादन पर काई प्रभाव पड़वाने बहुत महत्व है। ये मान लिया आपने हृदय है आप जी जांच कराई जी आपकी डॉक्टर ने खून की जांच कराई, जांच करता है बोल लो भाई आप में हीमोग्लोबिन कम है तो डॉक्टर हीमोग्लोबिन कम है तो क्या बोल लो भाई आयरन वाली चीज खाओ तो आयरन वाली चीज में अपना आयरन से संबंधित फ्रूट बताओगे या भी संबंधित टेबलेट देखो भी ये देखो अपना यदि खेत में नाइट्रोजन की कमी है तो वैज्ञानिक रिपोर्ट बताओगे कि आपने नाइट्रोजन कितना डालना है जी के मुख्य रूप से जहाँ पर नाइट्रोजन के लिए यूरिया

0: फॉर्म में लिया। ये दूसरा पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, कॉपर, जिंक, आयरन, ये सब है। आज सबका बारे में भी आपने रिपोर्ट बताई ली कि आपने खेत में की चीज की कितनी जरूरत है, कौन सा पोषक तत्व की मात्रा अधिक है। मैं एक चीज नोट करी हूँ, ज्यादातर किसान क्या करे, डीएपी और यूरिया बिना किसी जांच के सोयल रिपोर्ट के डालता रहे, फिर बोले कि माके तो फसल में कोई प्रभाव ही कौन पड़ रहा
1: जी।
0: और प्रभाव कौन पड़ रहा, मुख्य कारण क्या है कि आपने यो पत्तो को लेकर आपना खेत में की चीज की भूख है। एक इंसान हो जी आपन कहिए भाई खट्टो खावा की इच्छा है, आप मिट्टू खाया जाए तो आपनों शरीर बिना एनर्जी को ले पाओ, बिन मरदा हुआ है कि नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन वाला उर्वरक देना है, फास्फोरस की कमी है फास्फोरस वाला देना है। अब लगातार आप एक उर्वरक डालता रहे, खाद डालता रहे, वो आपने मैदा के अंदर की जरूरत ही तो वो वेस्ट ही जा रहे, कोई मतलब जिनको आप फसल उत्पादन का कोई प्रभाव कौन पड़े। तो संतुलित उर्वरक, सही उर्वरक और सही समय पर उर्वरक, इसके लिए मुख्य रूप से अपनी मृदा जांच है वो महत्व रखे। तो इको मुख्य उद्देश्य है कि कौन सी फसल के लिए कौन सा टाइम पर कौन सा खेत में, देखो अलग अलग क्यारी में भी फर्क आ सके। मान लो एक बीघा खेत है तो बिम अलग पोषक तत्व हो सके, साइड आड़ी मेड़ के साइड आड़ा पड़ोसी का अलग हो सके, तो हर खेत में पोषक तत्व अलग अलग पोषक तत्व की मात्रा अलग अलग हो सके। तो आ रिपोर्ट आपने ये बतावे कि कौन सा खेत में कौन सा पोषक तत्व की मात्रा या कौन सा खाद की मात्रा और उर्वरक की मात्रा डालनी है।
1: बिल्कुल साहब, सिंचाई जल यानी पानी की जांच भी अपने लिए क्यों आवश्यक है?
0: हाँ, ये एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि मृदा जांच तो करवा ली, अब मैं फसल लेऊं भी तो माए अपनो जो ग्राउंड वाटर है, कुआ को पानी है, बोरवेल को पानी है, वो भी काम में लेऊं तो कई भी पानी को भी हमारी फसल पर प्रभाव पड़ सकेगी? बिल्कुल पड़ सके किसान भाई, आपा जो पानी काम में ले रहे हैं, आप इन्हें लगातार पानी काम में लेते हैं, ट्यूबवेल को पानी लेता जा रहा है, कुआ को पानी लेता जा रहा है, फिर देख रहे हैं आपकी फसल कमजोर क्यों हो रही है, पड़ोसी की बढ़िया क्यों हो रही है। देखो किसान भाइयों, मर्दा नमूना के साथ साथ में जल को नमूनो, सिंचाई जल को नमूनो ले वो बहुत आसान है और बहुत जरूरी है। आपन करनो कही है जी प्रकार से मर्दा नमूनो लिया उसी प्रकार से कार्य करना है। अपन जो पानी को सोर्स है अपन करना, चाहे कुआ को जल है बोरवेल को भी पानी में कार्य करना है, अपन एक बोतल में भरना और लेबोरेटरी में जांच करानी, वो पानी की जांच करके बताऊगा कि पीएच काई है, एक ईसी काई है, एवं सोडियम की मात्रा कितनी है, एसएआर कितनी है, एवं और बाइकार्बोनेट कार्बोनेट काई है, और यह सारा को काई प्रभाव पड़वा माटी की गुणवत्ता पर, बस सारी जांच अपने सिंचाई जल नमूना से पता लगे है।
1: बिल्कुल साहब, इतनी बढ़िया जानकारी दिलाया किसान भाई, जो जल को नमूना ले वो काय तरीका से ले सके?
0: हाँ, यह भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है, था को बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसान भाई जानो गया खोद के अंदर से भर लिया ये को नहीं कर रहे, देखो किसान भाइयों ने यह पतो हो वो बहुत जरूरी है कि आपने सिंचाई जल को नमूनों का हिसाब से लेना। देखो किसान भाइयों, मान लो था कि कुआ में हमेशा तेज सिंचाई कर रहे हो या दूसरों किसान बोर महसूस कर रहे हो, जो भी आपको सिंचाई को स्रोत है बीम करने का ही अपन सबसे पहले जानो और भी की मोटर चला देनी
1: जी।
0: मोटर चला दिया, मोटर के पाइप में जो भी पानी है बिना लगभग 15-20-25 मिनट का आसपास बिन चालवा देना ताकि ऊपर ऊपर को पानी है वो पूरा निकल जाए। दिक बाद में जो पानी सही पानी जो मिक्स पानी है वो बिल्कुल जो शुद्ध पानी बोला जो हमेशा काम आओ वो पानी आ जाओ। अब भी पानी को काय करना, अपन एक साफ सुथरी बोतल लेनी और वो बोतल के अंदर पहले भी पानी से बोतल में 2-3 बार धो लो, अपने भी पानी से जो बोरवेल को पानी आपने जो भी सिंचाई जल को पानी जब से धो लो, फिर भी पानी की बोतल भर के अपने भी बोतल के ऊपर किसान को नाम अपनी डिटेल भर ले जा जमा कराते हैं और भी की जांच के लिए वो अपने नमूनो तैयार है। बस छोटो सो काम है, अपन 20 मिनट चलाना है फिर आपने बोतल दो पानी भरना है, इतना ही काम है।
1: बिल्कुल, चलता चलता हम किसान भाई ने कोई संदेश दे बचाओ सो।
0: और किसान भाई संदेश की बात है, देखो किसान भाई देखो मृदा गुणवत्ता और जल गुणवत्ता दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो किसान भाई गलती करे जैसे मान लो कि कोई का कुआ के अंदर खारो पानी है
1: जी,
0: थोड़ा लवणीय पानी है जी, पीएच 8 का आसपास है, 20 नियंत्रण आप क्या करता जा रहा है, सिंचाई करता जा रहा है तो भी कमाए जो लवण है जब नमक है वो नमक धीरे धीरे आपने कहा माटी पे जमा हो रहे, तो किसान कहीं करे किसान भी चीज नजरअंदाज करे यार वो तो यही हो रही है। अब बोले सर मानने पर तो क्या लगे कि भाई माखाड़ो पानी खारो है कि मिट्टो है कि माटी पर का प्रभाव पड़ रहा,

0: तो किसान भाई देखो मारो सबसे बड़ो संदेश वही है थाने आपनी जो जमीन है भी जमीन में आपा छू भी बचाल या भी आस पास में आपा जब महसूस करके पता लगा सका कि आपने मिट्टी में काई प्रॉब्लम हो रही है। जे देखो आपने क्षारीय मृदा की बात करा कि क्षारीय मृदा क्या की है किसान भाई तब जब खेत में जाओगे ना तो खेत में देखोगे कि आपने मिट्टी के ऊपर काला काला भूरा भूरा धब्बा होगा। आप देख ला पानी आप जो डालो पानी एकदम से माई कौन जाए वो पानी ऊपर ही भर जा रहे हो या आप देख ला कि अपनी माटी बहुत सख्त होगी। ठीक है आप ये देख ला कि आपने जो फसल को अंकुरण कम हो जाए तो इसको मतलब समझ आओ कि आपने जो मिट्टी अभी कमाई सोडियम जमा होगा तो आपने मतलब आपने मृदा सारी लाग रही है अपन जांच करा लेनी चाहिए। ये आपने जो सोच लिया कि भाई आपनी मृदा लवणी तो कोनी नमक तो ज्यादा कोनी है तो इको भी एक देसी तरीको देखो किसान भाई आप खेत में गया खेत में जाओगा देखेगा कि आपने जो माटी है बहुत सॉफ्ट है मैं यहाँ हाथ लगाते हैं मुलायम मुलायम से महसूस हो रही है नग्गा पाँव आप चल रहा तो आपने चुभे को नहीं और जे गर्मी है और बस सफेद सफेद धोड़ी धोड़ी सी दिखवा लग जाए इको मतलब है कि आपने जो मृदा है वह कैसी होगी लवणी होगी। तो एक माई किसान भाइयों जिप्सम की जो रिक्वायरमेंट है कि पानी भरवाएगी या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसानों के लिए जो मृदा परीक्षण के बाद रिपोर्ट आओगी बी का आधार पर अपने जिप्सम वगैरह को उपयोग करना है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें जो देखभाल नहीं मिल रहा है किसान जब नमूनों ले तो जल्दीबाजी में ले ली किसान फसल के अनुसार खाद कौन डाले डीएपी डाले जा रहे हैं यूरिया डाले जा रहे हैं कि फसल के अनुसार कौन डाले। इसके अलावा और भी देखिए किसान कि अब मैं जांच तो करा ली अब जांच को सही उपयोग कौन कर पा रहे हो तो किसान भाई जब भी थे सोइल टेस्टिंग रिपोर्ट ले रहा हो मृदा जल रिपोर्ट ले रहा हो पानी की रिपोर्ट ले रहा हो तो वहां पूछो कि मैंने कौन सा उर्वरक कितो काम लेना तो ये सब छोटी छोटी जानकारी है जिनको ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल यानी आप जब भी कोई नई फसल लेवा तो आपने मिट्टी पानी की जांच जरूर करवानी चाहिए जिससे आप अच्छी फसल ले सका। किसान भाइयों आप जानकारी ले रहे थे मिट्टी पानी की जांच आवश्यक क्यों छे और जानकारी दे रहे थे श्री टीकम चंद यादव जो थे सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी दुर्गपुरा जयपुर आपना प्रोग्राम में आया और इतनी बढ़िया जानकारी दिया इकलिया को घनो घनो धन्यवाद साहब। और देखो आपना प्रोग्राम की रीच है कि जो भी आपने इतनी बढ़िया जानकारी दिया तो वह जानकारी सुखी सुखी बोल लिया सुनावा एक प्यारो सो लोकगीत

सभी किसान भाई समझते हैं अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से किया गया। होली जी, अब सुनिए फिल्म संगीत।

तल्लुक फिल्म का गीत अभी आपने सुना राहत फतेह अली खां की आवाज में। गीत सईद कादरी का था और संगीत अनु मलिक का।

नवाब फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज एक बार फिर राहत फतेह अली खान की थी। गीत अमजद इस्लाम अमजद का था और संगीत साहिका।

बारजानों की आवाज में अभी आपने सुना 1942 आलव स्टोरी फिल्म का गीत जावेद अख्तर का था और संगीत आर डी बर्मन का।

आमिर जमाल की आवाज में ये था मर्डर फिल्म का गीत। बोल सईद कादरी के थे और संगीत अनु मलिक का।

जूली फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से संवारा था राजेश रोशन ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे क्रिकेट के मैदान की, जहां पर भारत महिला क्रिकेट टीम ने थाईलैंड पर 94 रन से दमदार जीत दर्ज करते हुए महिला टी20 एशिया कप में अपने अभियान का शानदार आगाज किया है। वहीं हॉकी के मैदान पर जर्मनी बन गया है नया विश्व विजेता। फाइनल में स्पेन पर 1-0 की शानदार जीत के साथ जर्मनी ने अपना चौथा विश्व कप खिताब जीत लिया है। फुटबॉल के मैदान से भारतीय युवा टीम एक खुशखबरी लेकर के आई, जहां एएफसी अंडर-20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में आज अपने पहले मुकाबले में भारत ने सीरिया पर दर्ज की है 0-1 जीत। और विश्व नोमैड गेम्स आज से किर्गिस्तान के बिश्केक में शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन समारोह में मौजूद और एक भव्य उद्घाटन समारोह इस समय किर्गिस्तान के बिश्केक में चल रहा है। टेनिस के कोर्ट पर डाली जाएगी नजर, जहां यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच हो गए हैं बड़े उलटफेर का शिकार। पहले ही दौर में ये दिग्गज खिलाड़ी हारकर हो गया है बाहर। और बैडमिंटन की दुनिया की बात की जाएगी तो चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से होगा शुरू। लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर होंगी सबकी नजरें। तो आज के खेल की दुनिया की शुरुआत की जाएगी क्रिकेट की मैदान के साथ, जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने थाईलैंड पर 94 रन से दमदार जीत दर्ज करते हुए महिला टी20 एशिया कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। दुबई में खेले गए मुकाबले में भारत ने दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी की बदौलत थाईलैंड पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की।
1: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप ए के अपने पहले मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 159 रन बनाए। भारत को सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा ने टीम को मजबूत शुरुआत दी और 36 गेंद में 3 छक्कों और 8 चौकों की मदद से सर्वाधिक 64 रन बनाए। शिफाली को स्मृति मंधाना ने बखूबी दिया। स्मृति 10 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद आई प्रतिका रावल ने 22 रन का योगदान दिया। यहां से टीम के विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और एक अच्छी शुरुआत के बाद भी टीम का स्कोर बोर्ड 159 रन पर रुक गया। थाईलैंड की तरफ से सुनिपोर्न लाउमी ने 3 और सुनीदा चातुरोंग रातन ने 2 विकेट निकाले। इसके बाद बल्लेबाजी करने आई थाईलैंड की टीम विमेंस इन ब्लू की गेंदबाजी के आगे बेबस नजर आई। थाईलैंड की पूरी टीम 23 गेंद शेष रहते 65 रन के स्कोर पर सिमट गई। नन्ना

0: बाद कोंचारो एनकाई के 41 रन को छोड़कर टीम का कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका। भारत के दीप्ति शर्मा ने 7 गेंदों में बगैर कोई रन दिए 3 विकेट निकाले। इसी के साथ दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 171 विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। दीप्ति के अलावा नंदनी ने 3, श्री चरणी ने 2 और क्रांति गौड़ ने 1 विकेट अपने नाम किया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को हांगकांग से खेलेगी, जबकि अंतिम ग्रुप मैच में शनिवार को भारतीय टीम का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
1: तो जैसी उम्मीदें थी वैसा मिला है भारतीय टीम को आगाज, और अपने अभियान का शानदार आगाज करने के बाद टीम के खिलाड़ी बेहद खुश नजर आए। आइए सुनते हैं अपने बल्ले से कमाल करने वाली शेफाली वर्मा ने क्या कहा।
2: आई थिंक टीम को अपने साइड से बेस्ट देके ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, एंड उसके साथ साथ टीम की भी नो और ज्यादा खुशी का माहौल हो जाता है। एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट द गेम, वी ऑल नो द कंडीशंस, वी ऑल नो व्हाट वी हैव टू डू, एंड आई एम सो हैप्पी सभी प्लेयर्स ने, उन सब ने किया, एफर्ट किया, एंड वी आर सो हैप्पी अबाउट द विन।
1: शेफाली के साथ ही खिलाड़ी नंदिनी शर्मा ने भी टीम की प्रशंसा की है। टीम की परफॉर्मेंस पे नंदिनी ने क्या कहा ये भी सुनते हैं।
3: ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ खेलना और हर मैच पे परफॉर्म करना तो मतलब बहुत बड़ी बात है, और वो करते आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा था, मेरा फर्स्ट एशिया कप हम लोग जीते हैं तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। बॉलिंग वाइज थोड़ा सा मुझे पर्सनली थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था और डिफिकल्ट भी था, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी। विकेट अच्छा था बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए भी अच्छा था, बहुत अच्छा था।
1: बिल्कुल सही कि एक शानदार विकेट था जिसका प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों ने किया, और थाईलैंड की टीम के 11 में से 10 खिलाड़ी डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच सके, और वो स्पेल जो वर्षों तक इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद याद किया जाएगा, जो दीप्ति ने फेंका कोई रन ना देते हुए वो शानदार 3 विकेट जिसने भारतीय टीम की जीत पक्की की। और क्रिकेट के मैदान से एक और खबर, जहां साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने दिल्ली प्रीमियर लीग DPL 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 7 विकेट से हराया। टीम के लिए जीत के हीरो बने अंकित डवास, जिन्होंने नाबाद 62 रन की पारी खेली और साथ ही 1 विकेट हासिल किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
0: DPL के फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 182 रन बनाए। टीम के लिए समर्थ सिंह ने 27 गेंद में सर्वाधिक 51 रन बनाए, जबकि कप्तान जोंटी सिद्धू ने 19 गेंद पर 36 और युगल सैनी ने 29 गेंद पर 32 रन का अहम योगदान दिया। साउथ दिल्ली के लिए दिवांश रावत ने 3 और विजन पांचाल ने 2 विकेट लिए। वहीं अंकित दबास, प्रांशु विजयरन और अंशुमन हुडा ने 1-1 विकेट हासिल किया। 183 रन के लक्ष्य को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 18 ओवर और 2 गेंद में हासिल कर लिया। प्रणव पंत के 13 के स्कोर पर आउट होने के बाद अंकित दबास ने सलामी बल्लेबाज अनमोल शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 52 गेंद में 89 रन बताकर टीम को जीत की राह पर ला दिया। अनमोल ने 41 गेंद पर 62 रन बनाए, जबकि अंकित 34 गेंद पर 62 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। सेंट्रल दिल्ली की ओर से अंकित यादव, केशव दबास और गवनीश खुराना ने 1-1 विकेट निकाला। शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन करने वाले अंकित दबास को फाइनल मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो अंकित के बल्ले से निकली दिल्ली की ये जीत, और एक और टूर्नामेंट जो लगातार खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच देने का काम कर रहा है, और जिससे निकलते हुए खिलाड़ी अब धीरे धीरे एक टीयर और बड़ी लीग्स में निकलते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं और भारत को एक बेहतर और मजबूत पूल क्रिकेट के लिए दिन ब दिन तैयार होता हुआ। और अब बात की जाए हॉकी के मैदान की, जहां जर्मनी पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 का विजेता बन गया है। बेल्जियम के वावरे में खेले गए फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हरा करके अपना 4वां विश्व कप खिताब जीता। प्रस्तुत है जर्मनी की शानदार जीत पर ये रिपोर्ट।
4: हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। मैच के शुरुआती 2 क्वार्टर गोल रहित रहे, इसके बाद तीसरे क्वार्टर में एकमात्र गोल आया। मुकाबले के हीरो स्टुथॉफ मिशेल ने 44वें मिनट में मैच जिताऊ गोल किया। 1998 के बाद पहली बार विश्व कप फाइनल में खेल रहे स्पेन ने लंबे समय तक गेंद पर कब्जा बनाए रखा और उसे कई मौके भी मिले, लेकिन वो जर्मन डिफेंस को भेदने में नाकाम रहे। 4 बार की चैंपियन जर्मनी ने वर्ष 2002 में पहला खिताब जीता था। इसके बाद 2006 और 2023 में जर्मनी ने खिताब अपने नाम किया। कल ही तीसरे स्थान के लिए

0: मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को 2-1 से मात दी। महिलाओं के वर्ग में शनिवार को अर्जेंटीना ने 1-1 से ड्रॉ के बाद रोमांचक शूटआउट में नीदरलैंड को 3-1 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया था। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो चैंपियन की तरह खेली जर्मनी की टीम, हालांकि उतने गोल देखने को नहीं मिले, लेकिन कितना मजबूत डिफेंसिव फाइनल मुकाबले में हो सकता है इसकी झलक कल वावड़े में देखने को मिली बेल्जियम के, जहां लगातार दोनों टीमों ने गोल करने के कई मौके बनाए, लेकिन हर टीम के मजबूत डिफेंस के आगे वो भेदने में नाकाम रहे। और फिर वो गोल जिसने जर्मनी को चौथी बार बना दिया है चैंपियन, और सफलतापूर्वक जर्मनी ने ये खिताब अपना बरकरार रखा। इस शानदार जीत के बाद जर्मन टीम के कप्तान टॉम ग्रैम्बुश ने कहा कि ये एक बेहद कड़ा मुकाबला था और वे अपनी टीम के प्रदर्शन से गौरवान्वित हैं।

एक कड़ा मुकाबला जिसके कड़े परिणाम और वो जोश और जज्बा नजर भी आया टीम के कप्तान की बातों में, उनके पूरे हौसले में और जिस तरह का खेल उन्होंने दिखाया। और अब हॉकी के बाद रुख करते हैं फुटबॉल का, जहां एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान का शानदार आगाज किया है। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगागयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल दागा। भारत को मेजबान उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। सभी 8 ग्रुप के विजेता और इन ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहने वाली 7 सर्वश्रेष्ठ टीमों को क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा 2027 के अंडर 20 एशियाई कप के लिए। भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से खेलेगी। और अब बात की जाए वर्ल्ड नोबैड गेम्स की, जो आज से किर्गिस्तान के बिश्केक में शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इस पारंपरिक आयोजन के भव्य उद्घाटन समारोह में उपस्थित हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होने वाले इन खेलों में भारत की तरफ से एक बड़ा दल हिस्सा ले रहा है और आज से शुरू हो रहा यह आयोजन 6 सितंबर तक चलेगा। और मध्य एशिया के बीच में बेहद प्रचलित ये गेम घुमांतू या खानाबदोश ओलंपिक के नाम से भी प्रचलित है और भारतीय टीम भी यहां पे हिस्सा ले रही है। और इसमें आज जब भारतीय दल इस पूरे फोरम पे पहुंचा, इस मैदान पे पहुंचा, तो जोश और जज्बा देखने लायक था।

0: तो तीरंदाजी, कूक, बूरू, कुछ ऐसे गेम जो शायद पारंपरिक तौर से बहुत लोग जिनसे प्रचलित ना हो, घोड़े पे बैठ के खेले जाने वाला एक पोलो का खेल जहां पे पारंपरिक कुश्ती देखने को मिलती है कुरूश और गोरोश के फॉर्मेट की, जिनसे काफी हद तक लोग परिचित नहीं होंगे, और कुछ बोर्ड पे लगाए जाने वाले दावपेच जहां पर कुछ दिमागी खेल देखने को मिलते हैं। इस तरह के आयोजन इन खेलों में किए जाते हैं और उम्मीद होगी कि भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन के साथ यहां पर भी भारत का झंडा आसमान में ऊंचा करते नजर आएंगे। और अब रुख करते हैं टेनिस का, जहां साल का चौथा ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। आज एक बड़े उलटफेर में 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स के पहले ही दौर से बाहर हो गए। अर्जेंटीना के मारियानो नोवेन ने उन्हें 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 से हराया। ये पहला मौका है 19 पहले दौर के मुकाबले में जहां जोकोविच को हार के साथ बाहर का मुंह देखना पड़ा, जबकि महिला सिंगल्स में वीनस विलियम्स ने अपने 26वें यूएस ओपन के पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए। 46 वर्षीय अमरीकी खिलाड़ी को साथ ही अमरीकी वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी सोफियाना कैनिन से सीधे सेटों में 6-2, 7-6 से हार का सामना करना पड़ा। और अब बात बैडमिंटन की, जहां चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू होने जा रहा है। 6 सितंबर तक चलने वाली इस बीडब्ल्यूएफ सुपर 750 बैडमिंटन प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
1: लक्ष्य सेन पहले दौर में नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले फ्रांस के एलेक्स लेनियर के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करेंगे। इनके अलावा किदांबी श्रीकांत भी भारतीय पुरुष सिंगल्स टीम का हिस्सा है। विश्व नंबर 5 और सिंगापुर बैडमिंटन ओपन के चैंपियन सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी पर भी नजरें होंगी। वहीं MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन भी इस वर्ग में चुनौती रखेंगे। महिलाओं के सिंगल्स की बात की जाए तो यहां भारत की युवा टीम कड़ी टक्कर देती नजर आएगी। ताइपे ओपन की विजेता तन्वी शर्मा, थाईलैंड ओपन की विजेता देविका सिहाग और युवा

0: टेनिस विजेता पीवी सिंधु की गैर मौजूदगी में खिताब के लिए दांव लगाएंगी। तीनों खिलाड़ी आगामी एची नागोया एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला टीम का हिस्सा है। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिल और तनिषा क्रास्टो तथा रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ी भी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट 19 सितम्बर से शुरू होने जा रहे हैं। एशियाई खेलों के लिए भारत की 20 सदस्यीय बैडमिंटन टीम के कई सदस्यों के लिए अभ्यास सत्र के रूप में भी काम करेगा। 2005 में टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से किसी भी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने चाइना मास्टर्स का खिताब नहीं जीता है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ी बड़ी जीत दर्ज करते हुए एशियाई खेलों की तरफ रुख करना चाहेंगे। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो इस वर्ष युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने कई नए कीर्तिमान अपने खाते में जोड़े हैं। क्या कि वो देविका सिहाग हो जिन्होंने थाईलैंड ओपन जीता, या फिर ताइपे ओपन जीतने वाली तन्वी शर्मा। एक बड़ा टूर्नामेंट BWF 750 लेवल का ये टूर्नामेंट होगा। और सबसे बड़ी और खास बात कि एशियन गेम्स के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का इससे बेहतरीन मौका शायद इन खिलाड़ियों के लिए नहीं होगा। हालांकि कुछ और स्टार खिलाड़ी यहां पर आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जिसमें दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी जैसे मैन सिंगल्स खिलाड़ी खेलते हुए नहीं उतरेंगे। तो कहा जा सकता है कि कुछ खिलाड़ियों के लिए अभ्यास और कुछ खिलाड़ियों के लिए आराम का ये मंच। और श्रोताओं, अब धीरे धीरे घड़ी की सुइयां हमें अनुमति नहीं दे रही आगे बढ़ने का, और समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल की दुनिया की तमाम खबरों के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर-20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
3: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
3: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा।

0: जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
0: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादुल जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है, जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
3: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार की वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
4: गृहमंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान

0: हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
2: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
1: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा।

कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का

0: गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 9 बजने को है। आइए सुनते आकाशवाणी के जय मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं सुर फिल्म का गाना लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीत निदा फाजली का है, संगीत MM करीम का।

आप सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत आनंद मिलन का है। फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: इतिहास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
1: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती है, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिसके रुपहले पर्दे पर आते ही न जाने कितने दिल धड़क जाते थे। जी हाँ, वो हैंडसम तो थे पर वो हीरो नहीं थे, और ये जो दिल धड़कते थे ये रोमांच में नहीं धड़कते थे बल्कि किसी आशंका में धड़कते थे। क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं हिंदी फिल्म संसार के एक खूंखार और दबंग विलेन की, जिनका नाम है के एन सिंह।
1: मैं कहता हूँ छोड़ दो,

एन सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। के एन सिंह का पूरा नाम था कृष्ण निरंजन सिंह। पिता चंडीदास एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे और चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह एक क्रिमिनल लॉयर ही बने, पर ऐसा न हुआ। के एन सिंह पढ़ने के लिए लखनऊ भेजे गए। वहां

पढ़ाई खत्म करके के एन सिंह देहरादून आ गए। पिता चाहते थे कि बेटा जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बेटे ने भी कई काम आजमाए। कृष्ण निरंजन ने कभी लाहौर जाकर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दिया तो कभी राजे रजवाड़ों के पालने के लिए जंगली जानवरों की सप्लाई की। इसके अलावा फौज में खुखरी की सप्लाई का धंधा भी किया, पर ये कोई भी कारोबार उनके मन के मुताबिक नहीं था, इसलिए एक भी काम में कृष्ण निरंजन जमे नहीं। इस तरह से पिता परेशान होते रहे कि न जाने ये बेटा आगे चलकर क्या करेगा, किसी काम में इसका मन नहीं लग रहा है। इससे तो अच्छा ये होता कि ये लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करता और मेरी तरह वकील बन जाता। पिता ने ये सोचा कि किसी तरह से इस लड़के को जिम्मेदार बनाया जाए और इस तरह से सन 1930 में कृष्ण निरंजन की शादी करवा दी गई।

शादी के कुछ दिन के बाद कृष्ण निरंजन ने केसर या जाफरान की सप्लाई का धंधा शुरू किया। ये काम फलने फूलने लगा, परिवार में खुशियां लौट आई। पिता को लगा कि बेटा अपनी जिंदगी में जम रहा है, पर इसी दौरान कृष्ण निरंजन की पत्नी बीमार पड़ गई। ये वो दौर था जब चिकित्सा सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं थी और इंजेक्शन आम आदमी तक नहीं पहुंचा था। जब तक पत्नी की बीमारी की सही वजह पता चलती, पत्नी का निधन हो गया। पत्नी की बीमारी और उसके इलाज में उलझे के एन सिंह अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाए और उनके साझीदारों ने उनके बिजनेस पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद जैसे तैसे के एन सिंह ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने एक अंग्रेज लड़की के साथ मिलकर रुड़की में एक स्कूल खोला, पर वो भी नहीं चल पाया। फिर बासमती चावल की सप्लाई का धंधा शुरू किया, वो भी नहीं चला। इसके बाद हुआ ये कि के एन सिंह खेलों के मैदान की तरफ मुड़ गए। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के लिए वो जेवलिन थ्रो और शॉटपुट स्पर्धाओं के लिए भारतीय टीम में चुने गए थे, पर एन मौके पर हुआ ये कि उनकी बहन की आंख का ऑपरेशन किया जाना था। चूंकि उनके जीजाजी उपलब्ध नहीं थे और के एन सिंह कुछ खास कर नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें भेज दिया गया कोलकाता बहन का इलाज करवाने में मदद करने के लिए। इसी वजह से के एन सिंह 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए। चूंकि के एन सिंह कोलकाता जा रहे थे तो एक दोस्त ने पृथ्वीराज कपूर के नाम एक चिट्ठी लिखकर दे दी और ये कहा कि हो सकता है इस तरह तुम्हारा कोई काम बन जाए।

एनसिंग को याद आया कि यहां तो उनके बचपन का दोस्त कुंदनलाल सहगल भी है जो फिल्मों में स्टार बन चुका है। के एन सिंह ने पृथ्वीराज कपूर और कुंदनलाल सहगल से मुलाकात की। पृथ्वीराज कपूर ने के एन सिंह को देवकी बोस से मिलवाया। देवकी बोस उन दिनों चंडीदास, पूरन भगत, राजरानी मीरा जैसी कामयाब फिल्में बना चुके थे और अपनी बांग्ला फिल्म सोनार संसार का हिंदी संस्करण बना रहे थे। सन 1936 सुनहरा संसार फिल्म के जरिए के एन सिंह की फिल्म यात्रा शुरू हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक डॉक्टर की छोटी मोटी भूमिका निभाई थी। बस यहां से खेल का मैदान पीछे छूट गया और कुंदनलाल सहगल फिल्मों में रमने लगे। ए आर कारदार को कुंदनलाल सहगल बड़े पसंद आए। वो उन्हें अपने साथ कोलकाता से मुंबई ले आए और सन 1938 में फिल्म बागबान में उन्हें एक्टिंग का मौका दिया। ये फिल्म 50 हफ्ते चली और के एन सिंह जम गए। के एन सिंह की बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, देर तक पलके न झपकाना, कोट पैंट टाई हैट और मुंह में पाइप या सिगार, कुल मिलाकर ऐसी शख्सियत बनती थी जो काफी असरदार, दबंग और डरावनी थी। बस इन्हीं तेवरों की वजह से के एन सिंह विलेन के रोल करने लगे। सन 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा में उन्होंने जग्गा डाकू की भूमिका निभाई।

जाओ दीवाने आए मट्टी लेकर मचाने आए किसे खबर चले कहाँ किसे खबर चले कहाँ है कोई जो पढ़ के रोके

0: अपने इंटरव्यूज में वो जग्गा डाकू की भूमिका के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास की बड़ी तारीफ किया करते थे। वो ये कहते थे कि रोल इतना अच्छा लिखा गया था कि तारीफ उन्हें मिलती रही इस भूमिका को निभाने के लिए। राज कपूर की फिल्म बरसात में के एन सिंह ने भोलू का किरदार निभाया था।
1: क्या बोलो? इतने समय कैसे आ गए?
2: चल मेरे साथ चल, जल्दी चल।
1: लेकिन बात क्या है?
2: अरे उठ तो सही, जल्दी चल।
1: अरे मुझे अपने पाँव से चल नहीं, मैं खुद चलूंगा। अरे जिंदा तो है अभी। देख पंचनारे के आठ दस फूल तोड़ ला और बूटी मिलते हुए उल्टे पर लौटा। लेकिन देख बूटी जा चुका कर लाइयो। हाँ जल्दी जा जल्दी।

0: 누가 이 감독하다 보자. 무자라 아치 다르다. 안 느껴? 아? 어. 이 립스틱 자에 또 어 나가 되나? 어. 나 샴 봐. 나라
1: 나라 아프다고 봐.
0: 어.
2: मगर कहाँ जाओगे वे जी से इस तरह छोड़कर
0: लगीने की शादी कराने जा रहा हूँ अब तो पक्के मंगरत का वक्त आ गया
2: शादी बैजी बैजी
0: अरे कुछ कहेगा भी
2: मेरी शादी कभी नहीं हो सकती
0: अरे जादे तुझसे शादी करके कौन अपने हड्डियों को चूर कराएगी
2: अब ये पक्की नहीं तो कच्चे शादी करा तो क्यों बैठ जाए
0: अच्छा अच्छा इंतजार करो तेरे लिए भी भगवान कहीं से छप्पर फाड़ के भेज देंगे तो फिर हो जाएगी तेरी भी शादी
3: बैठ जी अगर छप्पर के बजाय पानी के रास्ते भेज दे तो कोई हर्ज
0: है ठीक है भेज देंगे
2: ये कितने दिनों में जिंदा हो जाएगी
0: बस ये कोई 15-20 दिन
2: बैठ जी भगवान देखो जरूर है
0: तो
2: देख लो दरिया में बहा कर भेज दी उसने बहु मेरे लिए
0: हाँ भाई सुना तो था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं लेकिन आज तो उन्होंने दरिया फाड़ कर दे दी तुम्हें भाई
3: बैठी थोड़ी खूबसूरत क्यों
0: हाँ भाई ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है मुझे तो जिन वाली कहानी याद आती है जो बू का परी उठा ला
4: शक्ति सामंत को के एन सिंह बड़े पसंद थे इसलिए अपनी हर फिल्म में वो उनके लिए कोई न कोई रोल जरूर रखा करते थे फिल्म इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद की भूमिका फिल्म हावड़ा ब्रिज प्यारे लाल की भूमिका फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के एन सिंह नजर आए जैक की भूमिका में हुआ ये कि अपने दबंग अभिनय की वजह से के एन सिंह चोटी के खलनायक बन गए उनकी गिनती प्राण कन्हैया लाल और जीवन जैसे खलनायकों के साथ होने लगी आगे चलकर प्रेम चोपड़ा रणजीत अजीत अमजद खान डैनी और न जाने कितने खलनायक आए पर के एन सिंह एक चोटी के खलनायकों के रूप में गिने जाते रहे।

0: फिल्म हुमायूं में महबूब खान ने उन्हें एक दिलचस्प किरदार दिया था। अशोक कुमार के साथ वो नजर आए चलती का नाम गाड़ी में।
1: अरे सुना सरदारा, की हाल है? इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है, इन हाथों से सबकी गाड़ी।

चिन्नप्पा देवर की फिल्म हाथी मेरे साथी, गुरुदत्त के साथ फिल्म बाजी, राज खोसला की वो कौन थी, फिल्म आम्रपाली में के एन सिंह बलभद्र सिंह की एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए थे, फिल्म दूल्हा दुल्हन में वो बने थे ठाकुर धर्म सिंह, फिल्म मेरा साया में वो वकील की भूमिका में थे।

इस कार्यक्रम में शामिल किए गए थे उन फिल्मों के गाने जिनमें के एन सिंह एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए। फिल्म पगला कहीं का में वो मैक्स की भूमिका में नजर आए। सन 1938 में आई फिल्म सुनहरे दिन से लेकर 90 के दशक तक तकरीबन 55 सालों का लंबा करियर रहा कृष्ण निरंजन सिंह का और वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे। किसी भी फिल्म में जब के एन सिंह की एंट्री होती तो लोगों का दिल ठक से रह जाता कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाला है। 50 और 60 के दशक में तो के एन सिंह जबरदस्त कामयाबी की लहर पर सवार थे, पर हर कामयाबी की लहर एक दिन खत्म भी होती है। ऐसा भी हुआ कि आखिरी दिनों में उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। के एन सिंह के करियर का कमाल देखिए कि फिल्मों की कई पीढ़ियों ने उनके साथ काम किया। पृथ्वीराज कपूर के साथ उन्होंने काम किया तो राज कपूर के साथ भी, और सन 1975 में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के साथ भी वो नजर आए रफू चक्कर में। जहां कुंदनलाल सहगल, मोतीलाल, दिलीप कुमार, देव आनंद और गुरुदत्त के साथ काम किया, वहीं सुनील दत्त और मनोज कुमार के साथ भी काम किया। यहां तक कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया फिल्म कालिया में। सन 1983 में फिल्म कालिया आई, यहां तक अभिनय से के एन सिंह का मन पूरी तरह से उचाट होने लगा था। क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अपने भतीजे पुष्कर को बेटे की तरह पाला और आखिरी दिनों में उसी ने उनकी देखभाल की। सन 1999 में वे फिसल कर गिर गए और पैर की एक हड्डी टूट गई। इसके बाद 31 जनवरी सन 2000 तक वो केवल बिस्तर पर ही रहे बीमारी की अवस्था में। सन 2000 में 31 जनवरी को इस कद्दावर अभिनेता ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। फिल्म अजूबा सन 1991 में आई थी और ये के एन सिंह की

0: आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का मां ही चैनल है। इस समय रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी।
1: कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं उद्भव शेट्टी, मनोज शेट्टी और साथियों की आवाज में मोहब्बतें फिल्म से। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और बनाए हैं जतिन ललित ने।
2: कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था,

श्रोताओं भी आपने उद्भव शेट्टी, मनल दास और साथियों की आवाज में मोहब्बते फिल्म का गीत सुना। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर, क्षण कीजिएगा। लगान फिल्म से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

शहजादी आपने अर्का याग्निक और नारायण और साथियों की आवाज में लगन फिल्म का गीत सुना। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं मर्डर फिल्म से, आमिर जमाल और साथियों की आवाज में।

श्रोता, अभी आपने उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में मन फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल समय के थे और धुनमुनाई थी संजीव दर्शक ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते ही अलका याग्निक और शान की आवाज में टार्जन फिल्म से।

छगा हुई अपने जावेद अली की आवाज ने नका फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल समीप के थे और तुम बनाई थी प्रीतम ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनाते हैं दिल चाहता है फिल्म से शंकर महादेवन शान और साथियों की आवाज में। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और तुम बनाई है शंकर एहसान लोई ने।

शोभा भी आपने उदित नारायण, अलका याग्निक और जयेश गांधी की आवाज में एतराज फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल समीर के थे और धुनाई थी हिमेश चिमियानी। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में नायक फिल्म से। गीत के बोल आनंद पक्षी की है और धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

श्रोता, अभी आपने नए फिल्म का गीत सुना, कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज में। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं लकी अली की आवाज में गाया कहो ना प्यार ही फिल्म का गीत। विजय अकेला के बोल ही राजेश रोशन का संगीत।